नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रही हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 28 सितंबर 2026। हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम आपको बता दें, हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इस कार्रवाई ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति में बदलाव को दर्शाया। इसके बाद वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति अब आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए दो दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय तथा कृषि उत्पादन उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए साझा रणनीति बनाने पर विचार किया जाएगा। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ

0: हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस जारी करने और दावे आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक जारी रहेगी। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2000 रुपए से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वर्तमान चैंपियन भारत प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का लक्ष्य रखेगा। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारत।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, सकारात्मक सोच हर मुश्किल को आसान बना देती है। जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 325। 6:45 पर संगीत सरिता में आप सुनेंगे श्रृंखला विविध भारती।

के खजाने से गायक के जी गिंडे से बातचीत प्रस्तुति है छाया गांगुली की। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी। 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर सुनिए आज के फनकार कार्यक्रम। केंद्रित होगा पार्श्व गायिका लता मंगेशकर पर, प्रस्तुति मनीषा जैन की। 10 बजे सुनिए पिटारा में उजाले उनकी यादों के, संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। संपादन सहयोग है झरना सोलंकी का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 बजे से तय करेंगे सुरीला सफर। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 बजे सुनिए सखी सहेली। 4 बजे पिटारा में सुनिए सेहतनामा। पीसीओडी आईवीएफ इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। 5:30 पर आप सुनेंगे तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन। 7 बजे सुनिए जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष में सुनिए एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है विक्टोरिया नंबर 203। 8:00 हवा महल में सुनिए झलकी नई कमीज। लेखन है कुमुद नागर का, निर्देशन है चंद्रप्रभा भटनागर का। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा रणबीर कपूर पर, प्रस्तुति शकील बख्शी की। 10:00 सुनिए छाया गीत। आलेख और स्वर सलमा सैयद का, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेकी की। 10:30 पर ढलती जाए रात। और 11:00 रंग तरंग कार्यक्रम। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

आधी रात बीत चुकी है। शक्तिबाण लगने से लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। संजीवनी लेकर हनुमान अभी तक नहीं आए। लक्ष्मण को हृदय से लगाकर श्री राम विलाप कर रहे हैं। हे भाई, तुम तो कभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। मेरे लिए तुमने माता पिता तक को छोड़ दिया। वन वन भटकते हुए शीत, घाम, वर्षा, आंधी सभी कष्ट सहे। अब तुम्हारे उस प्रेम को क्या हो गया? तुम उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि एक दिन मुझे मेरे प्रिय भाई का वियोग सहना पड़ेगा, तो मैं पिता के वचन की मर्यादा को भी भुला देता। पुत्र, स्त्री, धन, घर परिवार, इस जगत में सब कुछ मिल जाते हैं। नहीं मिलता तो वो है सहोदर भाई। स्त्री के लिए ऐसे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या वापस जाऊंगा? मुझे परम हितकारी जानकर माता ने प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र को मेरे हाथों में सौंपा था। अब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? श्री राम के कमल सरीखे नैनों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। पार्वती को ये कथा सुनाते हुए शिवजी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ तो अद्वितीय और वियोग रहित हैं, किंतु अपने प्रिय भाई के लिए विलाप करते हुए मनुष्यों की दशा दिखा रहे हैं। ये भी उनकी एक लीला है। तभी वहां संजीवनी लेकर हनुमान आ पहुंचते हैं। उधर अनेक उपाय करके अपने भाई कुंभकर्ण को जगाकर रावण उसे सारी कथा सुना रहा है।

0: नमस्कार। विविध भारती के खजाने से आज हम चुन लाए हैं सुविख्यात गायक केजी गिंडे से सुप्रसिद्ध गायक दिनकर कैकिणी की बातचीत, आइए सुनते हैं।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम आप सबको देश के जाने माने गायक कलाकार एवं राग संगीत के विद्वान पंडित केजी गिंडे, कृष्ण जी गिंडे से भेंट कराना चाहेंगे। नमस्कार पंडित जी।
2: नमस्कार
1: गिंडे जी। तो इस 60 साल की लंबी अवधि के कुछ अनोखे अनुभव संक्षिप्त रूप में हमारे श्रोताओं को बताने का कष्ट करेंगे?
2: अवश्य।
1: आपका जन्म कर्नाटक में हुआ, आपके पिताजी डॉक्टर थे और परिवार के अन्य सभी सदस्यों ने दूसरा व्यवसाय अपनाया। ऐसी स्थिति में केवल आपने संगीत क्षेत्र में प्रवेश क्यों और कैसे किया?
2: ये तो एक संयोग कहिए
1: जी।
2: मेरे बचपन में ही मेरे घर में संगीत का वातावरण रहा। मेरे पिताजी वैसे भजन कीर्तन करते ही थे, उसकी वजह से मेरे सबसे बड़े भाई जो सुविख्यात मेंदु यानी मस्तिष्क के तज्ञ न्यूरोसर्जन थे
1: जी जी,
2: उनके प्रोत्साहन से मुझे ये इस कला में अधिक रुचि हुई और मैंने नाट्य संगीत बहुत सुना और 5वें वर्ष में मैंने पहले संगीत का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया।
1: अच्छा।
2: उसके बाद फिर मेरे बड़े भाई साहब बंबई आए और पंडित भातखंडे जी के द्वारा मुझे गुरुवर रतन जनकर के जी के पास
1: जी
2: मेरी आयु की 11 वर्ष से मुझे सौंपा गया।
1: यानी आपके बड़े भाई डॉक्टर
2: राम गिंडे
1: हाँ। वो भी काफी संगीत,
2: हाँ वो खुद भी गाते थे, हारमोनियम बजाते थे, फ्लूट बजाते थे।
1: अच्छा।
2: सारंगी भी बजाते थे
1: जी,
2: लेकिन वो व्यवसाय से उन्होंने गाना बजाना नहीं किया। वैसे तो मेरे सब भाई शास्त्रीय संगीत जिसको रागदारी संगीत हम कहेंगे
1: जी,
2: उसमें काफी रुचि रखते हैं।
1: अच्छा।
2: और इस तरह से मैं लखनऊ भेजा गया और तब से करीब करीब 38 साल मैंने गुरुजी के पास रहा, वो तो आप जानते हैं
1: पंडित
2: रत्नजनकर जी के पास
1: जी। हाँ। एक सवाल मैं करना चाहूंगा।
2: बोलिए।
1: जो कि आम तौर पे जिसको हम ले लिसनर कहते हैं,
2: हाँ,
1: वो हमको क्या करते हैं?
2: हाँ।
1: वो कहते हैं कि एक अच्छा गायक बनना हो तो आप क्या राय देंगे?
2: अच्छे गायक बनने के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा गुरु और पर्याप्त संगीत की साधना
1: जी,
2: ये सब सुविधा अगर हो तो मुझे विश्वास है कि अच्छा कलाकार अवश्य बन सकता है
1: जी।
2: लेकिन अच्छे गायन का प्रदर्शन सुनने का अवसर मिलना, इन सब बातों का होना आवश्यक है।
1: अच्छा। और एक सवाल है,
2: हाँ,
1: एक अच्छा राग संगीत का श्रोता बनने के लिए क्या करना पड़ता है?
2: उसको जितना अधिक से अधिक वो रागदारी संगीत सुनता रहे तो अच्छा मार्मिक श्रोता अवश्य बन सकता है
1: जी, क्योंकि ये संगीत तो श्रवण विद्या है।
2: बराबर है।
1: जितना सुनेंगे,
2: ज्यादा सीखने से ज्यादा सुनना ये आवश्यक है। और मैं समझता हूँ ये संगीत सरिता कार्यक्रम उसमें एक दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है
1: जी। हाँ, जी हाँ।
2: और उसमें से मुझे, मेरे अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि एक सामान्य श्रोता भी इस कार्यक्रम के माध्यम से काफी रुचि लेने लगा
1: सीख सकता है।
2: बिल्कुल।
1: तो एक श्रोता बनने के लिए एक तो चीज हुई कि सुनना जरूरी है।
2: अवश्य।
1: किस टाइप का म्यूजिक सुनना पड़ेगा उसको?
2: पहले तो कंठ संगीत जरा हजम करना बहुत मुश्किल होता है
1: जी। हाँ।
2: लेकिन इसलिए वो अगर वाद्य संगीत को सुने और तद अनुरूप अगर जो आजकल जिसको कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत या रागदारी संगीत के आधार पर जो फिल्मी संगीत आजकल कंपोज होता है
1: जी,
2: ये रचा जाता है, उसको भी अगर वो सुनता रहे तो कम से कम रागदारी संगीत के नजदीक आने लगता है
1: जी। अच्छा। आप जब संगीत की शिक्षा ग्रहण करते रहे,
2: हाँ,
1: उस समय क्या आप काफी रियाज करते होंगे?
2: मैं रियाज अवश्य करता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी करता था
1: जी।
2: रियाज जितना आवश्यक था उतना ही मैंने किया, लेकिन मुझे सबसे बड़ा सुयोग ये रहा कि मुझे अच्छे अच्छे कलाकारों को सुनने का अवसर अवश्य मिला और उसका फायदा मुझे बहुत मिला।
1: और आपको तो मैंने देखा है कि काफी बड़े बड़े उस्तादों के पीछे भी आप गाए हैं।
2: हाँ, मुझे अवश्य सभी
1: लाभ मिला,
2: बड़े बड़े अच्छे अच्छे कलाकारों के पीछे मुझे गवाया है। बिल्कुल। खान साहब, फैयाज खान साहब, मुश्ताक हुसैन खान साहब, निसार हुसैन खान साहब, कई लोगों के पीछे मैंने गाया है।
1: तो मतलब ये है कि जैसे

0: कि आजकल कहा जाता है घराने, तो
1: हाँ
0: अलग अलग घरानों के गाने जो हैं
1: हाँ
0: और जो गवैये हैं
1: हाँ
0: उनका गाना सुनना और उनके साथ संगत करना,
1: हाँ
0: इसका भी लाभ आपको प्राप्त हुआ
1: अवश्य
0: है?
1: अवश्य। लेकिन उसमें एक बात मैं अवश्य कहूंगा
0: जी
1: कि एक विद्या एक गुरु के पास सीखते हुए
0: जी
1: मेरा सुधा भी ऐसा रहा कि मुझे रत्नजनकर जी ने
0: जी
1: सभी गायकियों की बारीकियां समझाते हुए
0: जी
1: उन्होंने एक बुनियादी तालीम ऐसी दी कि जो मैं हर एक का गाना अनुकरण कर सकता था।
0: अच्छा,
1: ये उनकी शिक्षण की दिशा थी
0: बिल्कुल
1: और उसी वजह से मैं विभिन्न घरानों के गायकों के साथ भी गा सका।
0: जी हाँ, नहीं, ये एक अच्छी बात ये है
1: हाँ
0: कि रतन जनकर जी
1: हाँ
0: एक कूप मंडूक वृत्ति के नहीं थे,
1: बराबर है।
0: उन्होंने अपनी तो तालीम दी,
1: हाँ
0: लेकिन हम लोगों का या आपका कहिए
1: बराबर है
0: कि दिमाग खोला,
1: बराबर
0: जिसके
1: है।
0: वजह से
1: हाँ
0: हम ये गाना अच्छा, ये घराना अच्छा, वो ठीक नहीं, ऐसा हम
1: हमारे
0: मानते नहीं।
1: हमारे गुरु जी आपको जानते ही हैं
0: जी
1: कि हर एक विद्यार्थी को अपने जो गुण हैं उसको विकास करवाते थे, अपना अनुकरण नहीं करवाते थे। विद्यार्थियों
0: जी
1: में जो पोटेंशियलिटी है
0: जी
1: उसी को वो आगे चलाना चाहते थे,
0: जी
1: उसी को विकास करवाना चाहते थे।
0: जी
1: और इसी वजह से उनके जितने शिष्य हैं वो सभी अपने अपने तई उन्होंने अपनी कला में विकास किया
0: क्या
1: है।
0: संगीत विषय को व्यवसाय की दृष्टि से लिया जा सकता है? जाहिर है कि सभी छोटी छोटी के कलाकार तो बन नहीं सकते, तो ऐसे अभिलाषी व्यक्तियों के लिए आप क्या सुझाव देंगे?
1: संगीत को व्यवसायी बनाना एक नसीब की बात होती है।
0: जी,
1: जैसे आप खुद ने कहा है कि सभी कोई चोटी के कलाकार नहीं बन सकते हैं।
0: लेकिन आजकल आपने देखा कि
1: हाँ
0: यूनिवर्सिटी में भी संगीत चलता
1: हाँ
0: है,
1: बराबर है।
0: तो सभी संगीत लेना चाहते हैं, व्यवसाय बनाना चाहते हैं। अगर
1: व्यवसाय
0: अगर वो चोटी के कलाकार नहीं बन सकते हैं,
1: तो
0: तो वो क्या बन सकते हैं?
1: वो शिक्षक बन सकते हैं,
0: अच्छा
1: कहिए
0: अच्छा
1: संगीत शिक्षक बन सकते
0: जी
1: हैं
0: हाँ,
1: और संगीत का ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को उसका ज्ञान दे सकते
0: और
1: हैं।
0: आजकल क्रिटिक भी बनते
1: हाँ
0: हैं,
1: बस यही समीक्षक भी
0: हाँ,
1: बनेंगे।
0: समीक्षक।
1: बराबर
0: एक प्रश्न और पूछूंगा,
1: जरूर।
0: भारतीय राग संगीत जिसको शास्त्रीय संगीत कुछ लोग
1: हाँ आजकल कहते हैं।
0: कहते हैं,
1: हाँ
0: लेकिन राग संगीत कहना ही मेरे ख्याल से
1: अधिक
0: अधिक
1: पर्याप्त
0: पर्याप्त है।
1: है।
0: इसका भवितव्य के बारे में आपकी क्या राय है, आजकल की परिस्थितियों को देखते हुए?
1: आजकल की परिस्थितियों को देखते हुए मैं समझता हूं कि शास्त्रीय संगीत गहराई से विकास होना चाहिए।
0: जी
1: शायद वो उसका स्वरूप कुछ और होने लगा है और सामान्य श्रोताओं के तब जनसाधारण के लिए हम अगर संगीत करना चाहेंगे तो बराबरी के स्तर पर उसका विकास होगा,
0: जी
1: न कि गहराई की ओर से, क्योंकि
0: अच्छा
1: इसके लिए एक साधना के लिए काफी अरसे की जरूरत होती है।
0: अच्छा तो गिंडे जी, प्रश्न तो काफी हैं हमारे इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी भाइयों बहनों को, हम दोनों की तरफ से हम धन्यवाद
1: की
0: देते
1: ओर
0: हैं।
1: से भी और आपकी ओर से
0: जी हाँ,
1: भी
0: जी
1: मैं
0: हाँ,
1: फिर से अपनी ओर से सभी श्रोताओं को धन्यवाद देता हूँ।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: विविध भारती के खजाने से आज हम चुन लाए थे सुविख्यात गायक केजी गिंडे से सुप्रसिद्ध गायक दिनकर कैकिनी की बातचीत। ये बातचीत विविध भारती में वर्ष 1985 में संगीत सरिता के अंतर्गत प्रसारित हुई थी। प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। मित्रों, आइए सुनते हैं केजी गिंडी का गाया राग चारुकेशी।

नमस्कार, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज विविध भारती पर हम याद कर रही हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर को। कार्यक्रम का पहला गाना है आवारा फिल्म से शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, आवाज है लता मंगेशकर और साथियों की।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे ये गाना बादल फिल्म से, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम का अगला गाना अलबेला फिल्म से, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत और आवाज है लता मंगेशकर की।

सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प

0: जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे जीत फिल्म से गाना प्रेम धवन के बोल, अनिल बिस्वास का संगीत। कार्यक्रम के बाकी गाने सुनते हैं इस अंतराल के बाद।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं लता मंगेशकर को। आइए सुनते हैं अनजान फिल्म से ये गाना राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसे दे एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन

0: करने के लिए ही पैदा
1: हुआ हूँ।
0: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नौजवान फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में गाना साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए बुजदिल फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र के बोल, सचिन देव बर्मन का।

कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तुमसे अच्छा कौन है इस फिल्म के गाने के साथ, हसरत जयपुरी के बोल, संगीत शंकर जयकिशन का, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

आज हम याद कर रहे हैं स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर को, बॉलीवुड संगीत के इतिहास में एक बहुत ही अहम नाम। अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी के साथ लता मंगेशकर की आवाज़ में गाया ये गाना। आइए आप सुनते हैं येसुदास के साथ लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गाना, त्रिशूल फिल्म से साहिर लुधियानवी के बोल खयाम का संगीत।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, आइए सुनते हैं राजा रानी फिल्म से ये गाना। किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल और संगीत है राहुल देव बर्मन का।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई

0: जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। फिल्म है रामपुर का लक्ष्मण।

0: कार्यक्रम का अगला गाना तलाश फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना।

इसी के साथ आज का हमेरा ही प्यार के कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे थे आज कार्यक्रम में लता मंगेशकर की आवाज में सारे गाने। जानिए इनके बारे में और बातें आज के फनकार कार्यक्रम में 9:30 पर।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को

0: उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई थी। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बताएंगे कि इस सोच को लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जैसी दूरदर्शी पहल के जरिए किस तरह साकार किया जा रहा है।
2: गुजरात के लोथल में प्राचीन हड़प्पा कालीन डॉकयार्ड के पास आकार ले रहा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के 4,500 वर्षों से अधिक पुराने समृद्ध समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय संस्थान बन रहा है। 1230 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हो रहे इसके प्रथम चरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। वही इसके तहत 266 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक लाइट हाउस संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। लोथल की ऐतिहासिक धरोहर को सजीव करने और इसके तकनीकी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: लोथल में ये जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि भारत का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस इतिहास को आसानी से जान सके। इसमें अति आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके बिल्कुल उसी युग को फिर से सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है।
2: इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
3: मैरिटाइम हेरिटेज की बात है तो हमारे पास इस सेक्टर का 5000 वर्ष का लंबा इतिहास और लोथल इसका एक जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व का सबसे बड़ा मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम इस लोथल में बनाने जा रहे हैं।
2: प्राचीन विरासत और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम के साथ लोथल का यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत के गौरवशाली नौवन इतिहास का एक भव्य प्रतीक बन रहा है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल से 2 दिन तक दिल्ली के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविरों का एक और चरण आयोजित किया जाएगा।
4: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का काम जारी है। निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारिणी के अनुसार दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख अगले महीने की 30 तारीख है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कल और बुधवार को राजधानी के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में एक बार फिर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं।

0: और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
1: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव से जोड़ा जा सकेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजसेवी अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन इस विचार को दर्शाता है कि दूसरों के कल्याण के लिए काम करना व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से राष्ट्र अशोक सिंघल की जन्मशती मना रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने सामाजिक एकता और समानता को मजबूत करने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। एक रिपोर्ट।
3: भगत सिंह का जन्म क्रांतिकारियों के परिवार में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करके अपने नाम को सार्थक किया। उनकी जयंती मनाने के लिए लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जश्न ए इनकलाब नाम का एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोग उनके पैतृक गांव खटखड़ कला में इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
2: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। आज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और तेलंगाना में भी आंधी और बिजली के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
4: सीतापुर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और गोरखपुर में भी लोगों की मौतें हुई हैं। लगभग 1020 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
5: तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने

0: जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में भी भारत अपनी चुनौती पेश करेगा। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वासका शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद विशाल। सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प दर्शाया। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए रहें तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दैनिक जागरण में है। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत किसी देश की भूमि नहीं मांगता और युद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करेगा। साबरमती स्टेशन से दौड़ी देश की पहली LNG ट्रेन, गृह मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अमर उजाला के अनुसार, LNG आधारित दोहरे ईंधन वाली तकनीक अपनाने के साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सीट, जर्मनी और जापान को नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के बयान को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की खबर के बाद तोड़फोड़ और आगजनी को अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रात भर प्रदर्शन के बाद केस दर्ज, SIT गठित, यूनिवर्सिटी ने बताया अफवाह।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों, खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता खामोश रहकर अपनी महक लुटाता है। मील का पत्थर बेजुबान होकर भी पथिकों को राह दिखाता है। दिया खुद जलकर रोशनी लुटाता है। आंतरिक सौंदर्य की अपनी परिभाषा होती है, ऐसी भाषा जिसमें न शब्द होते हैं न आवाज, किंतु असर काफी गहरा। मौन रूपी संचित ऊर्जा का उपयोग हमारे ऋषि मुनियों ने भी खूब किया है। प्राचीन काल में लोग मौन का महत्व समझते थे। प्रकृति की आवाज को सुनने के लिए वे अपनी आवाज को कुछ समय के लिए विराम दे देते थे।

संसार में हर मनुष्य की पहचान उसकी बोली और व्यवहार से की जाती है। विचारों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है भाषा, लेकिन मौन की अपनी भाषा है। सांसारिक भाषाएं जहां सीमित शब्दों में बंधी है, वहीं मौन की भाषा में अनंत शब्द अंतर्निहित हैं। केवल चुप हो जाना मौन नहीं है, बल्कि अपने वजूद में खो जाना है मौन। चुप्पी बाहर होती है, लेकिन मौन भीतर घटता है। चुप्पी में हमारी वाणी पर नियंत्रण होता है, लेकिन मौन का अर्थ है स्वयं में उतरना और मन वचन कर्म से शांत रहना। जब हम मौन में प्रवेश करते हैं तो हमारा स्वयं से साक्षात्कार होता है। मौन हमें बाहरी छलावों से दूर ले जाकर सत्य का आईना दिखाता है और हम स्वयं की ओर उन्मुख होने लगते हैं। स्वयं का स्वयं से साक्षात्कार ही मौन का लक्ष्य है।

मौन का अर्थ है मन का नहीं होना। जहाँ मन है वहाँ असंतोष, शोक, जलन, प्रतिशोध, दुख और क्रोध जैसे कई भाव होते हैं। मौन में इनके अस्तित्व को मिटाना अनिवार्य है। मौन आत्मा की भाषा है जिसे सांसारिक कोलाहल के बीच सुनना संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्ति के अंतर्मन की यात्रा का नाम है मौन। भाषा और बोली के बंधनों को मिटाकर स्वयं से जोड़ता है हमें ये और जीवन में पूर्णता लाता है। मानसिक तनाव, व्याकुलता और अशांति के पलों में मौन शांति का प्रकाश पुंज है।

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

नमस्कार, चित्रलोक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। देश के वीर सपूतों की जब भी बात होती है, शहीद भगत सिंह का नाम पूरा देश गर्व से लेता है। महज 23 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हुए भगत सिंह आज भी साहस और विचारों के इनकलाब की मिसाल है। 6 जून 1923 को दिल्ली की सत्र अदालत में उन्होंने कहा था, पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। आज इनके याद के दिन पर विविध भारती परिवार की तरफ से शहीद-ए-आज़म भगत सिंह को शत शत नमन।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में आप सुन रहे हैं मोहब्बती फिल्म से गाना, आनंद बख्शी के बोल, जतिन ललित का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं, दिल तो पागल है इस फिल्म से, उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, उत्तम सिंह का संगीत।

दिल तो पागल है फिल्म से आप सुन रहे थे उदित नारायण के साथ लता मंगेशकर की आवाज़। लता मंगेशकर का नाम इंडियन म्यूजिक और हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक अलग ही जगह रखता है। अपनी आवाज़ और अपने लंबे म्यूजिकल करियर के थ्रू उन्होंने कई जनरेशंस को अपने गानों से जोड़ा। उनके गाने आज भी लोगों की यादों का हिस्सा है। आज उनकी याद का दिन है। जानिए उनके बारे में कुछ बातें, कुछ किस्से 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम में। चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। बेवफा फिल्म से बोल समीर के संगीत नदीम श्रवण का।

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम।

आज रणबीर कपूर का बर्थडे है। 2007 में सांवरिया से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले रणबीर ने वेकअप सिड, रॉकस्टार, बर्फी, ये जवानी है दीवानी और संजू जैसी फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाकर अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी एक्टिंग से एक खास फैन फॉलोइंग बनाई। विविध भारती परिवार की तरफ से रणबीर कपूर को अ वेरी हैप्पी बर्थडे। रणबीर कपूर की मटर गश्ती आप सुन रहे हैं तमाशा फिल्म से। मोहित चौहान की आवाज में इरशाद खामिल के बोल, ए आर रहमान का संगीत।

शेखर अफजियानी और कैरलिस्टा मोंटियारो की आवाज़ में आप सुन रहे हैं अनजाना अनजानी फिल्म से ये गाना। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल अन्विता दत्त के साथ इन्होंने ये गाना लिखा है, विशाल शेखर का संगीत।

हम आपको याद दिला दें, आज रात का आज के फनकार कार्यक्रम 9:30 पर केंद्रित होगा रणबीर कपूर पर। कार्यक्रम का अगला गाना अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में तू झूठी मैं मकार फिल्म से, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल

ये है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम डोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने पोते प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

28 सितंबर 1929 को इस दिव्य स्वर का आगमन हुआ मास्टर दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती मंगेशकर के जीवन में उनकी पुत्री के रूप में। तब किसे पता था कि यह स्वर एक दिन अपनी आभा से न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व को आलोकित करेगा।

0: संगीत प्रेमियों के हृदय मंदिर में गूंजता लता जी का ये सात्विक स्वर। लता जी की आयु मात्र 13 वर्ष ही थी जब उनके पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर इस दुनिया से विदा हो गए और लता जी के संघर्षमय जीवन की शुरुआत हुई। भाई बहनों में वरिष्ठ होने के नाते परिवार की जिम्मेदारी भी उन पर थी। संकट की इस घड़ी में मददगार साबित हुए नवयुग चित्रपट संस्था के मालिक मास्टर विनायक दामोदर कर्नाटकी। किशोर वयीन लता मंगेशकर को गाने का पहला अवसर मिला तो वो था एक मराठी भावगीत।
1: महाराष्ट्री होने के नाते मराठी फिल्मी और गैर फिल्मी गीतों से लता जी की संगीत यात्रा का शुभारंभ स्वाभाविक था। सुधीर फड़के, दत्ता डावजेकर, वसंत प्रभु, वसंत देसाई, यशवंत देव, हृदयनाथ मंगेशकर जैसे नामी गिरामी संगीतकारों की रचनाओं को अपने शुचिरभूत मधुर स्वर से श्रृंगारित किया है लता मंगेशकर ने। भक्ति गीत हो या भावगीत, लोकगीत हो या सिने संगीत, लता जी के गाए मराठी गीतों के विशाल साम्राज्य से कुछ गीतों की झलक सुनते हैं।

0: स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने मराठी फिल्मों के लिए आनंद घन के नाम से संगीत निर्देशन भी किया।
1: ये फिल्में हैं मराठा तितुका मेळवावा, राम राम पाहुणा, तांबडी माती, मोहित्यांची मंजुळा और साधी माणसे।

हमारे देश की लगभग 36 प्रादेशिक भाषाओं में लता मंगेशकर ने गीत गाए हैं, जिनमें प्रमुख हैं मराठी, बांग्ला, राजस्थानी, डोगरी, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, असमिया, तेलुगु, कश्मीरी, मलयालम, कन्नड़, सिंधी और तमिल। बांग्ला संगीत जगत को लता मंगेशकर का विशेष योगदान रहा। सलिल चौधरी और हेमंत कुमार जैसे मूर्धन्य संगीतकारों की इन रचनाओं को लता जी के स्वर में सुनकर बंग भूमि ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बंगाली संगीत प्रेमियों को परितृप्त होते देखा जाता है।

अपने संगीत जीवन के आरंभिक समय में लता जी कुंदनलाल सहगल और नूर जहां जैसे प्रस्थापित गायकों की शैली से प्रभावित थीं। कालांतर में उर्दू की तालीम हासिल करके लता जी ने अपनी भाषा को और अधिक समृद्ध किया।

कलामे गालिब हो, कलामे दाग हो या फिर हो मीर का रंग सुखन, लता जी ने जब गाया तो एक एक लफ्ज अपने मानी के साथ सामयीन के दिलों में उतर गया। मीर का ये कलाम फिल्म

0: शास्त्रीय संगीत के नित्य अभ्यास और साधना से ही ऐसे दैवीय स्वर किसी कंठ से निस्सृत होते हैं। लता मंगेशकर के स्वर में भक्ति रचनाओं को सुनकर ही श्रवण भक्तों को नाद ब्रह्म की अनुभूति होती है।
1: संत तुलसीदास, संत मीराबाई, संत सूरदास, संत कबीरदास और गुरु नानक देव जी की रचनाएं शब्द लता जी के स्वर से जब निःसृत होते हैं तो मन भक्ति भाव से भर उठता है।

और मूर्धन्य गायक पंडित भीमसेन जोशी के साथ जब लता जी ने राम का गुणगान किया और नारायण आराधना की तो वातावरण भक्ति रसमय हो उठा।

0: तो लता जी के संगीत संसार से कुछ मोती चुनना हमारे लिए अत्यंत कठिन है, परंतु फिर भी ऐसी रचनाओं को याद करते हैं जिनमें लता जी ने आंचलिक गायन शैली को पूर्णत्व प्रदान किया।
1: ये है राजस्थान।

0: श्रोताओं, हमारे जीवन की सभी अवस्थाओं को प्रभावित करने वाला कंठ है लता जी का। इस मंजुल स्वर में हमने कभी लोरी सुनी,
1: धीरे से आ जा रही अखियन में, बिंदिया आ जा रही आ जा, धीरे से आ जा,
0: तो कभी बचपन का गीत।

0: लता जी के संगीत सागर को इस कार्यक्रम के गागर में समेटना लगभग असंभव सा है। हमारे देश की पहचान है लता जी,
1: श्री कृष्ण के मुरली की तान है लता जी।

0: आलेख, शोध और स्वर
1: मनीषा जैन
0: और जयंत पात्रीकर। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
2: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों के। उजाले

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू, वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान, बेमिसाल संगीत की
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाऊं,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। उत्तम जी, बहुत बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
5: नमस्कार यूनुस जी, नमस्कार टू ऑल जो उजाला सुन रहे हैं।
0: मदन जी के साथ बहुत सारी यादें आपकी हैं संगीत बनाने की और रिकॉर्डिंग्स की, तो कुछ सुनहरी यादें हमारे साथ शेयर।
5: रिकॉर्डिंग की उनकी मुझे एक आज भी याद है। मैं पहुंचा रिकॉर्डिंग में और देख रहा हूँ कि एक आवाज आ रही है सिंगर की।
0: अच्छा,
5: कोई गा रहा है और वो भी क्लासिकल फील है पूरी। तो हमारी हिम्मत नहीं हुई तो मैं थोड़ा सा चुपके देखा तो मदन जी गा रहे हैं बाजा पकड़ के।
0: खुद ही गा रहे हैं?
5: खुद ही गा रहे हैं।
0: गाना कौन सा था?
5: गाना नहीं, ऐसी आलाप गा रहे थे, क्लासिकल गा रहे थे
0: जी, जी।
5: और उनकी रिकॉर्डिंग थी। तो कुछ एक डेढ़ घंटे का बाद पता चला कि खंडाला में उनका एक्सीडेंट हो गया। वो गाड़ी में आए थे, गाड़ी में आए थे और आके जल्दी पहुंच गए और अपने खून वून आया हुआ उनको, उसमें अपने आप को ठीक करने के लिए वो संगीत का सहारा लिया।
0: ये घटना मुझे पता है, मदन जी के जब बेटे समीर कोहली जी आए थे विविध भारती, उन्होंने सुनाया था कि वो ट्रक से वापस लौट रहे थे क्योंकि गाड़ी जो है वो तबाह हो गई
5: जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमको बाद में पता चली
0: जी।
5: बट वो जो गायकी थी वो क्या फील था उसमें, हा हा हा।
0: तो वो जो पूरा वो एक्सीडेंट की बदहवासी और वो
5: सारी उन्होंने वहां निकाली।
0: गजब की बात है ये तो।
5: सारी संगीत के दौरान उन्होंने गाया बजाया तो उससे क्या होगा कि सारा जितना भी बैकलैश था ना वो सारा खत्म हो गया।
0: खत्म हो गया,
5: नाउ ही इनटू म्यूजिक।
0: गजब की बात है ये।
5: देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी रेमेडी है।
0: हाँ,
5: आज डॉक्टर्स इंजीनियर सब म्यूजिक सीख रहे हैं ताकि हमको ईज मिले, हमको सुकून मिले, हमको स्ट्रेस फ्री हो।
0: हाँ,
5: ये कितना बड़ा एक एजुकेशन है कि वो आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी से ट्रक में बैठ के आया और स्टूडियो में आया और उन्होंने आते ही उन्होंने बाजा पकड़ा एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग। मुझे लगता है शायद एक डेढ़ घंटा गा रहे थे वो।
0: बाप रे,
5: जब हम पहुंचे तो आवाज चल रही थी, गा रहे थे वो। उसके बाद उन्होंने रिकॉर्डिंग की,
0: कौन
5: सा गाना मुझे याद नहीं लेकिन रिकॉर्डिंग की।
0: जहां तक मुझे लगता है रुके रुके से कदम वो गाना था, वो गाना यहाँ सुन ले।
5: हमारे कदम रुकी गए थे उनकी आवाज सुन के।
0: क्या बात है।

0: मदन जी की यादें और भी शेयर की जाएं और मदन जी से जुड़ी कुछ और बातें हमारे साथ बांटिए, म्यूजिक रूम की बातें, रिकॉर्डिंग की बातें।
1: म्यूजिक रूम में मैं उनके कभी नहीं गया
0: जी।
1: म्यूजिक रूम में एक दफा उनके साथ मैं गया था, मास्टर जी के साथ,
0: सोनिक साहब।
1: हाँ, सोनिक साहब सावन भादों का बैकग्राउंड कर रहे थे उनकी।
0: अच्छा।
1: अपनी फिल्म का।
0: हाँ।
1: तो मुझे बोलते उत्तम यहाँ मदन जी का चलते हैं, वहां चल के बैठेंगे। तो मदन जी का पियानो था वो। दूसरी दफा मैंने उनका म्यूजिक रूम देखा, पहली दफा जब मैं सुनाने गया था वायलिन
0: जी,
1: दूसरी दफा ये मैं मास्टर के साथ अरेंजमेंट करता था
0: तब
1: उनका लिखता था। तब हम लोग ऐसे 3-4 दिन उनके म्यूजिक रूम में गए, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक लिखा। बस मेरी मदन साहब की ये यादें हैं। हाँ, एंड की जो याद है, लास्ट की, उनका गाना चल रहा था मौसम का गाना, दिल ढूंढता है
0: जी।
1: दिल ढूंढता है गाना अरेंजमेंट किया ज्ञान वर्मा ने। ज्ञान वर्मा को कोई और रिकॉर्डिंग नहीं थी तो मुझे बोला उत्तम तू कंडक्ट कर ले।
0: तो इस गाने की रिकॉर्डिंग को आपने कंडक्ट किया?
1: इस गाने की जो फाइनल रिकॉर्डिंग है वो कंडक्टिंग मैंने की, म्यूजिक सारा उसका था।
0: अच्छा।
1: तो जब मैं कंडक्ट कर रहा था तो सामने मदन साहब बैठे हुए थे, मदन साहब, कौशिक साहब सब बैठे थे, भूपी जी गा रहे थे। तो मुझे इतना याद है कि वो गाना खत्म होते होते तक उनका सर जो है वो टेबल पे लगा हुआ था,
0: पैनल की टेबल।
1: ही डजंट रिमेम्बर कि गाना खत्म हो गया।
0: अरे बाप रे।
1: हाँ, ही वाज सो ड्रंक कह तो, या आई डोंट नो व्हाट स्टेट ऑफ माइंड ही वाज। वो पूरे ऐसे बैठ गए। बाद में गाना हम लोगों ने पास किया।
0: अच्छा।
1: भूपी जी ने और कौशिक साहब ने और मैंने, हम लोगों ने गाना सुना, ये टेक ओके है, ही डजंट वांट एनीथिंग, इट वाज सो पैथेटिक।
0: ये दौर जो है वो निराशा का, बीमारी का,
1: लेकिन
0: तमाम चीजों का
1: गाना दे गए, दिल ढूंढता है
0: जी।
1: तो जी देखिए वो गाना, दिल ढूंढता है फिर फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है। अब ये सैड है
0: जी।

0: वही पोएट्री है, उसको एक सैड और एक, और ये इसका बहुत चर्चा हुआ था इंडस्ट्री में।
1: जी, एक
0: मुझे
1: ही गाने
0: हमको
1: की।
0: याद है कि अरे यार मदन जी का क्या गाना आया, सैड भी है और हैप्पी भी है, बहुत चर्चा हुआ था इस गाने पे।
1: क्या प्यारी बात है,
0: हाँ,
1: वाह वाह वाह।
0: और ये गाना जो है सैड वाला, ये मैं कंडक्ट कर रहा था, ये फिल्म सेंटर का गाना है
1: जी,
0: और 60-70 म्यूजिशियन थे, बहुत अच्छा गान है, बहुत अच्छा म्यूजिक
1: इसमें एक मेटल
0: ऑर्केस्ट्रा।
1: फ्लूट सुनाई देती है।
0: हाँ, वो की फ्लूट है, वो
1: जी
0: उसकी मुरली जी ने बजाया है,
1: वाह
0: जो
1: वाह वाह,
0: सैक्सोफोन के बहुत,
1: क्या बात है।
0: मुरली सिंह करके,
1: जी जी
0: जो
1: जी
0: पंचम जी के असिस्टेंट भी थे,
1: बिल्कुल,
0: और हमने साथ में बहुत काम किया हुआ।
1: मुरारी दादा को मैं विविध भारतीय लेके आया था और उनसे बहुत
0: हाँ
1: लंबी बातें रिकॉर्ड की
0: हाँ
1: थी।
0: वो मतलब ऐसी फ्लूट फिर इंडस्ट्री में बजी नहीं,
1: जी
0: वो
1: बिल्कुल,
0: उनसे शुरू हुई, उन पे खत्म हो गई,
1: क्या
0: ऐसा
1: बात है।
0: हुआ।

0: मदन जी की कुछ और यादें हैं।
1: मदन साहब की एक बात मुझे आज भी याद है। रोशन जी गुजरे थे
0: जी, अचानक उनका निधन हो गया था।
1: अचानक निधन हो गया, हंसते हंसते।
0: एक पार्टी में थे वो,
1: तो शायद दूसरे दिन सुबह का टाइम था, उनकी बॉडी को ले जाना था डरियश। तो मदन जी लेफ्ट उनकी बॉडी के बिल्कुल सर के पास बैठे हुए थे।
0: जी जी
1: मदन जी, और हम लोग यहाँ, मैं था और काफी लोग खड़े हुए थे,
0: इंडस्ट्री के लोग,
1: इंडस्ट्री के लोग खड़े हुए, मैं बिल्कुल नजदीक खड़ा था। मदन साहब यहाँ लिटरली गालियां दे रहे थे रोशन जी को।
0: अरे बाप रे,
1: लिटरली गाली, मैं यानी गाली नहीं बता सकता
0: जी,
1: लिटरली माँ की गाली दी, लिटरली बहन की गाली दी, और कहा कि रोशन तू तो छोड़ के चले गया, अब मैं जवाब किसको दूंगा।
0: अरे बाप रे, अरे गजब।
1: आप सोचिए क्या भाव है,
0: क्या भाव है कि अब मैं जवाब किसको
1: दूंगा। डेड बॉडी पड़ी हुई है, रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि सारे तू चले गया, तू चले गया, मैं जवाब किसको दूंगा अभी,
0: किसके लिए म्यूजिक बनाऊंगा,
1: किसके लिए म्यूजिक बनाऊंगा।
0: अद्भुत बात है
1: ये, मुझे आज भी है।

और कुछ 15-20 साल 25 साल के बाद में हमारा एक सोनिक साहब का छोटा भाई राज, राज सोनिक, जो मेरे यहाँ काम करता था, लास्ट तक मेरे साथ काम किया, हमारी कुछ बात नहीं, तो बोला मैं तो आपके बाजू में खड़ा हुआ था। मैंने कहा ये बात सही है? उन्होंने गालियां, बोले गालियां, इतनी गालियां दे

0: थे हम सोच नहीं सकते। मतलब मदन जी को ये पता ही नहीं कि लोग बैठे हुए यहाँ पे एंड ही इज अब्यूजिंग हिम।
1: लेकिन वो इतने जज्बाती हो गए थे
0: जज्बाती हो गए थे, इतना
1: जी,
0: प्यार था, एक आत्मा का जिसको प्यार कहते हैं।
1: वो था।
0: साले तू तो चले गया, किसको जवाब दूँ? जैसे
1: क्या दौर था, क्या
0: जैसे
1: लोग थे
0: जैसे संगीत ही चले गया हो ना, ऐसा हो
1: जी
0: गया ना।
1: जी
0: क्योंकि उस दौरान में बहुत रिस्पेक्ट थी एक दूसरे की। अगर आपने एक अच्छा गाना लिख दिया तो आपको लिखने वालों के 15 फोन आ जाएंगे।
1: बिल्कुल
0: एक साहिर साहब ने अच्छा गाना लिख दिया तो मजरू साहब भी फोन कर रहे हैं, आनंद बख्श भी फोन कर रहा है, तो वो भी फोन कर रहा है, तो वो भी फोन कर रहा है। तो आज अगर आप अच्छा कुछ करते हो तो उसको खत्म कैसे किया जाए ये सोचा जाता है।
1: जी
0: ये दौर में फर्क हो गया है।
1: जी
0: वो दौर था प्यार का, अब दौर है दुश्मनी का,
1: जी जी जी
0: कि दुश्मनी कैसे की जाए।
1: आपने मदन जी का जिक्र किया और उसके बाद रोशन साहब का जिक्र आया, उनसे भी आपका एक नाता रहा है,
0: जी
1: उनसे जुड़ी यादें शेयर कीजिए।
0: बड़ी खूबसूरत। हम लोग पहली रिकॉर्डिंग बजाने गए, कुछ 7-8 बच्चे लोग थे,
1: अच्छा
0: उन्होंने बुला लिया उनको। और मुझे याद है कि श्याम राव जी और भूपी जी और केरसी जी,
1: ये म्यूजिशियंस थे।
0: ये उनके अरेंजर थे,
1: अच्छा
0: ये उनके सलाहकार थे, केरसी और श्याम राव। भूपी जी तो दोस्त थे उनके। तो हम लोग पहुंचे, पूरा रिहर्सल वेसल हो गया। 10:15 बजे
1: जी
0: छोटा सा आदमी आता है, 4.5 फुट का, रोशन जी आ गए।
1: हाँ, वो छोटे कद के
0: मैंने
1: थे
0: पहली दफा देखा उनको।
1: जी।
0: तो आते ही किसी से कुछ कोई बात नहीं, सीधा ऐसे आए अंदर, ऐसे जैसे वो मैडम बैठी हैं ऐसे अंदर चले गए।
1: जी
0: अंदर से माइक्रोफोन ऑन करके बोलते हैं, हाँ म्यूजिक सुनाओ। अभी म्यूजिक सुनाओ, अभी जब तक केसी जी 1-2 नहीं बोलेंगे हम तो बजा ही नहीं सकते, हम सब बैठे हुए हैं। आवाज आ रही है कि म्यूजिक सुनाओ। तो केसी चुप, श्यामराव भी चुप, भोपी भी चुप, हम सब चुप बैठे। कम से कम 60-70-80 म्यूजिशियन तो होंगे। फिर अंदर से, अरे म्यूजिक क्यों नहीं बजाते, म्यूजिक सुनाओ। केसी श्यामराव म्यूजिक सुनाओ। फिर चुप।
1: अरे
0: अब ये मैम सोच रही है, नए बच्चे हैं कि ये क्या हो रहा है, म्यूजिक डायरेक्टर बोल रहा है म्यूजिक सुनाओ, हम सब चुप बैठे हो, म्यूजिक रेडी है। फिर कैसे बोलते, ऐसे थोड़ी ना सुनाएंगे।
1: आई
0: हाँ तो फिर कैसे सुनाओगे, पहले अपने प्यार से बोलिए तो सही।
1: हाँ
0: अभी प्यार कौन सा, अंदर से माँ बहन की कहे शुरू हो गई। अरे हम तो हैरान हो गए। मैं कहा यार ये कौन सा प्यार है यार, वहां की वहां गाली, म्यूजिक सुनाओ, ये म्यूजिक सुनाओ, ये म्यूजिक सुनाओ, अभी सुनाओ के सुनाओ। हाँ अब सब तालियां बजाएं, अब सुनाएंगे म्यूजिक। और उसके बाद म्यूजिक शुरू
1: ये
0: हुआ,
1: प्यार था, ये
0: म्यूजिक
1: स्टाइल
0: शुरू
1: थी।
0: हुआ। आशा जी थी या पता नहीं कौन था, आशा जी आई, रिहर्सल किया, 2-2.5 घंटे 3 घंटे में गाना खत्म।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: ये पहली याद थी उनके साथ।
1: क्या बात है।
0: ऐसा एटमोसफियर, आप सोचोगे वो म्यूजिशियन कह रहा है पहले हमको गालियां दो
1: तब
0: तब
1: बजाएंगे,
0: हम बजाएंगे।
1: गजब गजब
0: तो ये एटमोसफियर था
1: जी।
0: देशन
1: उनके
0: का।
1: साथ आपने कुछ गाने बजाए?
0: गाने बजाए लेकिन कुछ याद नहीं कौन कौन से गाने बजाए,
1: अच्छा,
0: याद नहीं।
1: SG बर्मन,
0: अरे बर्मन दादा तो, अरे बाप रे,
1: उनकी यादें माटी है
0: बर्मन साहब क्या तो बजा ही रहे थे, क्योंकि सेम ग्रुप था
1: जी जी
0: पंचम जी का। इतना मुझे याद है कि महबूब में रिकॉर्डिंग थी और देव साहब की फिल्म थी,
1: हाँ
0: शायद गाइड होगी।
1: ओके
0: तो हम लोग बजा रहे थे, रिहर्सल हो गई, रिहर्सल हो गई। तो बर्मन साहब ने कुछ मलोरी जी को पीस बताया, बीच में खड़े होके, महबूब स्टूडियो की बात है, पीस बताया उन्होंने। तो उन्होंने वो पीस बताया और मैंने वो यहाँ से वो पीस बजा दिया।
1: अरे गजब।
0: तो ऐसे मुड़ के देखा, मलोरी को पूछते बंगाली में, कौन बजाया? बोले वो लड़का है। फिर से बोलो बजाने के लिए। तो मैंने फिर से बजा दिया। तो मनोरी को बोलते सबको बोलो ऐसा बजाने के लिए
1: अरे बाप रे, गजब।
0: जैसा उत्तम बजा रहा है ऐसा। यूनुस जी मैं बैठा था 2nd या 3rd रो में। सेकंड डे सबको ऑर्डर हुआ कि सेंटर का जो पहला बीच की कुर्सी है वो उत्तम की होगी।
1: ओ
0: दादा ने मुझे प्रमोट कर दिया,
1: वाह
0: मैं 3rd रो से 1st रो में आ गया।
1: वाह वाह वाह, एक महान संगीतकार थे
0: एक
1: वो और
0: महान
1: अपनी धुन के
0: संगीतकार,
1: पक्के।
0: बहुत जबरदस्त।
1: कुछ और घटना याद आती
0: और
1: है
0: एक टाइम ऐसा आया कि जब बासु मुरारी ने छोड़ दिया था,
1: जी?
0: तो यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊंगा जो आम तौर पे कोई नहीं करता, बट मेरे से होती चली गई।
1: अच्छा
0: क्यों हुई मुझे नहीं पता, बट
1: जी
0: मेरे से ये चीज होती चली गई जो कोई नहीं करेगा, किसी ने की नहीं होगी और आगे भी कोई नहीं करेगा। जो ये मेरे से होती चली गई, मैंने नहीं किया, होती
1: जी
0: चली गई।
1: जी
0: बर्मन साहब ने मुझे बुलाया काम के लिए, अरेंजमेंट के लिए,
1: अच्छा
0: हाँ कि मेरे साथ काम करो। तो मैं गया, बैठा।

0: खत्म, मासूम उन्हें तो छोड़ के चले गया। मैंने कहा हाँ दादा, वो तो पता चला, वो तो वहां बैठे हैं मद्रास में, तो हमको गान करना है इसका, गोल्डी का, बहुत इमीडिएटली गान करना है, तुम करो। मैं बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, क्या क्या सोच रहे हो? मैं कहा दादा आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम हमको ना बोलता है? मैं कहा दादा आपको ना नहीं बोल रहा। फिर मैं दादा मेरा एक प्रिंसिपल है कि जो जिसके अंडर में मैंने काम किया हो वो कुर्सी मैं कभी नहीं लेता। मैंने कहा आपके साथ बहुत बजाया है, बासु मुरली काम कर रहे थे, अब आप उनकी कुर्सी मुझे दे रहे हो। मैं कहा दादा मैं नहीं कर पाऊंगा। यूनस कैन यू बिलीव इट, वो आदमी उठा, दादा उठे और मेरे कंधे पे एक हाथ रखा
1: जी,
0: एक शाबाशी का एक हाथ रखना होता है, एक फील होती है उसमें।
1: जी जी,
0: खूब भालो खूब भालो
1: खूब भालो
0: खूब भालो। मैं चला गया।
1: आपने किसी म्यूजिशियन की जगह नहीं ली? लेकिन
0: मैंने किसी अरेंजर की जगह नहीं ली
1: जी।
0: मेरे को सबका ऑफर आया
1: जी,
0: कल्याण जी का ऑफर आया, पप्पी लेडी का ऑफर आया, अन्नू मेलक मेरे पीछे, शंकर जयकिशन का ऑफर आया, आर डी बर्मन का, बाद में जब वासुदा चले गए तो मुझे ऑफर आया, कभी मैंने कहा, मदन जी का ऑफर आया मुझे
1: जी जी,
0: मैंने कभी नहीं लिया।
1: सिर्फ इसलिए कि आपको किसी दूसरे,
0: मैं उनके अंडर में, उनके अंडर में काम कर चुका हूँ, मैं अभी कैसे जाऊँ
1: जी,
0: ऐसे म्यूजिशियन चले जाऊंगा, म्यूजिशियन ठीक है, बट ऐसे अरेंजर में नहीं लिया मैंने आज तक किसी की जगह नहीं ली।
1: क्या बात है,
0: कभी नहीं।
1: लेकिन एज ए म्यूजिशियन आप बजाते रहे?
0: एज ए म्यूजिशियन बजाते,
1: दादा के लिए भी बजाते?
0: हाँ हाँ दादा के लिए, लेकिन बाद में फिर वो ग्रुप पूरा चेंज हो गया था
1: जी।
0: फिर वो अनिल अरुण आ गए थे,
1: हाँ हाँ,
0: तो फिर वो ग्रुप पूरा फिर जा ही नहीं सके, बजा ही नहीं सके, उनके हैंड में तो बिल्कुल नहीं बजा सके।

कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर।

0: उत्तम जी देखिए, नौशाद साहब की, मदन मोहन की हमने बातें की, हमने रोशन साहब की बातें की, एस डी बर्मन की बातें की, और कौन से म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जिनकी बातें करनी जरूरी है?
1: देखिए जी, मैंने तो सब क्या बजाया है, कोई ऐसा संगीतकार नहीं था 1962 के बाद
0: जी,
1: चाहे वो श्री रामचंद्र साहब हो, चित्रगुप्त जी हो।
0: चित्रगुप्त जी क्या अभी बजाया?
1: बहुत।
0: और अन्ना क्या अभी बजाया?
1: अन्ना क्या तो एक किस्सा है, बहुत संगीतमय किस्सा है वो।
0: बताइए।
1: वो किस्सा जरूरी है आज के लोगों के लिए, वो किस्सा सुनना बहुत जरूरी है। एक तो क्या, अन्ना बहुत स्ट्रिक्ट थे। अगर 70-80 म्यूजिशियन बैठा हुआ है और अन्ना की एंट्री हो गई तो सब सैलेड हो गए।
0: अच्छा।
1: हाँ, फिर आप अगर एक सुई भी फेंकोगे तो उसकी भी आवाज आएगी, इतना डिसिप्लिन था। और अन्ना का क्या था कि अन्ना ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, हम उसके मुलाजिम हैं, ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग हम उनके म्यूजिशियन हैं, रिकॉर्डिंग के बाद वो हमारे दोस्त हैं।
0: वाह वाह वाह, पूरा मूड बदल जाएगा।
1: ये उनका फर्क था। और रिकॉर्डिंग के बाद ये वही अन्ना है कि आप कोई सोच भी नहीं सकते
0: जी।
1: तो हम लोग रिकॉर्डिंग बजा रहे थे
0: जी,
1: और अच्छा गाना, मुझे गाना याद नहीं है, अच्छा गाना था, रिहर्सल विहर्सल किया, गाना रिहर्सल हो गई, रफी साहब आए, रफी साहब ने रिहर्सल किया, अब रिकॉर्डिंग शुरू हुई। तो अंदर से शर्मा जी की आवाज आई, अन्ना की आवाज आई, जॉनी चलो टेक शुरू करते हैं, जॉनी गोम्स उनके असिस्टेंट थे, ओके सर, 1-2 दिया, उन्होंने म्यूजिक शुरू हुआ, इंट्रोडक्शन शुरू हुआ, फुकड़ा गया, म्यूजिक बन गया, अंतरा शुरू और अंतरा चल रहा है, अंतर के बाद जहां क्रॉस आया
0: जी,
1: क्रॉस शुरू और अंदर से कट हुआ,
0: अरे अरे
1: आवाज आई कट कट, कुछ पता नहीं क्या है, क्यों कट हुआ, एक टेक कट हो गई, सेम जगह में दूसरी टेक कट हुई,
0: क्रॉस पे
1: कट हुई, तो अंदर से आवाज आई। अच्छा, उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे जब अंदर से बोलते थे तो म्यूजिशियन भी सुना करते थे और सिंगर भी सुना करते थे।
0: जी जी,
1: क्योंकि सिस्टम ऐसा था, अभी हम सब शांत, 70-80 म्यूजिशियन शांत बैठा हुआ है, हुआ क्या है, अभी अन्ना बोल रहे हैं, रफी साहब आप मोहम्मद रफी हो, आप सबके मोहम्मद रफी हो, आपको कौन नहीं जानता, आपको कौन नहीं सुनता, लेकिन क्या है, ये गाना श्री रामचंद्र का है, अगर आप श्री रामचंद्र को नहीं गाओगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा ये श्री रामचंद्र का गाना है। चुप रफी साहब, आप जो क्रॉस गा रहे हो ना, ये शंकर जयकिशन की जगह है, मेरी जगह ये है।
0: गजब,
1: उन्होंने अपनी जगह गा के सुनाई, मेरी जगह ये है, ये श्री रामचंद्र की जगह है, वो शंकर जयकिशन की जगह है, और आपको श्री रामचंद्र की जगह गाना है। रफी साहब सॉरी अन्ना, नहीं नहीं कोई बात,
0: फिर से शुरू हुआ,
1: डे खत्म हो गया।
0: वाह, इसलिए ये बार बार अड़चन आ रही थी।
1: ओके हो गया, एक छोटी सी जगह थी, बोले वो शंकर जयकिशन की जगह है, ये मेरी जगह है।
0: गाना याद है?
1: नहीं गाना वही तो प्रॉब्लम ये है ना, उस टाइम इतना काम करते थे, सुबह अलग दोपहर को अलग, जैसे अभी यहाँ आए इंटरव्यू कर रहे हैं, दूसरा इंटरव्यू, तीसरा इंटरव्यू, चौथा इंटरव्यू, कहाँ याद रहेगा क्या क्या बोला।
0: जी जी जी,
1: ऐसी हमारी हालत थी
0: जी।
1: सुबह मदन साहब का बजा रहे हैं, दोपहर को श्री रामचंद्र का बजा रहे हैं, रात को जिंगल कर रहे हैं, सुबह 7 बजे फिर जिंगल कर रहे हैं, फिर शंकर जयकिशन का बजा रहे हैं, तो ये हालत
0: लगातार भागदौड़ होती थी।
1: लगातार भाग,
0: उत्तम जी बहुत भागदौड़ चल रही थी, अलग

0: म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ बजा रहे थे, फेलो म्यूजिशियंस के साथ किस तरह के रिश्ते थे, जैसे केरसी दादा से, बजी दादा से, मनोहरी दादा
1: ये
0: से?
1: सब लोग जी, ये तो ऐसा था ना, ये आप सोचिए कि जब मेरी शादी हुई तो मैं शायद 7 या 8 घंटे या 6 घंटे वाइफ के साथ पास रहता था घर में,
0: हाँ
1: बाकी तो सब इनके साथ ही रहता था।
0: जी हाँ।
1: तो केरसी जी, भूपी जी, मरोरी जी और उसके बाद भज्जी, ये सब लोग तो मतलब आप सोचो 16-16 घंटे हम साथ में थे,
0: बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा वक्त इन लोगों के साथ बीता
1: ज्यादा
0: था।
1: गुजरी जो लाइफ है वो इनके साथ ही गुजरी है।
0: तो आपके सबसे पक्के दोस्तों में से कौन थे इनमें?
1: पक्के दोस्तों में भज्जी था,
0: अच्छा
1: भज्जी एक वकील अच्छे विदेशन थे, वो
0: हाँ,
1: भी गुजर गया अभी। भज्जी, वकील, भूपी जी,
0: भूपिंदर सिंह जी,
1: हाँ,
0: जो
1: और
0: बहुत बड़े गायक भी थे
1: बहुत
0: और
1: बड़े
0: गिटारिस्ट थे
1: गिटार, और केरसी जी,
0: जी
1: ये हम लोग काफी अच्छा ग्रुप था। रात को साथ में बैठना,
0: जी
1: और मैंने सबको छोड़ना क्योंकि मैं नहीं पीता था,
0: जी
1: लेकिन ड्राइवर इनका मैं था, गाड़ी भी मेरी, ड्राइवर भी मैं, और छोड़ना भी इनको। तो ये
0: पार्टियां वो लोग करेंगे और
1: पार्टियां वो लोग
0: छोड़ेंगे आप।
1: करेंगे क्योंकि सब दोस्त है, लेकिन छोड़ूंगा सबको मैं घर में।
0: इन सब में सबसे बदमाश कौन थे?
1: बदमाश तो सारे थे सारे बदमाश थे।
0: जी
1: म्यूजिशियन जो है ना
0: जी
1: एक्चुअली बदमाश होता है,
0: अच्छा,
1: हाँ, क्योंकि
0: आपकी भी
1: बहुत,
0: थी बदमाशियां?
1: हाँ, नहीं, हमारी बदमाशी भी क्या है, म्यूजिक में निकलती थी।
0: अच्छा
1: म्यूजिशियन जो है वो स्मार्ट होता है,
0: जी
1: क्योंकि उसको जब प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो बहुत माइन्यूट काम करना पड़ता है,
0: बिल्कुल
1: एक एक सुर को पकड़ना और सुर में लाना और सुर में बजाना, ये एक आत्माई ढांचा है। कि जब तक अगर आपके पास आत्मा नहीं है, इलैयाराजा साहब ने बहुत बड़ी बात कही है कि म्यूजिशियंस आर बॉर्न नॉट मेड।
0: वाह वाह वाह, पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। इलैयाराजा का जिक्र निकल गया, मुझे ये पता है कि आपने सिर्फ मुंबई के फिल्म जगत में ही काम नहीं किया, बल्कि आपने साउथ में भी बहुत सारा काम किया है।
1: जी, मैंने राजा मुझे लेके गए साउथ में अपनी फिल्म के लिए,
0: जी
1: और मैंने राजा साहब के कुछ 600 फिल्में का गाना मिक्सिंग मैंने की है।
0: 600 फिल्में, तो जीवन भर का काम होता है ये तो।
1: हाँ, बट वो तो 35 फिल्में 1 साल में करते थे, ऐसा प्रोजेक्टर पैदा नहीं होगा।
0: तो आपने बहुत वक्त मद्रास में भी
1: बहुत बहुत,
0: बिताया,
1: मेरा एक पाँव मद्रास में, एक पाँव बॉम्बे में।
0: तो वहां आप बतौर अरेंजर होते थे?
1: जैसे अभी मैंने बताया मिक्सिंग, मैं मिक्सिंग करता था,
0: आई
1: और कभी कभी उनके बैकग्राउंड म्यूजिक होता तो कंडक्ट करता था, कभी कोई सोलो होता तो सोलो भी बजाता था,
0: वाह,
1: और हम साथ में ही खाना खाते थे, साथ में ही चलते थे, बहुत
0: लैंग्वेज की
1: लाइव,
0: प्रॉब्लम,
1: कुछ नहीं, म्यूजिकल लैंग्वेज।
0: क्या बात है। इलैयाराजा की म्यूजिक में बहुत लेयर्स होती हैं, बहुत इंट्रिकेट काम होता है,
1: बहुत,
0: तो कुछ यादें
1: मैं
0: बताइए।
1: आपको बताऊं, यहाँ पे मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, और किसी को बुरा लगना नहीं चाहिए, किसी भी संगीतकार को बुरा नहीं लगना चाहिए, उनसे बड़ा म्यूजिक कोई नहीं है।
0: क्या बात है, क्या बात
1: इसलिए हर आदमी अपनी अपनी जगह है,
0: जी,
1: बट ही इज द मैन हु नोज अबाउट म्यूजिक फ्रॉम A to Z।
0: वाह
1: लिखना खुद, पढ़ना खुद, कंपोज खुद करना, एक एक म्यूजिशियंस को क्या बजवाना है, ये ही नोज।
0: वाह,
1: तो ये मोस्ट लर्नेड, हमारे यहाँ के जो संगीतकार थे, बहुत बड़े बड़े संगीतकार, उनका कोई जगह ही नहीं, जैसे मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, बर्मन साहब, RD बर्मन, सी रामचंद्र, शंकर जय किशन, इनको चाहिए एक सहारा लिखने वाला, एक नोटेशन लिखने वाला चाहिए, एक ऑर्केस्ट्रेटर चाहिए जो ऑब्लिगेटो बनाए, जो कॉर्ड डाले,
0: जी
1: वहाँ पे अरेंजर की जगह है।
0: जी
1: जैसे मैंने किया, जैसे मैंने अरेंजमेंट किए, तो मेरी एक जगह थी वहाँ पे,
0: बिल्कुल,
1: बट इलैयाराजा के वो किसी की जगह नहीं है,
0: सारा
1: इलैयाराजा
0: काम खुद
1: क्या
0: करेंगे,
1: सारा काम खुद करते, इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा म्यूजिक हो।
0: क्या बात है।
1: जैसे मैं आज अगर मैं करता हूँ, जब मैं अपना काम करता हूँ, मेरा सारा काम खुद का है, मैं लिखता भी खुद हूँ, जब सोलो पीस होते बजा भी कुछ, लेकिन स्टिल वॉट राजा साहब जो लिखते हैं वो एक आम आदमी नहीं लिख सकता, एक जानकार भी नहीं लिख सकता और आम आदमी भी नहीं लिख सकता।
0: सदमा का गाना मुझे याद आ रहा है
1: हाँ, सुरेश वाडकर,
0: जी, आपने बजाया
1: मैंने बजाया।
0: ऐ जिंदगी गले लगा ली।

0: इलिया राजा की बातें हुई, मुझे एक चीज याद आई, नय्यर साहब।
1: ओहो,
0: उनसे जुड़ी भी यादें हैं, एकदम हम बीच में स्किप कर गए। बल्कि मुझे तो ये भी याद आता है कि जब उनकी वापसी का दौर था तब भी क्या कुछ काम किया आपने, निश्चय वगैरह जो फिल्में आई थी?
1: तब मुझे बुलाया था
0: जी,
1: मेरी वही प्रॉब्लम थी।
0: नहीं, आपने मना कर दिया?
1: ना, नहीं कर पाया आपके साथ। मगर नय्यर साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, यू आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड संगीतकार इन द इंडस्ट्री
0: जी,
1: स्पेशली फॉर म्यूजिशियंस, स्पेशली फॉर सिंगर्स ऑफ दोज डेज, रफी साहब। और क्योंकि हमको जो 6-6 महीने के बाद पैसे मिलते थे
0: जी,
1: वो सेट पे पैसे दिलाने वाले नय्यर साहब।
0: अच्छा,
1: हाँ।
0: फॉरन ये काम किया, ये पैसे
1: नहीं, उनका ये था कि भी ये प्रोड्यूसर को बोला कि कल रिकॉर्डिंग है तो इतने पैसे ले आना। ये मैंने किस्सा सुना हुआ है
0: जी, जी।
1: ये पैसे ले आना, तो प्रोड्यूसर बोलता है इतने पैसे क्या जरूरत है, वो तो पैसे 3 महीने के बाद दें। अच्छा, कब दोगे? 3 महीने, तो 3 महीने के बाद रिकॉर्डिंग करेंगे।
0: जी,
1: तो नय्यर साहब इज द डायरेक्टर जिन्होंने म्यूजिशियंस को सेट पे पैसा दिलाना और 500 से 5,000 रुपए करना सिंगर का, ये नय्यर साहब।
0: वाह,
1: रफी साहब 500 रुपए लेते हैं, 5,000 रुपए दिलवाया उनको और म्यूजिशियंस का पूरा। और किसी ने अगर सोलो अच्छा बजा, मनोरी जी तो हमेशा उनसे, किसी ने ऐसा सोलो बजा दिया तो जैसे रिकॉर्डिंग खत्म हुई जेब में 500 रुपए डाल दिया, 100 रुपए डाल दिया, जो भी डाल दिया,
0: जो अच्छा बजाया उसका इनाम।
1: तो ये नय्यर साहब थे।
0: वाह, अब बाद में नय्यर साहब की शैली में तुषार भाटिया ने अंदाज अपना अपना में म्यूजिक दिया था।
1: हाँ, वो मैंने किया है।
0: वो आपने किया है?
1: हाँ,
0: उसके बारे में बताइए।
1: वो ही, मैंने दो या तीन गाने किए, उसके ज्यादा नहीं कर पाया, मेरा टाइम नहीं था मेरे पास। और बहुत पूरा कॉपी म्यूजिक, पूरा
0: नय्यर साहब की शैली,
1: पूरी नय्यर साहब को लेके। और क्या होता है ना, देखिए नय्यर साहब नय्यर साहब है,
0: बिल्कुल
1: आप उनको कितना भी कॉपी कर लो, नय्यर साहब है।
0: हाँ,
1: आप कॉपी हो,
0: बिल्कुल।
1: आप आज अगर आप किसी का काम कॉपी कर रहे हो तो यू आर ए कॉपी, यू आर नॉट ओरिजिनल, डू समथिंग ओरिजिनल।
0: बहुत सही बात करें।
1: आपको इतनी बड़ी फिल्म मिली है, बहुत बड़ी फिल्म थी वो, सलमान खान आमिर खान की फिल्म कर रहा है
0: जी।
1: अच्छा, कुछ डिफरेंट म्यूजिक दिया होता तो आज शायद कुछ अलग होता।
0: हम सब ये बात करते हैं कि नय्यर की शैली के गाने।
1: हाँ, तो बात वही आ गई ना
0: जी,
1: हार्डली चले वो गाने, ज्यादा नहीं चले, क्योंकि जब ओरिजिनल सुनना तो फिर नय्यर सबको ओरिजिनल सुनते हैं ना।
0: गीतकारों से किस तरह के रिश्ते रहे जब आप म्यूजिशियन थे तब?
1: हाँ, मैंने सबके साथ एज ए अरेंजर, साहिर साहब के साथ, राजेंद्र कृष्ण जी के साथ, और उस टाइम के जो योगेश और इंदिवर जी, सबके साथ काम किया हुआ
0: जी। जी,
1: रिश्ते भी अच्छे थे। नमस्ते नमस्ते थी
0: बख्शी साहब,
1: बख्शी साहब के साथ मैंने एज ए म्यूजिशियन काम नहीं किया, मुझे बख्शी साहब बिल्कुल पसंद नहीं थे।
0: मुझे पता है ये बात, तो मैंने सोचा कि इसका जिक्र आगे दिल तो पागल है के टाइम करेंगे।
1: मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे वो बख्शी साहब, एक तो वो पान खाते रहना
0: और पीक दान
1: रखना और उसमें थूकते रहना, लेकिन दिल तो पागल आई।
0: हाँ,
1: अभी हम गाने कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि दिल तो पागल कर रहा हूँ। मैं तो अपना टेलीफिल्म कर रहा था, यशराज फिल्म की।
0: हाँ, ये बताया गया था कि ये टेलीफिल्म है,
1: टेलीफिल्म,
0: और कतई नहीं बताया गया कि स्टार कास्ट क्या है।
1: नहीं, वो टेलीफिल्म ही थी।
0: ओके,
1: गानों ने कन्वर्ट कर दिया दिल तो पागल है। उन्होंने जब गाने सुने तो उन्होंने कहा कि यार ये गाने तो फिल्म के लग रहे हैं। आदि ने सुना, भाभी जी ने सुना, मनमोहन सिंह जो कैमरामैन थे उन्होंने सुना, यश जी ने सुना, संजीव कोहली
0: बड़े
1: लड़के
0: जी,
1: वही तो लेके गए मुझे।
0: अच्छा,
1: ये बहुत बड़ा जिक्र है,
0: इसको
1: इसको होल्ड रखते हैं,
0: इसको होल्ड रखते हैं।
1: हाँ,
0: यहाँ सिर्फ एक झलक हमने सुना दी।
1: हाँ,
0: आपके जो म्यूजिक की यात्रा की बातें हो रही थी और उसमें हमने बहुत अलग अलग तमाम संगीतकारों को याद किया, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि चूंकि बहुत भागदौड़ थी तो एक दिन में सबसे ज्यादा कितने गाने आप करते थे?
1: देखिए जी, एज ए म्यूजिशियन जो है ना, वो समझिए सुबह मदन साहब का बजाया, दोपहर को नौशाद साहब का बजाया, दो गाने।
0: वाह, दो लेजेंड लोगों के साथ काम हो गया आधे दिन में,
1: एक दिन में।
0: अभी तो एक शिफ्ट बची है।
1: नहीं, एक दो शिफ्टों में
0: जी,
1: सुबह एक शिफ्ट जो है वो मदन साहब के लिए।
0: अच्छा, सुबह की पूरी।
1: और दोपहर को 3-7 या 3-8 या 3-9 दूसरे प्रोजेक्टर के लिए।
0: जी जी,
1: ये हमारा उस टाइम पे लॉ था, यू कैन नॉट प्ले मोर देन दैट,
0: दो से ज्यादा नहीं
1: कर सकते। लेकिन साथ साथ में जिंगल चलते थे
0: जी,
1: एड फिल्म के गाने चलते थे, तो वो सुबह हम 7 बजे करते थे और उसके बाद रात को 9 बजे बैकग्राउंड खत्म किया, 9 बजे के बाद फिर जिंगल किया, तो रात को 12-12 1-1 बजे काम करते थे।

0: जंगल में भी इतना सारा म्यूजिक होता था?
1: जंगल में ज्यादा नहीं, 7-8 म्यूजिशियन, 10 म्यूजिशियन बहुत हो गए, लेकिन एज ए अरेंजर मैंने दिन में 7-7 गाने किए हुए।
0: बाप रे बाप, सब अलग अलग लोगों के लिए?
1: हाँ, मतलब समझिए एक किसी का, जैसे आप आज कोई भी एल्बम उठा लो, चाहे वो पंकज उदास हो, तलत अजीज हो, जगजीत हो, भूपेंद्र हो, सबके जो पहले फर्स्ट एल्बम है ना, वो मैंने किया हुआ है।
0: अरे बाप रे, तो द लेटेस्ट भी आपने किया जगजीत का?
1: जगजीत की जो फिल्में के जो हिट गाने हैं वो सारे मेरे किए हुए हैं।
0: बिल्कुल,
1: उसके पहले ओपनिंग के जो गाने हैं वो सब मेरे किए हुए हैं। तलत के, आपके गुलाम अली का एक एल्बम आया था मिराज़े गज़ल, वो मेरी की हुई है सारी।
0: आशा भोसले और गुलाम अली,
1: वो सारी मेरी की हुई है।
0: अरे क्या बात है, तो मिराज़े गज़ल में से एक गजल सुनी जाए फिर?
1: जरूर जरूर सुनिए, उसमें वायलिन सोलो बहुत है।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह,
1: आप सुन लीजिए उसको।
0: म्यूजिक अरेंजमेंट की बात बहुत हो रही है और आप बता रहे हैं कि आपने कई बार एक एक दिन में 7-7 गाने अरेंज किए। हमारे श्रोताओं में से बहुत सारे श्रोता ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता कि ये म्यूजिक अरेंजमेंट क्या चीज होती
1: क्या होता है, यस,
0: है ना,
1: यस।
0: तो ये आप बताएं कि असल में गाना बनता किस तरह से है और उसमें म्यूजिक अरेंजर का काम म्यूजिक डायरेक्टर से कितना अलग है।
1: देखिए यहाँ पे कंडक्टर का चांस तो मुझे सभी चाचा ने दिया
0: जी,
1: लेकिन म्यूजिक अरेंजमेंट का चार्ज जो है वो मुझे दिया शंकर शंभू।
0: शंकर शंभू कवाल सर?
1: जो कवाल थे, मुझे मैसेज आया कि आओ बुलाया, तो मैं गया मिलने के लिए। मैं जी बोला, हम एक पंजाबी फिल्म कर रहे हैं और बेटा तुम अरेंजमेंट करो। मैंने कहा जी मैंने कभी अरेंजमेंट किया ही नहीं। बोले नहीं करो, दे आर दी पर्सन हु मेड मी अरेंजर।
0: गजब, ये किस साल की बात होगी?
1: 60s की होगी
0: जी। जी
1: हाँ, 60s 65 मोस्टली 65
0: जी,
1: क्योंकि 65 से मैंने अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया था तो पहला उनका। उसके बाद में मैं, जैसे ही मैंने अरेंजमेंट करना शुरू किया तो जितने भी छोटे म्यूजिशियन थे, जैसे इकबाल कुरैशी, छोटा इकबाल, बीएन बाली, ऐसे काफी लोग छोटे छोटे म्यूजिशियन थे, सब ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया
0: अरेंजर के तौर पर।
1: और यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत किस्सा है कि मुझे मिलते थे 30 रुपए में दो गानों का अरेंजमेंट करना। 30 रुपए में
0: जी
1: दो गानों का अरेंजमेंट करना, तो दो गाने सुबह दो गाने शाम, तो दिन के 60 रुपए बहुत बड़ी बात होती। लेकिन हुआ क्या, मैं इतना बिजी हो गया तो जो म्यूजिशियन आए बजाने के लिए वो 100 रुपए दो गाने का लें, कोई 80 ले, कोई 100 ले, कोई 70 ले, कोई 75 ले, और मुझे ही मिले 30 रुपए।
0: अरे अरे,
1: तो एक दिन मैं एक संगीतकार के यहाँ पहुंच गया सुबह 7 बजे। 7 बजे नॉक किया मैंने, अरे उत्तम तुम कहाँ से आ गए सुबह सुबह? जी आ गए। अच्छा आ जाओ, चाय पियोगे? मैं जी पी लेंगे। मैं कहा सर आपसे एक बात करनी थी। बोलो बोलो। मैंने कहा आप मुझे 30 रुपए दो गानों के देते हैं, मैं म्यूजिक बनाता हूँ, कंडक्टिंग करता हूँ, सब करता हूँ, और जो हमारे म्यूजिशियन आते हैं वो कोई 100 रुपया ले जाता है, कोई 70 रुपये ले जाता है, कोई ऐसे, तो मेरा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अच्छा ठीक है, कल बताता हूँ। वो कल कभी नहीं आई। उन्होंने मुझे निकाल ही दिया।
0: ओ,
1: पैसे मांग लिए, जाओ आउट।
0: हाँ हाँ।
1: आप बताओ, आपको जब नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी पैसा मांगने की।
0: जी जी।
1: फिर उसके बाद जो मिलता रहा मैं करता रहा, फिर मेरा नाम धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, फिर अपने आप ही लोगों ने मेरे पैसे
0: बढ़ाने शुरू किए। और म्यूजिक अरेंजमेंट में बहुत सारे काम शामिल हैं।
1: म्यूजिक अरेंजमेंट में मैंने जितना जिंदगी भर काम किया
0: जी,
1: मैंने ये काम किया कि एक तो आपने मुझे गाना दे दिया, ठीक है, आपने एक मेलोडी दे दी मुझे, अब उस मेलोडी के हारमोनी, उस मेलोडी के बीच के म्यूजिक, चाहे वो ओपनिंग म्यूजिक हो, बीच का म्यूजिक हो, वो सारा मैंने बनाया
0: जी।
1: अब पूरे म्यूजिशियंस को रिहर्सल कराई, अब मैंने रिकॉर्डिंग भी करवाई, क्योंकि साउंड मेरा अपना बैलेंस नहीं होता था, तो आई नेवर यूज्ड टू ट्रस्ट एनीबॉडी, मैं मेरा बैलेंस मैं ही करूंगा।
0: अच्छा, तो पैनल पर भी आप ही बैठेंगे?
1: हाँ, मेरे साथ रिकॉर्डिंग के साथ मैं बैठता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए
0: जी।
1: तो मैंने जिंदगी में जो भी काम किया ना वो वन मैन शो किया। म्यूजिक का काम था गाना दे दो,
0: मतलब म्यूजिक डायरेक्टर ने केवल ट्यून बनाई
1: और उसमें भी बहुत सारी चीज मैंने करेक्शन की है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि कई ऐसे म्यूजिक आते थे जिनको ताल का ही पता नहीं होता था, वो लेके आ जाते थे ये सब ऐसा गाना है, उसको ताल में ठीक करना, उसको ठीक करना, आर्टिस्टों को सिखाना। आशा जी होती थी, लता जी होती थी, मुझे ही पूछती थी कि गाना उत्तम इसको कैसे कर?

0: करना है, सो किया क्या जो भी करना है। तो मेरा वन मैन शो रहा है
1: गजब,
0: फिल, हम आपके हैं कौन,
1: क्या बात है।
0: हम आपके हैं कौन और मैंने प्यार किया जो है
1: ये भी
0: ये।
1: बताना जरूरी कि ये फिल्में वो हैं जिनमें म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण थे, लेकिन अरेंजर आप थे।
0: अरेंजर मैं था, बैकग्राउंड म्यूजिक सारा मेरा है, म्यूजिक सारा मेरा है, अरेंजमेंट पूरा मेरा है, सब कुछ, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरी है पूरी, मेरे बिना कुछ वहाँ हिलता नहीं था।
1: जी
0: तो इसलिए मैंने ऐसे अरेंजर जो काम किया है वो राइट फ्रॉम टिल रिलीज मैंने काम किया है। तो ये एज ए अरेंजर जो मेरी जो पोस्ट रही वो मैंने आपको बताई है।
1: जी
0: बाकी कई पुराने संगीतकारों में बहुत खास बात ये थी कि वो म्यूजिक अपना खुद बनाते थे,
1: फर्स्ट म्यूजिक, सेकंड
0: मदन साहब
1: म्यूजिक,
0: म्यूजिक खुद, मेलोडी खुद बना देते थे,
1: जी
0: नौशाद साहब हो गए, शंकर जयकिशन, ये सब लोग अपना म्यूजिक बना देते थे। तो अरेंजर खाली लिखता था, अरेंजर
1: अच्छा,
0: लिखता था, उसको थोड़ा सजाना वजाना, कॉर्ड डाला, वायलिन बजाएगा, चेलो बजाएगा या क्या बजाएगा, वो सब करते थे। लेकिन जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने वन मैन शो शुरू किया।
1: तो आप तय करते थे कि यहां इतने वायलिन होंगे,
0: हाँ,
1: मैंडोलिन आएगा कि गिटार आएगा,
0: क्योंकि म्यूजिक
1: या
0: सारा मेरा होता था ना,
1: जी,
0: तो
1: और
0: मैंने
1: वो
0: अभी,
1: पीसेस भी कैसे बजाए जाएंगे, उनका
0: हाँ,
1: चलन क्या होगा, वो
0: जैसे
1: सब
0: अभी
1: आप तय
0: मदन साहब
1: करते।
0: क्या था, रा रा री री तिरी री, वो बजा दिया,
1: जी
0: और वो पीस मेरा है, मैंने उसको कंपोज किया, बच गया गलती से, मैंने कंपोज नहीं किया गलती
1: जी
0: से।
1: जी
0: तो ऐसे जितने भी म्यूजिक हैं, कंपोज पीसेस हैं, मैंने प्यार का उठा लीजिए आप, हम आपके मन उठा लीजिए, मेरे अपने म्यूजिक उठा लीजिए, दिल तो पागल से, या आप पेंटर बाबू चले जाइए,
1: जी
0: जब
1: जी
0: उत्तम जगदीश थे, तो
1: जी जी
0: सारे म्यूजिक जो है, हर चीज इंटरलूड वगैरह सब मेरा बना हुआ है।
1: अब जैसे हम मैंने प्यार किया की बात करते हैं, अब दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, उससे पहले का जो म्यूजिक है, जो फ्लूट
0: जी
1: जिस तरह से चलती है, और
0: जी
1: वो तो वो सारा आपका तैयार किया
0: सारा
1: था।
0: मेरा बनाया हुआ है।
1: जी
0: और उस टाइम पे वो जो पीस आया था, तारा तारा तारा तारा तारा तारा, इससे पहले ये फ्लूट कभी नहीं बजी थी इस टाइम
1: हाँ,
0: पे।
1: वही बात है,
0: तो उस टाइम पे लोगों ने कहा कि अरे फ्लूट ऐसे भी बज सकती है,
1: क्या बात
0: और
1: है,
0: बहुत लोगों ने यूज किया वो
1: वो
0: इस
1: एक
0: टाइम
1: आलाप की तरह है प्रॉपरली जो आता है।
0: बिल्कुल।

0: यहाँ
1: से, या वो कबूतर जा जा में जो पूरा रिदम है।
0: हाँ
1: मेरे रंग में रंगने वाली के पहले का जो ग्रैंडियोर है
0: हाँ।
1: वो बहुत कमाल है।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित।

ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का दूसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले उनकी।

विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये भजन आप सुन रहे थे, गांधीज फेवरेट भजन बाय लता मंगेशकर, इस एल्बम से आपने इसे सुना। कार्यक्रम रंग तरंग आप सुन रहे हैं और आप सुनते हैं उर्दू मॉडर्न गजल गालिब, इस एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज में मिर्जा गालिब का ये कलाम।

0: अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारी लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: मोहब्बत इस गजल इस एल्बम से ये गजल आपने सुनी। राजेश जोहरी ने इसे लिखा, भूपिंदर सिंह का संगीत और आवाजें भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में नक्श लायलपुरी का ही कलाम।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग और आप आपको सुनवाते हैं सईद राही का कलाम। मधुरानी के संगीत से सजा है, पिनाज मेसानी ने इसे अपनी आवाज दी।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

दिल्ली सिक्स का गाना आप सुन रहे थे, रेखा भारद्वाज और एस सुजाता मजुमदार श्रद्धा पंडित की आवाजों में, प्रसून जोशी के बोल, ए आर रहमान का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: हम दिल दे चुके सनम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कविता कृष्णमूर्ति, करसन सागरथिया और साथियों की आवाजें, महबूब के बोल स्माइल दरबार का संगीत।
1: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
2: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुलाया।

0: एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
1: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा
2: हुआ हूँ।
1: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक निर्देशक और अभिनेता।
4: हमें तुम्हारा लच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा।
3: इंतजार कीजिए,
5: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

तू दिल दे दे इस एल्बम से आप सुन रहे थे पेनाज की आवाज में गीत जिसे लिखा राजू शौरी ने, रहमान राजन का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आप सुनते हैं सिल्क रूट। इस एल्बम से मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल की आवाजों में उन्हीं का लिखा और उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत।

0: सिल्क रूट बूंदें इस एल्बम से आप सुन रहे थे मोहित चौहान, केम त्रिवेदी और अतुल मित्तल को।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गड्डी ले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग और अब सुनवाते हैं सुनो तो दीवाना दिल। इस एल्बम से कमाल खान की आवाज में रूप जौहरी के बोल, कमाल खान का ही संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकाने।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार और धन्यवाद सभी श्रोताओं को कि आप हमारे कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: दुनिया को खुश करने की नहीं, अपने घर परिवार और अपनों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपका परिवार खुश है तो आप सबसे खुश नसीब इंसान हैं।
0: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी और सुल्तान अंसारी जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद अखिला प्रसाद जी का। उन्होंने लिखा है,
0: अजीत जी और विमलेश जी, जापानी मशीनों को रिटायर करने का विषय बहुत ही शानदार था। सच कहूँ तो इस विषय ने मुझे 15 साल पीछे पहुँचा दिया
2: जी,
0: और मेरे पुराने वाहन के साथ बिताई मीठी यादें ताज़ा कर दी
2: जी।
0: मेरा स्कूटर बहुत पुराना था और मैं उसे बेचना चाहता था। यकीन मानिए कि मैंने भी ठीक वही किया जो जापानी लोग करते हैं। मैं अपने स्कूटर के सामने खड़ा हुआ, मैंने प्रार्थना की और अपने वाहन से कहा, तुमने मुझे इतने सालों तक बिना किसी दुर्घटना के चलाया, तुमने हर समय मेरी सुरक्षा का ख्याल रखा।
2: ये कहते हुए मैं भावुक हो गया और आखिरकार मैंने अपना स्कूटर रिटायर कर दिया और एक कार खरीद ली। कार होने के बावजूद मुझे उस पुराने स्कूटर को चलाने का वो सुकून कभी नहीं मिला जो मैंने अपने प्यारे स्कूटर के साथ बिताए। उन शानदार पलों को अपने जीवन में कभी वापस नहीं पा सका। आप दोनों बड़ी मेहनत करते हैं। उमंग में इस दुर्लभ विषय को उठाने के लिए आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद जी। और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। लिखते हैं,
2: 2 सितंबर के कार्यक्रम में आपने जापान में पुरानी मशीन को हटाने से पहले उस मशीन के सामने खड़े होकर नतमस्तक होकर धन्यवाद करने की परंपरा के बारे में बताया। ये बहुत ही शिक्षाप्रद और मार्मिक सीख हमें देता है कि आज हम जिस जगह पर हैं या हम जो कुछ भी हैं, इन पर अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता, गुरुजनों और अपने परिवार का योगदान, सहयोग, साथ और उनका आशीर्वाद जरूर जुड़ा हुआ है। अतः उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम अपने अतीत को कभी न भूलें, चाहे हम कितनी ही शोहरत और सफलता हासिल कर लें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है मुंडा टोला बालोद छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम और माहिर नेताम जी का।
2: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत, हेमंती प्रजापति लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी, आपको हमारा सादर प्रणाम। हम आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है और बड़ी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है।
2: भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
0: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम की कार्यक्रम समीक्षा लिखते समय हम सदैव इस दुविधा में रहते हैं कि किस अंक की समीक्षा लिखी जाए और किस अंक को छोड़ा जाए, क्योंकि हम उमंग का प्रत्येक अंक सुनते हैं और हमें हर अंक बहुत ही भाता है
2: जी।

0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: आगे लिखते हैं, 4 सितंबर के अंक में एप्पल मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश सत्यानंद स्टोक्स, जिनका वास्तविक नाम सैमुअल इवेंस स्टोक्स जूनियर था, जो अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की निस्वार्थ सेवा हेतु हिमाचल प्रदेश में आए। कुष्ठ रोगियों के तन मन धन से सेवा की और एक सबसे बड़ा कार्य हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक किसानों के लिए उन्होंने किया कि अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधों को मंगवाकर उनकी खेती की और पूरे देश और विदेश में हिमाचल प्रदेश का नाम प्रमुख सेब उत्पादक केंद्र के रूप में विख्यात कर दिया।
0: जी।
1: ऐसी नायाब जानकारी मुहैया कराकर पूरी उमंग टीम ने हमें अपना ऋणी बना लिया है। आप दोनों का हृदय से धन्यवाद।
0: आप सबको भी प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए हमारा आभार। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था श्रोताओं कि राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था।
0: इसका उत्तर है साथियों, राष्ट्रगान जन गण मन को स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वरबद्ध किया था।
1: और फिर हमने आपसे पूछा था कि साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया था।
0: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। साइकिल का आविष्कार जर्मनी के कार्ल वॉन ड्राइस ने सन 1815 में किया था।
1: हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और इसके आविष्कार से जुड़े मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए।
0: श्रोताओं, इसका उत्तर है थर्मामीटर को हिंदी में ज्वरमापी यंत्र कहते हैं। इससे जुड़े मुख्य वैज्ञानिक हैं गैलीलियो, ग्रेबियल फेरेनहाइट और स्वीडन के एंडर्स सेल्सियस।
1: हमारा अगला प्रश्न था बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था।
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाइज़लो बायरो ने।
1: हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि स्टेथोस्कोप के आविष्कारक कौन थे और ये शब्द यानी स्टेथोस्कोप किस भाषा से आया है।
0: स्टेथोस्कोप के आविष्कारक थे फ्रांस के डॉक्टर रेने लेनेक। स्टेथोस्कोप नाम दो ग्रीक शब्दों से बना है, स्टेथोस यानी छाती और स्कोपियन यानी देखना या निरीक्षण करना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नों में प्रतिभागिता के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: दक्षिण गंगोत्री किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित है।
1: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं।
0: जी,
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बोलने वाली माद।
0: NCERT की कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक में मुद्रित एक सुंदर और हास्य प्रधान लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि हमें कोई विचार स्थापित करने से पहले अच्छी तरह से तथ्यों की छानबीन कर लेनी चाहिए।
2: एक जंगल में खर नखर नाम का एक सिंह रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस खोज में ही शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में ही घुस गया। उस मांद में घुसकर उसने सोचा,
3: इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वो विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूंगा।
2: यह सोचकर वह उस मांद में एक ओर छिप कर बैठ गया। उस मांद में दधीपुच्छ नाम का एक सियार रहा करता था। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह मांद की ओर जाने के लिए तो थे पर लौटने के नहीं थे। उसने सोचा,
3: हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर अवश्य ही कोई सिंह घुसा बैठा।

0: उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा,
1: ए मेरी मांद, ए मेरी मांद,
0: पुकार कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा,
1: अरे तुझे क्या हो गया है, आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू ये भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा तब तुझे पुकारूंगा, और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊंगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊंगा।
0: अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मांद सचमुच उत्तर दिया करती है। उसने सोचा,
2: आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है।
0: उसने सोचा,
2: ये मांद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा।
0: यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंज ही उठी, आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। सियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया कि
3: इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना।
4: अभी आपने सुना यह हास्य प्रधान खूबसूरत कार्यक्रम बोलने वाली मांद, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम धन सिंह थापा।
5: इस कार्यक्रम के द्वारा भारत की स्थल सेना के जाबाज और पराक्रमी सैनिक धन सिंह थापा के जीवन और भारत चीन के युद्ध के दौरान उनके शौर्य के बारे में बताया गया है, जिसके कारण उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: अरे पता नहीं आज गांव के मुखिया जी ने सभी गांव वालों को क्यों बुलाया है।
1: देखते हैं।
2: अरे वो भी अचानक?
3: अरे भैया मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, चलो सभा में पता चल ही जाएगा।
4: अरे देखो देखो मुखिया जी आ गए।
0: लेकिन साथ में फौजी भाई धन सिंह थापा का परिवार भी है, ऐसा क्यों भाई?
2: भैया कोई खास बात है जरूर।
3: हाँ, अरे भैया कल देर रात ना एक फौजी गाड़ी भी गांव में आई थी।
2: अच्छा,
3: कुछ फौजी धन सिंह के घर आए थे
1: वो? हाँ,
3: बस थोड़ी देर रुके और फिर चले गए।
2: अरे भैया कुछ पता नहीं
3: भगवान
2: मुझे नहीं समझ में आ रहा।
5: सभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भाई और बहनों, आज एक शोक सूचना देने के लिए मैंने आप सबको बुलाया है।
6: शोक सूचना?
5: हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं पड़ोसी देश चीन से हमारा युद्ध समाप्त हुआ है।
4: जी जी मुखिया जी, बहुत बहादुरी से युद्ध किया था हमारी भारत की सेना ने।
5: हाँ बिल्कुल, हमें अपने

0: लड़ते लड़ते शहीद हो गए।
1: हे भगवान, ये क्या हो गया, क्या हो गया, छेद से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, क्या हो गया।
2: कैसे समस्या है?
0: हाँ साथियों, शोक समाचार तो है ही, लेकिन एक एक ऐसा समाचार भी है जिसको सुनकर हम सब का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। मेजर धन सिंह थापा को उनकी असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है।
3: अरे धन्य है हमारी गांव की माटी, जिसने ऐसे जाबाज योद्धा को जन्म दिया।
4: अरे वो हमारा गौरव है,
5: हमारा गौरव है।
3: हमारे देश की माटी निहाल हो गई, निहाल हो गई मुखिया जी। मेजर धन सिंह थापा अमर रहे, मेजर धन सिंह थापा अमर रहे।
0: साथियों, उनका पार्थिव शरीर युद्ध भूमि से प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें संपूर्ण सम्मान के साथ उनकी अंतिम क्रिया संपन्न करनी है।
4: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी,
5: सही कह रहे हैं मुखिया जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
3: जब तक सूरज चांद रहेगा,
6: धन सिंह थापा तेरा नाम रहेगा।
3: भारत माता की
6: जय,
3: भारत माता की
6: जय।
7: साथियों, प्रायः ऐसा माना जाता है कि युद्ध का अंत विजय से ही होना चाहिए। चीन से युद्ध में भारत की पराजय हुई, लेकिन राष्ट्रों की हार जीत से परे वीर योद्धाओं की गाथाएं ऐसी होती हैं जो अजर अमर हो जाती हैं।
8: मेजर धन सिंह थापा की शौर्य गाथा एक ऐसा ही जीवंत उदाहरण है।
7: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास एक गांव है, गांव का नाम है सुरम्य।
8: इसी गांव में 10 अप्रैल 1928 को एक नेपाली परिवार में धन सिंह थापा का जन्म हुआ था।
7: स्थानीय लोग बताते हैं कि धन सिंह थापा को बचपन से ही सेना में जाने की प्रबल इच्छा थी। वो भारतीय सैनिकों की वर्दी, उनका अनुशासन और जीवन शैली से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी टीम को बहुत सारे मैचों में विजय दिलाई थी।
8: और आखिरकार वो दिन आ गया जब 28 अगस्त 1949 को धन सिंह थापा ने भारतीय सेना की 8 गोरखा राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया। गोरखा रेजिमेंट अपने अपूर्व शौर्य और युद्ध कौशल के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है।
7: गोरखाओं के बारे में कहा जाता है कि एक गोरखा 10 सैनिकों पर भारी पड़ता है। सन 1962 के प्रारंभिक महीनों से ही भारत चीन सीमा पर युद्ध की आशंकाएं सर उठाने लगी थी।
9: जय हिंद साहब, आपने मुझे याद किया।
10: जय हिंद धन सिंह, हमारी सीमा पर इस समय जो हालात चल रहे हैं उन्हें तुम अच्छी तरह से जानते हो।
9: जी श्रीमान, मुझे इसका भान है।
10: बेशक, अब तक चीन की फौज ने हमला नहीं किया है, लेकिन उनकी हरकतों और जमावड़े को देखकर ये बात पक्की है कि वो हमला जरूर करेंगे।
9: जी श्रीमान, लगता तो यही है। सुना है वे फौजियों की संख्या भी बढ़ाते जा रहे हैं।
10: तुमने ठीक सुना है धन सिंह, हम चाहते हैं कि तुम अपने दल के साथ पेंगोंग झील के उत्तर की ओर सिरी जाप वन चौकी पर फौरन तैनात हो जाओ। तुम्हारी प्लाटून का काम होगा हर हाल में चीनी सैनिकों की बढ़त को रोकना।
9: जी श्रीमान, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि दुश्मन आगे

0: करने न पाए। धन सिंह, हमें तुम पर पूरा भरोसा है और हम जानते हैं इस काम को तुम बखूबी अंजाम दोगे। बेस्ट ऑफ लक माय सन, बेस्ट ऑफ लक।
1: थैंक यू सर।

0: मेजर धन सिंह थापा अपनी टुकड़ी के साथ सिरिजा पोस्ट पर तैनात हो गए। मेजर धन सिंह थापा की टुकड़ी में मात्र 28 जवान थे।
1: तभी 19 अक्टूबर 1962 को चीन की सेना के करीब 600 सैनिकों ने तोपों और मोर्टारों की मदद से मेजर धन सिंह थापा की पोस्ट पर धावा बोल दिया। गोरखा सैनिक पूरी ताकत से दुश्मन से लड़े और बड़ी संख्या में चीन के सैनिकों को मार गिराया। उन्होंने लगातार 3 बार चीन की सेना के आक्रमण को नाकाम कर दिया।
0: दुश्मन भी भारतीय सेना की इस बहादुरी पर हतप्रभ रह गया।
1: चीन की सेना को भौगोलिक परिस्थितियों का भी लाभ मिला, क्योंकि भारतीय सेना घाटी में थी और वो ऊंचाइयों पर थे, जिसके कारण उन्हें हमला करने में आसानी थी। सूरज ढलते ही अंधकार छा गया। 19 अक्टूबर का दिन बीत गया था। रात शांत थी, लेकिन ये वो शांति थी जो तूफान से पहले की होती है। अक्टूबर 1962 को सुबह 6 बजे चीन की सेना की ओर से भीषण आक्रमण हुआ।
2: साथियों, आगे बढ़ो, अभी नहीं तो कभी नहीं।
3: सब हमारे पास गोलियां बहुत कम बची हैं, दुश्मन बहुत अधिक है,
4: तो हथगोलों का इस्तेमाल करो। तुम हथगोलों का इस्तेमाल करो। मैं वायरलेस पर बेस कैंप को संदेश भेजता हूँ। ठीक है, जल्दी से जल्दी सहायता दीजिए।
3: बिल्कुल, पर इनको रोक के रखो।
4: हेलो हेलो, सिरिजा फोन से मेजर धन सिंह थापा दिस साइड, ओवर।
5: सिग्नल ऑफिसर वेदव्यास दिस साइड, संदेश दीजिए मेजर।
4: हमारे पास कारतूस खत्म हो रहे हैं, जवान भी मारे जा रहे हैं, जल्द से जल्द हथियार और कुमुक भेजिए, ओवर।
5: मेजर, इस मौसम में हमें सहायता भेजने में थोड़ा विलंब होगा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं भेजने की, ओवर।
4: तो जल्दी भेजिए, दुश्मन आगे बढ़ता जा रहा है, अब हम मारकर ही मरेंगे। हेलो हेलो हेलो, हमारा संपर्क रेडियो नेटवर्क से ही टूट गया। अरे ये क्या, वो सिपाही बंदूक फेंक कर टेंट में क्यों भागा जा रहा है? देखता हूँ उसे। अरे
6: उसकी बंदूक यहाँ पे रखी है, इसे लेके चलता हूँ।
4: सुनो, रुको रुको रुको, यहीं पे। कायर बनकर जीने से बहादुर बनकर मर जाना बेहतर है, तो संभालो अपनी बंदूक, एक बार फिर मौत बनकर टूट पड़ो इन चीनियों पर। जय मां काली,
3: जय आया दौर काली, फायर फायर।
0: युद्ध भीषण होता जा रहा था। अब मेजर थापा के पास मात्र 3 जवान ही बचे थे। तभी एक बम उनके बंकर पर आकर गिरा। मेजर थापा ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और इससे पहले कि वो बम फटता, वो बंकर से बाहर कूद गए और अपनी खुकरी से दुश्मन को मारने लगे।
1: अचानक एक चीनी सैनिक ने राइफल की बट से उनके चेहरे पर प्रहार किया। वो जमीन पर गिर गए और उन्हें बंदी बना लिया गया।
4: छोड़ो,
0: दुर्भाग्यवश उनके युद्ध बंदी बनाए जाने की सूचना भारतीय सेना को नहीं मिली। सबने यही समझा कि मेजर धन सिंह थापा वीरगति को प्राप्त हो गए। सेना के अनुरोध पर भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनके पुश्तैनी गांव सुरम्य में उनके अंतिम संस्कार की औपचारिकताएं भी पूरी कर दी गईं।
1: उधर चीन की सैनिक जेल में मेजर थापा को अकथनीय यातनाएं दी गईं। उनसे कहा गया कि उनकी रिहाई में भारत सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हर रात की एक सुबह होती है। जेल में मेजर थापा की दोस्ती एक छोटे चीनी लड़के से हो गई जो नेपाली मूल का था।
0: वो छोटा लड़का मेजर थापा के लिए जेल में खाना लाता था। मेजर थापा उससे बातें करते, अपने दुखों को साझा करते। एक दिन मेजर थापा ने अपने परिवार के नाम एक चिट्ठी लिखी और अपने छोटे दोस्त की मदद से उस चिट्ठी को थोड़ी ही दूर सीमा पार भारतीय पोस्ट में डलवा दिया।
1: चिट्ठी मिलते ही घर परिवार में हलचल मच गई।
7: ला दिखा तो।
8: हाँ, अरे ये तो उनकी चिट्ठी है, तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी है। अरे अरे पिताजी उनकी चिट्ठी आई है। गांव वालों देखो ये जिंदा है, उन्होंने चिट्ठी भेजी है। हाँ, देखो गांव वालों देखो ये चिट्ठी आई है,
9: जिंदा है। अरे बहुत खुश की बात बेटा, जिंदा है धन सिंह थापा।
1: सरकारी स्तर पर वार्ता के फलस्वरूप मेजर थापा चीन के बंदी गृह से रिहा होकर 10 मई 1963 को वापस भारत आए। सेना मुख्यालय में इस महान योद्धा और परम वीर का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने सेना में पुनः कार्य आरंभ किया और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचे। 5 सितंबर 2005 को 77 वर्ष की आयु में इस महान पराक्रमी योद्धा का निधन हो गया। देश के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा, समर्पण और अदम्य साहस के लिए वो सदैव ससम्मान याद किए जाएंगे। उन्हें हमारा शत शत नमन।
10: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम धन सिंह थापा। हमें आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देना चाहेंगे। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
11: जगबंधु,
10: चेतना,
11: अर्शद,
10: सौम्या,
11: प्रसून
10: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयू यादव के साथ
11: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
10: नमस्कार।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए।
2: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
3: मांगो जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
2: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
4: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ।
5: और
4: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आपने सुना जग्गा जासूस फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और अमित मिश्रा की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे, प्रीतम का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अभिनेता रणबीर कपूर अभिनीत फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: एनिमल फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, सोनू निगम की आवाज, राजशेखर के बोल, हर्षवर्धन रामेश्वरम का, माफ कीजिएगा, हर्षवर्धन रामेश्वर का संगीत इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: तीन अक्टूबर को विविध भारती में कौन आ रहे हैं ये तो हमें आपको अभी नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि ये जवानी है दीवानी फिल्म का अगला गीत आपको सुनवाने वाले हैं मैनी दयाल शेफाली अलविज का, की आवाजें हैं अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और प्रीतम का संगीत। और हाँ, विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ये जवानी है दीवानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। बैन दयाल और शेफाली की आवाजें, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, प्रीतम का संगीत।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

बेनी दयाल की आवाज में आप सुन रहे थे रॉकेट सिंह फिल्म से गीत, जयदीप साहनी के बोल, सलीम सुलेमान का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल, जिसमें अभिनेता रणबीर कपूर के जन्मदिन पर उनकी फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं।

सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में शेखर अस्तित्व के बोल आपने सुने। विक्रम मोंटोरसे ने इसे संगीत से सजाया। संजू फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम यादों की महफिल में अब सुनते हैं मोहित चौहान की आवाज में इरशाद कामिल के बोल, ए आर रहमान का संगीत, तमाशा फिल्म के इस गीत में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि रोजाना इस कार्यक्रम में हम एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट करते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और उसमें ही छुपे होते हैं कार्यक्रम के गीतों के शब्द या कई बार गीत भी। तो आज की इबारत आपको बता देते हैं, आज की इबारत है जिंदगी की अजीब दास्तान है ये, रेडियो पर एक आवाज सुनी और हम उसके प्यार में खो बैठे, बस उस आवाज से बंधे हम उसे ढूंढ ही रहे थे कि किसी का झुमका मिला। आ जा रे परदेसी, कहती दूर से गूंजी वही आवाज, एक बार फिर उसी दिशा में बढ़ चले हम। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हमारा हाल पूछता रहा, पर हमने तो खुद से वादा किया था कि उसे ढूंढ ही लेंगे, तो बस वादा निभाना ही था। दौड़ते भागते नदी के किनारे पहुंचे ही थे कि पायल छनकाती वो नाच से बोल उठी, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो। इस अंदाज से उसने अपने जुल्फ को झटका कि हम भी दिल थाम कर कह उठे, प्यार किया तो डरना क्या। ये सुनना था कि वो कह उठी, मनमोहना बड़े झूठे। हमने भी मुस्कुराकर कहा, इस इश्क में जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है। ये सुनकर वो भी कह उठी, मिल गई मंजिल मुझे। आज भी उस बात को याद करके जिया जलता है, न जाने क्यों होता है यही जिंदगी के साथ। इस इबारत में नजर आ रहे होंगे आपको कई गीत, पर क्या इसमें आपने पहचानी कोई और भी खास बात, ये हमने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल पहचान ली है वो खास बात। आपने पहचान लिया है कि आज की इस इबारत में छुपी हुई है वो शख्सियत जिनका आज जन्मदिवस है या कहें जयंती है। और हमारे साथियों ने कहा भी कि स्वर कोकिला लता जी की आवाज केवल एक आवाज ही नहीं है, भारतीय फिल्म संगीत की आत्मा है। उनके गाए हर गीत में जादुई एहसास भरा हुआ है। कुछ कालजयी गीत ऐसे हैं जो मानवीय संवेदनाओं, प्रेम की अनिश्चितता और विरह के चरम बिंदु हैं। जीवन से जुड़ी कश्मकश, अधूरे रिश्तों का दर्द उनके स्वर में हर संगीत प्रेमी को अपने बहुत करीब लगते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कुछ आवाजें हमें वक्त की उन पुरानी गलियों में घुमा देती हैं, जहां यादें ताजा हो जाती हैं, कुछ खुशी की, कुछ गम की, कुछ अपनेपन का एहसास कराती हुई आज के सफर को लता जी की खूबसूरत आवाज और याद और भी सुरीला बनाएगी। तो बिल्कुल सही आपने पहचाना कि आज के इस कार्यक्रम में हम इन गीतों की बातें तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर की बातें भी होंगी, क्योंकि आज है उनकी जयंती और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आज के कार्यक्रम में उनके गीत हम ना सुनाएं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत के शब्दों को अगर लता जी की सुरीली आवाज से जोड़ें तो जैसे एक पूरी प्रेम कहानी संगीत में ढल जाती है। रेडियो पर गूंजती उनकी आवाज कभी आजा रे परदेसी बनकर दिल को पुकारती है, कभी पत्ता पत्ता बूटा बूटा बनकर अपने पन का एहसास कराती है। उनकी आवाज में पायल की छनक, जुल्फों का अंदाज, इश्क की तमन्ना और मंजिल पाने की खुशी सब कुछ महसूस होती है। लता जी की आवाज सचमुच ऐसी सुरीली दास्तान है जिसे सुनकर जिंदगी भी एक खूबसूरत गीत लगने लगती है। तो जब जिंदगी ही हमें गीत लगने लगती है उनकी आवाज को सुनकर, तो क्यों ना कार्यक्रम का आगाज भी किया जाए और एक गीत आपको सुनवाया जाए। तो ये बताइएगा कि गीत किस फिल्म से हमने लिया है, आवाज पहचानने के लिए तो आज हम कहेंगे ही नहीं।

दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, फिल्म का नाम सही पहचाना, यही हमारे सवाल का जवाब था। और हमारे साथी लता मंगेशकर जी के लिए बहुत सी बातें लिख भेज रहे हैं अपने मन से। हमारी एक साथी कहती है कि जो अमर स्वर लता है कहलाती, उस लता दीदी की आज जन्म जयंती, उस सुरीला सफर के गीतों भरी संस्कृति कह रही है ज्योति से सुरदीप्ति की भावभीनी आरती। हमारी ओर से लता जी को विनम्र नमन श्रद्धा सुमन। तो इस तरह से बहुत से हमारे जो साथी हैं वो लता मंगेशकर की आवाज से जिस तरह से जुड़ते हैं उनको वो हमें बता रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि लता जी के एक साक्षात्कार में सुनी थी कि कैसे वे गायिका उमा देवी के साथ रिकॉर्डिंग के समय माइक पर पहुंचने के लिए स्टूल पर खड़ी होकर गाती थी और उमा जी के जरा सा स्पर्श से वे स्टूल से गिर पड़ी थी। और जैसा कि उन्होंने कहा, आज भी वो समय याद आता है तो उन्हें बेहद हंसी आती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमारे जन्म से पहले ही हमारे घर में रोजाना विविध भारती सुनने का माहौल था और जब से मैंने होश संभाला लता दीदी की आवाज में विविध भारती पर उनके सुरीले गीत सुनते रहे हैं और विविध भारती सुनने का शौक आज तक बरकरार है। और हम कहेंगे कि फिर लता जी की आवाज भी रोजाना सुनने का ये सिलसिला भी बरकरार हुआ, क्योंकि कोई भी दिन ऐसा तो नहीं जाता जब उनकी आवाज में एक भी गीत आपने ना सुना हो, बल्कि कई गीत आप जरूर सुनते हैं रोजाना उनकी आवाज में। हमारी और साथी कह रहे हैं कि लता मंगेशकर जी भारतीय संगीत की अमर स्वर कोकिला थी। उनकी मधुर और भावपूर्ण आवाज ने कई पीढ़ियों के दिलों को छुआ। उन्होंने हिंदी के साथ अनेक भारतीय भाषाओं में हजारों गीतों को अपनी आवाज दी। उनके स्वर में प्रेम, विरह, भक्ति, संवेदना के अलग अलग रंग सुनाई देते थे। संगीत की दुनिया में उनका योगदान अद्वितीय है और उनकी आवाज भारतीय सिनेमा की अमूल्य धरोहर बनकर हमेशा गूंजती रहेगी। बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन लता मंगेशकर से जो आपकी यादें या भाव जुड़े हैं वो तो आप हमसे साझा कर रहे हैं, पर हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आप उनसे मिल पाते तो एक लाइन में या एक पंक्ति में बताइए कि क्या कहते हैं उनसे। ये आपको हमें बताना है कमेंट्स के जरिए। अगर आप अब तक हमारे फेसबुक पेज पर नहीं पहुंचे हैं तो www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर आप पहुंच सकते हैं इस पेज पर। और अगर आपके पास फेसबुक का ऐप है तो आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देवनागरी में लिखिए, ब्लू टिक वाला ये जो पेज आपके सामने खुलेगा वहां आपको सुरीला सफर की पोस्ट मिलेगी और यहां आपको कमेंट करके बताना है कि अगर आपको मौका मिलता लता मंगेशकर से मिलने का तो एक पंक्ति में आप उन्हें क्या कहते, क्योंकि इतना ही मिलने का मौका मिलता ना। और एक बात आप हमें बता सकते हैं कि आवाज के अलावा लता मंगेशकर जी के व्यक्तित्व की वो कौन सी बात है जो आपको बहुत प्रभावित करती है। और आवाज की बातें तो हम कर ही रहे हैं, हमारे एक और साथी हैं वो कहते हैं इस बारे में कि लता मंगेशकर जी की संगीत यात्रा पर कुछ लिखना मानो सूरज को उसकी रोशनी का परिचय देने जैसा है। उनकी आवाज सिर्फ गीतों में नहीं करोड़ों दिलों की धड़कनों में बसी है। समय बदलता गया, पीढ़ियां बदलती गई, लेकिन उनके सुर आज भी वही अपनापन, वही सुकून, वही भावनाएं जगाते हैं। उनका नाम भारतीय संगीत के उस उजले अध्याय की तरह है जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। तो चलिए उसी आवाज में सुनते हैं ये गीत और आपको बताना है कि इस गीत को लिखा किसने है और फिल्म का नाम।

दिल एक मंदिर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। और हमारे साथी कह रहे हैं कि आज की लघु कथा सिर्फ एक प्रेम प्रसंग नहीं बल्कि उस अदम्य मानवीय भावना का दस्तावेज है जो कल्पना के सहारे अपनी दुनिया को खूबसूरत बनाती है और जिंदगी की अनिश्चितताओं के बीच भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ती। ये जीवन की उस निरंतर यात्रा का प्रतीक है जहाँ इंसान अपनी मंजिल को पाने के लिए हर मुश्किल पार करने के लिए तैयार रहता है। तो हमारे साथियों से हमने पूछा था कि अगर आपको लता मंगेशकर से एक बार मिलने का मौका मिलता तो आप उन्हें क्या कहते, एक पंक्ति में हमें बताइए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि लता दीदी से अगर मैं मिल पाता तो कहता कि सरस्वती माता के साक्षात दर्शन तो मैंने नहीं किए, परंतु आपसे मिलकर और देखकर मेरे सरस्वती माँ के दर्शन मुझे सरस्वती माँ के दर्शन हो गए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि लता दीदी के गीतों को सुनते ही बड़े हुए, जवान हुए और अब बुजुर्गों में भी आ गए। लता दी के गीतों से सुबह होती है और रात भी वैसे ही होती है। उनके जाने के बाद भी हर रोज उनके गीत बड़ी शिद्दत से बजते हैं, उनकी कमी नहीं खलती क्योंकि उनको कभी देखा ही नहीं, वैसे ही आज हम उनके गीत सुनते हैं। ये कहा कर जा सकता है कि कलाकार अपनी कला के जरिए अमर होता है और इसी तरह से उनकी आवाज हमारे साथ बनी हुई है और बनी रहेगी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि लता दीदी से मिलते तो बस उनको देखते रह जाते और सिर्फ उनके चरण स्पर्श कर लेते। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अगर मुझे मिलने का अवसर मिलता तो शायद ऐसे महान व्यक्तित्व के सामने शब्दों की नहीं सिर्फ श्रद्धा की जरूरत होती और मेरी श्रद्धा का सबसे सच्चा शब्द होता धन्यवाद लता जी। कितनी खूबसूरती से आपने अपने भावों को बयान किया। हमारे और साथी कह रहे हैं कि अगर हमें मिलने मिलता तो हम कुछ नहीं कहते, केवल उन्हें नमन कहते क्योंकि कुछ कह ही नहीं पाते। और हमारे और साथी कह रहे हैं कि इस इबारत की सबसे खास खास बात यह है कि इसमें भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर के अमर गीतों और धुनों को किसी जीवित एहसास की तरह बहुत खूबसूरती से पिरोया गया है। आजादी परदेसी से लेकर प्यार किया तो डरना क्या तक के बोल महज पंक्तियां नहीं बल्कि दो प्रेमियों के बीच संवाद और भावनाओं की धड़कन बन जाते हैं। आवाज की तलाश को संगीत की एक ऐसी रूमानी यात्रा यहाँ बनाया गया है जहाँ कल्पना और पुरानी यादें मिलकर एक जादुई और नॉस्टैल्जिक माहौल रच देती है। हमारे और साथी कहते हैं कि आज की इबारत के शब्दों में

बता दी थी कि इतने सारे गीत बन रहे हैं कि लिस्ट बनाते बनाते हम थक जाएंगे। इसने मन में ही सोच लिया है कि सारा गीत और पहला गीत ही हमारे मन का हो गया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम इस तरह से जब खुद को समर्पित कर देते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे मन की हो जाती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे कि उनकी आवाज सिर्फ गीत नहीं थी, एक एहसास थी जिसने पीढ़ियों के दिलों को छुआ और भारतीय संगीत को दुनिया भर में एक अलग पहचान दी। आज भी उनकी मधुर आवाज हमारे दिलों में उतनी ही जिंदा है और हमेशा गूंजती रहेगी। लता जी को सादर नमन। और भी बहुत सी बातें हमारे साथियों ने लिख भेजी है, लेकिन जिस आवाज की हम बात कर रहे हैं, अगर उसका साथ हमें कार्यक्रम में मिलता रहे तो मजा दुगुना हो जाएगा। तो चलिए सुनाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। बताना है कि संगीत किसका है और फिल्म का नाम।

मधुमति फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत। बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दिया है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अगर मैं लता जी से मिलने का मौका मुझे मिलता, मैं तो हल्का बीकानेर होकर देखती रहती, मेरे मुंह से शायद ही कोई शब्द निकलते, बस यही सोचती कि साक्षात सरस्वती देवी के दर्शन करें। इतना साधारण व्यक्तित्व और इतनी अद्भुत कला। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि लता जी को एक बार जयपुर आने का प्रोग्राम था, एयरपोर्ट पर मेरे पति की ड्यूटी थी, जब पता चला कि लता जी आ रही हैं तो इन्होंने हमें भी घर से बुला लिया, तब साक्षात सुर साम्राज्ञी के दर्शन हुए, उनकी वो मुस्कान आज भी याद है। तो भाई कुछ चुनिंदा जो ऐसे लोग हैं जो भाग्यशाली हैं जिन्होंने उन्हें देखा, इनमें आपका भी नाम शामिल है। हमारे एक साथी हैं वो कह रहे हैं कि बहुत ही बड़ा इन्होंने अपना एक संदेश भेजा है जिसको हम छोटा करके बता रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि विविध भारती एक है, एक विविध भारती एक ही लता मंगेशकर।

आई गाने वाला गीत से हिट हुई लता मंगेशकर का लगभग हर गीत अनमोल है, इसलिए 6 दशकों से अधिक के लंबे सुरीले सफर में कई पीढ़ियां इनकी दीवानी रही हैं। स्त्रियों के सुख दुख के हर क्षण के गीत हैं इनके गीत कोश में, शायद इसलिए लता जी के बेहतरीन गानों की लिस्ट बनाना आकाश से तारे तोड़कर लाने के समान है, सब एक से बढ़कर एक। और आगे इन्होंने कई गीतों के बारे में बात की है और उससे संबंधित बातें लिखी हैं। हालांकि बहुत से साथियों के कमेंट हैं, इसलिए हम इनके कमेंट पूरा नहीं पढ़ रहे। हमारे एक साथी कह रहे कि आज की भारत में जैसे लता जी की जादुई आवाज ने गीतों के मोतियों को एक धागे में पिरो दिया हो। उनकी स्वर यात्रा में प्रेम है, विरह है, शरारत है, इंतजार है और जिंदगी के अनगिनत रंग भी हैं। उनकी आवाज की मिठास और सादगी ने पीढ़ियों को संगीत से जोड़ा और हिंदी फिल्म संगीत को एक अमिट पहचान दी। आज वो हमारे बीच नहीं है, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी हमारे साथी ने। और कह रही है हमारे साथी कि आज सुबह से खूबसूरत गीतों का इंतजार रहेगा, सुबह से रात तक रेडियो पर एक ही आवाज गूंजती है, स्वर कोकिला लता जी संगीत का पर्याय है, वो कोई भी गीत गाए मन मोह लेता है। विविध भारती पर कई गीत पहली बार सुने और बेहद ही पसंद आए, लता जी को सादर नमन। एक और साथी कह रहे हैं कि आज हम सबकी सरस्वती माँ की याद का दिन है, हमारे देश का गौरव आन बान और शान है लता जी, उनके गाए हुए गीत हमारी विरासत है, आज जो भी गीत सुनवाएंगे बड़े ही प्यारे लगेंगे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के गद्यांश में एक बात जो इशारा कर रही है, आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में लता जी के स्वर से आज की गीतों की महफिल रोशन होगी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गायकी के पटल पर लता जी का नाम एक अलग ही अक्षर की तरह लिखा गया है। वे सिर्फ लता जी नहीं बल्कि सरस्वती हैं, हम उन्हें गायन की देवी की तरह पुकारते आए हैं, वे हर भारतीय के मन में गहरे तक बैठी हैं, सुबह से लेकर रात तक उनके गाए न जाने कितने गीतों से हम रोज समृद्ध होते हैं फिर भी मन नहीं भरता। हम अक्सर किसी सुंदर जमीन से छत तक फैली हुई किसी बेल को लता कहकर पुकारते हैं, वे भी बेल की तरह इस जमीन से आसमान तक हम सबके हृदय पर विराजमान है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के लंबे इंतजार के बाद एक ही गाना याद आ रहा है कि तुम संग नेह लगाकर हार गई सजना। कोकिल कंठे सुर साम्राज्ञी भारत रत्न लता जी स्वयं सुर साध्वी साधना रत्न स्वयं सरस्वती की साक्षात मूर्त के रूप में अविरत हो अंतर्ध्यान हो गई। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आज बेटी के रूप में लता जी इस दुनिया में आई थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हिंदी सिनेमा की संगीत यात्रा में लता जी नाम माँ शारदा की तरह वंदनीय है, हर आयु वर्ग में जीवन की हर परिस्थिति में उनके गीत अपने से लगते हैं। बचपन के लिए लोरियां, युवा काल के लिए प्रेम गीत, विरह गीत और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले गीत, जिंदगी के विविध रंगों को लता जी ने अपनी देवी आवाज से एक रंगोली की तरह सजा दिया है। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने कही तो भाई एक गीत तो सुनना बनता ही है। चलिए सुनवाते हैं आपको ये गीत और हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत किसने लिखा।

0: परख फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सलील चौधरी का संगीत।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, और आज सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के गीतों से सजी है ये हमारा ये कार्यक्रम। और हमारे साथी कह रहे हैं कि अगर मैं लता जी से मिलता तो सिर्फ एक ही गाना गाने का अनुरोध करता, ए दिले नादान फ्रॉम रजिया सुल्तान। वही हमारे रजिया सुल्ताना फिल्म। और हमारे एक साथी कह रहे हैं मधुमति फिल्म का नाम पूछना यानी कि मैट्रिक के विद्यार्थियों से दो का पहाड़ा पूछना, पर कभी कभी अच्छा लगता है ना मैट्रिक के विद्यार्थियों को भी दो का पहाड़ा बताना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आजा रे परदेसी, ये गाना मेरे पापा जब काम पर चले जाते थे तो हमारी माँ ये गाना गाकर मेरे पापा को याद किया करती थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ये गाना केवल गाना नहीं बल्कि लता मंगेशकर, सलील चौधरी और शैलेंद्र की त्रिमूर्ति द्वारा रचा गया संगीत का एक उत्कृष्ट दस्तावेज है। गीतों में एक अलौकिक रहस्य और तड़प है। लता जी ने अपनी आवाज में जो पुकार और कंपन पैदा किया सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देता है। आजारे के बाद जो आलाप और गूंज है वो पहाड़ियों में भटकती एक आत्मा की व्याकुलता को पूरी तरह जीवंत कर देती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गीत चुनने में आपको भी मुश्किल होगी लेकिन काफी बेहतरीन गीत आपने इसमें शामिल किए हैं। भाई जब शख्सियत ऐसी होगी सामने तो गीत चुनना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वो पल केवल एक मुलाकात नहीं बल्कि इतिहास के एक पन्ने को छूने जैसा होता जिसने 7 दशकों तक पूरी दुनिया को अपनी आवाज से बांधे रखा। हम शायद भावुक हो जाते, हमारी आंखों में खुशी के आंसू होते और हम बस उन्हें सम्मान से प्रणाम करना चाहते, नतमस्तक होते। खुशी के आंसुओं से आंखें धुंधला जाती और उनकी धुंधली तस्वीर जीवन भर के लिए हृदय में बसाए आ जाते। कितना अच्छी तरह से आप अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। और हमने हालांकि बहुत से गीत तो शामिल कर दिए हैं भारत में लेकिन सारे गीत सुनवाना तो संभव नहीं है, और भी इतने सारे गीत हैं, सबकी पसंद अलग अलग, लेकिन जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। तो चलिए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम बताइए और बताइए संगीतकार का नाम।

लता मंगेशकर की आवाज साथ में मोहम्मद रफी की आवाज में ताजमहल फिल्म का ये गीत आपने सुना। रोशन का संगीत, साहिल लुधियानवी की बोल, सही जवाब आप सभी ने दिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि आज के मौके पर लता जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वो केवल एक नाम नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के जज्बात का नाम है। हिंदुस्तान की आवाज है। लता जी का पूरा जीवन ही संगीत की साधना और संगीत से अटूट मोहब्बत का अफसाना रहा है। उन्होंने जब भी गाया है तब ऐसा लगा ही नहीं कि शब्द हैं बल्कि भावनाएं बह रही हों, ऐसा ही लगा। प्यार की कशिश हो, जुदाई का दर्द हो, देशभक्ति का जज्बा हो या भक्ति का सुकून, उनकी आवाज हर इंसान के दिल का आईना बन गई। आज भले ही वो हमारे बीच ना हो लेकिन जब भी कोई झुमका हवा में गिरेगा, जब भी कोई परदेसी पुकारेगा या जब भी कोई दिल कहेगा कि प्यार किया तो डरना क्या, तब तब मुस्कुराती हुई लता दीदी हमारे साथ होंगी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के प्रोग्राम में जो सुरीले गीत हैं, कई सुरीले गीत होंगे और उनने सारे गीतों के नाम लिखे हैं जो कि शामिल भी हो रहे हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत पढ़कर लगा कि जैसे गीतों ने मिलकर एक खूबसूरत कहानी कह दी हो। एक आवाज से शुरू हुआ सफर तलाश में बदल गया और फिर वही तलाश दिल की मंजिल बन गई। सच है कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं आती, सीधे दिल में उतर जाती हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि स्वर की देवी और कोकिल कंठी लता मंगेशकर जी के गाने किसी भी भाषा में हम सुनते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसका अर्थ नहीं है कि स्वर किसी भाषा से बंधा नहीं है। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा कि विविध भारती से हमें लता मंगेशकर जी का कोई गीत सुनने ना मिला हो। और उन्होंने कहा आगे सत सत नमन। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि कभी कभी कोई आवाज सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, दिल में अपना घर बना लेती है। फिर वो इंसान उस आवाज के पीछे पीछे यादों, गीतों और एहसासों की गलियों में भटकता रहता है। आज की इबारत भी ऐसी एक तलाश की कहानी है जहां हर मोड़ पर एक गीत मिलता है, हर गीत में एक एहसास और हर एहसास में लता जी की मधुर आवाज की छाया। यही तो संगीत का जादू है कि बरसों बाद भी कोई धुन सुनते ही दिल उसी पुराने सफर पर निकल पड़ता है जहां प्यार भी है, इंतजार भी और यादों की हल्की सी कसक भी। तो भाई जब प्यार की बातें हो गई हैं तो हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि उनके बारे में क्या लिखना, अगर लिखें तो शब्द कम पड़ जाएंगे। बस इतना कि एक सूर्य, एक चांद, एक लता जी, भगवान ने उनको बनाकर वो सांचा ही तोड़ दिया होगा। ना कोई उनके जैसा हुआ है, ना कोई होगा। तो भाई ये सारी जो भावनाएं आपकी हम तक आ रही हैं तो इन भावनाओं पर शायद ये गीत सबसे अच्छा रहेगा। आप हमें बताइए संगीत किसका है।

मुगले आजम फिल्म का ये गीत आपने सुना, नौशाद का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, लता मंगेशकर की आवाज। हमारे बहुत से साथी कह रहे हैं कि भाई आज के इस मौके पर ये गीत सुनना चाहिए था या वो गीत सुनना चाहिए, तो इस तरह से गीतों की लिस्ट तो वो भेज रहे हैं। भाई कहा जाए तो हम तो इस मौके पर उनके सारे ही गीत सुनने चाहते हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी आवाज इतने सारे गीतों को दी है, अनगिनत गीतों को दी, तो उन गीतों को सभी को सुन पाना क्या संभव है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए अलग अलग कार्यक्रमों में आज के दिन क्या और लगातार 365 दिन उनकी आवाज में वो गीत हम सुनते रहते हैं और अपनी पसंद के गीतों को रोजाना हम सुन ही पाते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि विविध भारतीय लता जी का साथ तो ऐसा है जैसे सुर और संगीत का अटूट बंधन। बचपन की यादों से लेकर आज तक जब भी विविध भारती पर लता जी की आवाज गूंजती है तो दिल सुकून से भर जाता है। उनका हर गीत हमारे जीवन में किसी न किसी खूबसूरत याद से जुड़ा हुआ है। रेडियो के सबसे प्यारे मंच विविध भारती के माध्यम से लता दीदी के सदाबहार गीत हमारे दिलों में जिंदा रखने के लिए पूरी टीम को उन्होंने धन्यवाद दिया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं लता जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, मेरे पास उनके हर गाने का एक संग्रह है। पहले कैसेट में रहता था, आज फिलहाल पेन ड्राइव में है, क्योंकि जब भी कहीं सफर पे जाती हूँ तो अपनी ही पेन ड्राइव लगाती हूँ। मुझे अपने पसंदीदा गाना सुनना बहुत पसंद है, घर में भी वो लता जी को जब तक ना सुन लूँ मुझे चैन नहीं होता। और एक बात मुझे बहुत पसंद है लता जी की कि उनकी आवाज़ तो पसंद है, साथ ही साथ उनकी जो सिंप्लिसिटी थी वो हमेशा हमेशा एक सी रही। एक उनको बहुत ज़्यादा चमक धमक में मैंने नहीं देखा और मुझे ये बेहद पसंद आता है। हमारे एक और साथी ने कहा कि अगर मैं उनसे मिलती, ये आपने पूछा था अगर हम मिलते तो क्या कहते, तो मैं उनसे कहती कि आप जैसी आवाज मुझे भी मिल जाए, आप बहुत ही अच्छी लगती हैं, उनकी सादगी अच्छी लगती है, हमेशा सफेद साड़ी में उन्हें मैंने देखा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमें लता दीदी के बहुत से गीत बहुत पसंद है, पर कुछ गीत हमें बहुत ताकत देते हैं, जैसे जब दिल को सतावे गम तो छेड़ सकी सरगम, ऐ दिले नादान तू गम से ना घबराना, ऐसे गीत हमें बहुत पसंद है। तो कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं और बताइए किस फिल्म से लिया है।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और बात हो रही है स्वर कंठिल कोकिला लता मंगेशकर की। ससुराल फिल्म का गीत आपने सुना, शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन का संगीत और बिल्कुल सही जवाब भी आपने दिया। लता मंगेशकर से आप किस तरह से रखते हैं नाता ये आप हमसे बता रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनकी आवाज हमारे कानों को नहीं हमारे दिल को छू जाती है। वो आज भी हमारे साथ हैं उनकी आवाज के साथ, और उनकी बहुत से ऐसे गाने हैं जो सुनने का

अमन करता है, वैसे ही हमारे साथी ने बहुत से गाने हमारे साथी लिख लिख के भेज रहे हैं, लेकिन सारे गीत एक साथ एक घंटे में सुनाना, बल्कि हम कहते हैं एक दिन में सुनाना भी मुश्किल है, तो वो गीत सुन लेते हैं जिनकी बातें हमने इबारत में की है। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, बताइए कौन सी फिल्म का गीत है।

0: मुझसे न पूछो कि तुम
1: भाई, यही बात हम कह सकते हैं लता मंगेशकर की आवाज के लिए भी कि हमसे ना पूछिए कि आप हमारे कौन हैं। चोरी चोरी फिल्म का गीत आपने सुना, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत और लता मंगेशकर के साथ मन्ना डे की आवाज आपने सुनी। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं, तो आपकी ढेरों बातों के साथ हम भी इस बात से बिल्कुल कहते इत्तेफाक रखते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि एक ही घंटे में पूरा गीत सुनना, सभी पसंदीदा गीत सुनना तो मुश्किल है, लेकिन ये गीत शामिल ना हो तो बिल्कुल भी बात ना बने। तो हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है और आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

गाइड फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना, शैलेंद्र के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत, और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। लेकिन लता मंगेशकर की आवाज से सजा हुआ सजे हुए कई गीत आपको आज के बहुत से कार्यक्रमों में सुनने के लिए मिलते रहेंगे, तो बस दीजिए इजाजत आज के इस कार्यक्रम से।

दोस्तों, खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता खामोश रहकर अपनी महक लुटाता है। मील का पत्थर बेजुबान होकर भी पथिकों को राह दिखाता है। दिया खुद जलकर रोशनी लुटाता है। आंतरिक सौंदर्य की अपनी परिभाषा होती है, ऐसी भाषा जिसमें न शब्द होते हैं न आवाज, किंतु असर काफी गहरा।

रूपी संचित ऊर्जा का उपयोग हमारे ऋषि मुनियों ने भी खूब किया है। प्राचीन काल में लोग मौन का महत्व समझते थे। प्रकृति की आवाज को सुनने के लिए वे अपनी आवाज को कुछ समय के लिए विराम दे देते थे।

संसार में हर मनुष्य की पहचान उसकी बोली और व्यवहार से की जाती है। विचारों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है भाषा, लेकिन मौन की अपनी भाषा है। सांसारिक भाषाएं जहां सीमित शब्दों में बंधी है, वहीं मौन की भाषा में अनंत शब्द अंतर्निहित हैं। केवल चुप हो जाना मौन नहीं है, बल्कि अपने वजूद में खो जाना है मौन। चुप्पी बाहर होती है, लेकिन मौन भीतर घटता है। चुप्पी में हमारी वाणी पर नियंत्रण होता है, लेकिन मौन का अर्थ

थे स्वयं में उतरना और मन वचन कर्म से शांत रहना। जब हम मौन में प्रवेश करते हैं तो हमारा स्वयं से साक्षात्कार होता है। मौन हमें बाहरी छलावों से दूर ले जाकर सत्य का आईना दिखाता है और हम स्वयं की ओर उन्मुख होने लगते हैं। स्वयं का स्वयं से साक्षात्कार ही मौन का लक्ष्य है।

मौन का अर्थ है मन का नहीं होना। जहाँ मन है वहाँ असंतोष, शोक, जलन, प्रतिशोध, दुख और क्रोध जैसे कई भाव होते हैं। मौन में इनके अस्तित्व को मिटाना अनिवार्य है। मौन आत्मा की भाषा है जिसे सांसारिक कोलाहल के बीच सुनना संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्ति के अंतर्मन की यात्रा का नाम है मौन। भाषा और बोली के बंधनों को मिटाकर स्वयं से जोड़ता है हमें ये और जीवन में पूर्णता लाता है। मानसिक तनाव, व्याकुलता और अशांति के पलों में मौन शांति का प्रकाश पुंज है।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 299 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।

0: प्रतिशत उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुछ अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों ने 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली को लागू करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित कर दिया है।
1: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
0: श्री चौहान ने कहा कि शुरुआत में आशंका थी कि अल नीनो के प्रभाव से बुवाई का क्षेत्र कम हो सकता है और महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने देश भर में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: जो प्रयास किए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद की कोई कमी नहीं आई। खाद की व्यवस्था करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है, लेकिन हम ये जोर जरूर दे रहे हैं कि जितना जरूरी है उतने खाद का उपयोग, संतुलित उपयोग, उसके लिए खेत बचाओ अभियान हम फिर चलाएंगे ताकि सॉयल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश की है माटी में जो तत्व कम है उसके आधार पर कितना खाद चाहिए उतना खाद डाला जाए तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया है। मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि 3 तलाक कानून कैसे मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने में मदद कर रहा है।
4: तीन तलाक की प्रथा से प्रभावित मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया।

0: कानून के तहत तत्काल तीन तलाक को गैर कानूनी और दंडनीय बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये कानून संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब आम्बेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया।
0: मुस्लिम मामलों के विशेषज्ञ रजा रिजवी का कहना है कि तीन तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा।
0: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम ने उन महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा का प्रावधान किया है जो तीन तलाक की स्थिति में सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण अपनी बात सामने नहीं रख पाती थीं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ तेजी से बढ़ते आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान की सराहना की। आइए सुनते हैं इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के आंवले से बने उत्पाद आज ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है।
5: आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है।
4: सावित्री फूले सेल्फ हेल्प ग्रुप की कमलेश कुमारी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा,
6: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, सावित्री फूले स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, आंवला का लड्डू मुरब्बा जूस बर्फी भी यही हमारा प्रोडक्ट बनता है।
4: प्रतापगढ़ जनपद में 196 से अधिक आंवले के उत्पाद की इकाइयां हैं और यहां बने उत्पाद देश के अलग अलग हिस्सों के साथ कई देशों में भेजे जा रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। वे आज नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक संबंध और श्रम तथा पुरस्कार संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
7: हम 25 करोड़ लोगों को SIC की हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई न कोई 2000, 1500, 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता, और कैलकुलेशन चालू करा तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
3: संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगार के माध्यम से वैश्विक समृद्धि को गति देने में युवा आबादी की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी कि AI का बढ़ता उपयोग रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि AI मानव सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है, लेकिन उन्होंने इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप AI मॉडल विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हैं। इस बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
8: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने साल 1929 में केंद्र विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिससे किसी की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। शहीद भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में गुस्से और प्रेरणा की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी जिसने उनके बलिदान को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। उनके अदम्य साहस ने देश के युवाओं में जोश भर दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और गति दी जिससे गुलामी की जंजीरों को तोड़ने को देशवासियों का संकल्प और अधिक मजबूत हो गया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के सत्र में 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 956 अंक गिरकर 72,939 पर और निफ्टी 306 अंक लुढ़क कर 22,835 पर पहुंच गया। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
9: जापान एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियोंग सियोन को हरा कर पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ईशा सिंह के शानदार प्रदर्शन में उनके कौशल, सटीकता और निरंतरता की झलक दिखाई देती है। मौसम विभाग ने कल तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार कल तक केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। वहीं अगले दो दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 306 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: उजाला फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी की बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर की आवाज में जंगली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। आइए सुनते हैं चित्रलेखा फिल्म में लता मंगेशकर को। साहिल ध्यानवी के बोल है, रोशन का संगीत।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में अनाड़ी फिल्म का गीत आपने सुना, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: एहसान तेरा हो

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और इससे ठीक पहले आपने सुना गाइड फिल्म से लता

मंगेशकर की आवाज में गीत, शैलेंद्र के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत और कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में बाप बेटे फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, मदन मोहन का संगीत। ये सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति।

तो खो ही गए, जाने जादू ये कैसा किया। दिल उनको उठा के दे दिया।

0: की सहेली
1: सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और श्रोताओं को दीपा माहेश्वरी और
2: नेहा शर्मा का
1: नमस्कार और साथ में हेल्दी नमस्कार भी।
2: हेल्दी नमस्कार
1: बिल्कुल हेल्दी नमस्कार यूं होता है कि भाई जब लगता है ना कि किसी ने कहा हेल्दी नमस्कार तो हाँ हमें हमारी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और अपने बारे में थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए।
2: हाँ, जब हेल्थ की बात आ जाती है तो फिर हम कहीं ना कहीं सचेत हो जाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो इसलिए हमें ये सोचना पड़ता है कि हमें क्या मतलब कितना ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल, और देखो ना आज जो है विशेष दिन तो हमारा चल ही रहा है, बहुत सारे दिवस हैं, मैं नेहा और हमारे श्रोताओं आज हम कथा सुधा में कहानी भी सुनेंगे और बातें होंगी अधिकार और कर्तव्य इसके संतुलन की। साथ में हम चलेंगे कश्मीर, उसके प्रादेशिक व्यंजन के बारे में हम जानेंगे कि आज कौन कौन से हम व्यंजन करने वाले हैं। आज हम राजमा गोगची और मोदुर पुलाव इसके बारे में बात करेंगे और श्रोताओं के आए भी हैं संदेश, तो और कुछ विशेष दिन भी हैं तो उनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए पहले सुन लेते हैं एक गीत।
2: जी बिल्कुल।

0: नेहा, हमारी सारी सखियां और हमारे श्रोता भाई समझ गए होंगे कि ये गीत क्यों बजाया आज, है ना?
1: बिल्कुल, क्योंकि आज शहीद आजम भगत सिंह की जन्म जयंती है। 28 सितंबर का दिन हमें उस महान क्रांतिकारी की याद दिलाता है जिसने बहुत कम उम्र में देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। शहीद भगत सिंह, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा में हुआ था।
0: बचपन से ही नेहा उनके मन में देश के प्रति प्रेम और अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह की भावना रही। वे केवल साहसी क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक गंभीर चिंतक और प्रखर लेखक भी थे। उन्होंने युवाओं में देशभक्ति और जागरूकता की नई चेतना उस वक्त जगाई थी और अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी।
1: और केवल 23 वर्ष की उसकी उम्र थी उनकी जब उन्होंने हंसते हंसते फांसी का सामना किया। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि देश और समाज के लिए समर्पण उम्र का मोहताज नहीं होता। आज भी जब उनका नाम हम सुनते हैं तो हमारे मन में साहस, त्याग और देश प्रेम की जो भावना जागती है वो वाकई काबिले तारीफ है, हम कह सकते हैं, क्योंकि भगत सिंह सचमुच भारत की युवा चेतना के अमर प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं।
0: बिल्कुल, और देखो ना, आज बहुत सारे विशेष दिन है, हम उसके बारे में भी आगे बात करते चलेंगे, बताते जाएंगे अपने साथियों को, और सब इंतजार कर रहे हैं, पता है किसका?
1: किसका?
0: कहानी यानी कथा सुधा, जिसमें हम सुनने वाले हैं अमावस की रात, इस कहानी का पहला भाग।
1: तो चलिए सुनते हैं।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी अमावस की रात। सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।
4: दीपावली की संध्या थी, श्रीनगर के घूरों और खंडहरों के भी भाग्य चमक उठे थे। कस्बे के लड़के और लड़कियां श्वेत थालियों में दीपक लिए मंदिर की ओर जा रही थीं। दीपों से उनके मुखारविंद प्रकाशमान थे, प्रत्येक घर रोशनी से जगमगा रहा था। केवल पंडित देवदत्त का सतधारा भवन काली घटा के अंधकार में गंभीर और भयंकर रूप में खड़ा था। गंभीर इसलिए कि उसे अपनी उन्नति के दिन भूले न थे, भयंकर इसलिए कि ये जगमगाहट मानो उसे चिढ़ा रही थी। एक समय था जबकि ईर्ष्या भी उसे देख देख कर हाथ मलती थी, और एक समय ये है जबकि घृणा भी उस पर कटाक्ष करती है। द्वार पर द्वारपाल की जगह अब मदार और एरंड के वृक्ष खड़े थे। दीवान खाने में एक मतंग साण अकड़ता था। ऊपर के घरों में जहां सुंदर रमणियां मनोहर संगीत गाती थीं, वहां आज जंगली कबूतरों के स्वर सुनाई देते थे। पर समय को हम कुछ नहीं कह सकते, समय की निंदा व्यर्थ और भूल है। अमावस्या की रात्रि थी, प्रकाश से पराजित होकर मानो अंधकार ने उसी विशाल भवन में शरण ली थी। पंडित देवदत्त अपने अर्ध अंधकार वाले कमरे में मौन परंतु चिंता में निमग्न थे। आज एक महीने से उनकी पत्नी गिरजा की जिंदगी को निर्दय काल ने खिलवाड़ बना लिया है। पंडित जी दरिद्रता और दुख को भुगतने के लिए तैयार थे। भाग्य का भरोसा उन्हें धैर्य बंधाता था, किंतु ये नई विपत्ति सहन शक्ति से बाहर थी। बेचारे दिन के दिन गिरजा के सिरहाने बैठे हुए उसके मुरझाए हुए मुख को देखकर कुढ़ते और रोते थे। गिरजा जब अपने जीवन से निराश होकर रोती तो वो उसे समझाते।
5: गिरिजा, गिरिजा, रो मत, शीघ्र ही अच्छी हो जाओगी।
4: पंडित देवदत्त के पूर्वजों का कारोबार बहुत विस्तृत था। वे लेन देन किया करते थे। अधिकतर उनके व्यवहार बड़े बड़े चकलेदारों और रजवाड़ों के साथ थे। उस समय ईमान इतना सस्ता नहीं बिकता था। सादे

0: पत्रों पर लाखों की बातें हो जाती थीं, मगर सन 57 ईस्वी के बलवे ने कितनी ही रियासतों और राज्यों को मिटा दिया और उनके साथ तिवारियों का ये अन्न धन पूर्ण परिवार भी मिट्टी में मिल गया। खजाना लुट गया, बही खाते पंसारियों के काम आए। जब कुछ शांति हुई, रियासतें फिर संभली, तो समय पलट चुका था। वचन लेख के अधीन हो रहा था और लेख में भी सादे और रंगीन का भेद होने लगा था। जब देवदत्त ने होश संभाला, तब उनके पास इस खंडहर के अतिरिक्त और कोई संपत्ति न थी। अब निर्वाह के लिए कोई उपाय न था। कृषि में परिश्रम और कष्ट था, वाणिज्य के लिए धन और बुद्धि की आवश्यकता थी। विद्या भी ऐसी नहीं थी कि कहीं नौकरी करते। परिवार की प्रतिष्ठा दान लेने में बाधक थी। अस्तु, साल में 2-3 बार अपने पुराने व्यवहारियों के घर बिना बुलाए पाहुनों की भांति जाते और कुछ विदाई तथा मार्ग व्यय पाते उसी पर गुजारा करते। पैतृक प्रतिष्ठा का चिन्ह यदि कुछ शेष था तो वो पुरानी चिट्ठी पत्रियों का ढेर तथा हुंडियों का पुलिंदा, जिनकी स्याही भी उनके मंद भाग्य की भांति फीकी पड़ गई थी। पंडित देवदत्त उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते। द्वितीया के दिन जब घर घर लक्ष्मी की पूजा होती है, पंडित जी ठाट बाट से इन पुलिंदों की पूजा करते। लक्ष्मी न सही, लक्ष्मी का स्मारक चिन्ह ही सही। दूज का दिन पंडित जी के प्रतिष्ठा के श्रद्धा का दिन था। इसे चाहे विडंबना कहो चाहे मूर्खता, परंतु श्रीमान पंडित महाशय को उन पत्रों पर बड़ा अभिमान था। जब गांव में कोई विवाद छिड़ जाता तो ये सड़े गले कागजों की सेना बहुत काम कर जाती और प्रतिवादी शत्रु को हार माननी पड़ती। यदि 70 पीढ़ियों से शस्त्र की सूरत न देखने पर भी लोग क्षत्रिय होने का अभिमान करते हैं, तो पंडित देवदत्त का उन लेखों पर अभिमान करना अनुचित नहीं कहा जा सकता जिसमें 70 लाख रुपयों की रकम छुपी हुई थी। वही अमावस्या की रात्रि थी, किंतु दीप मालिका अपने अल्प जीवन समाप्त कर चुकी थी। चारों ओर जुआरियों के लिए शकुन की रात्रि थी, क्योंकि आज की हार साल भर की हार होती है। लक्ष्मी के आगमन की धूम थी, कौड़ियों पर अशर्फियां लुट रही थीं, भट्टियों में शराब के बदले पानी बिक रहा था। पंडित देवदत्त के अतिरिक्त कस्बे में कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जो कि दूसरों की कमाई समेटने की धुन में न हो। आज भोर से ही गिरिजा की अवस्था शोचनीय थी। विषम ज्वर उसे एक एक क्षण में मूर्छित कर रहा था। एकाएक उसने चौंक कर आंखें खोली और अत्यंत क्षीण स्वर में कहा,
1: आज तो दिवाली है।
0: देवदत्त ऐसा निराश हो रहा था कि गिरिजा को चैतन्य देख कर भी उसे आनंद नहीं हुआ।
2: हाँ, आज दिवाली है।
0: गिरिजा ने आंसू भरी दृष्टि से इधर उधर देखकर कहा,
1: आज तो दिवाली है, हमारे घर में क्या दीपक न जलेंगे।

0: देखो आज बरस भर के दिन भी घर अंधेरा रह गया। मुझे उठा दो, मैं भी अपने घर दिए जलाऊंगी।
1: ये बातें देवदत्त के हृदय में चुभी जाती थीं। मनुष्य की अंतिम घड़ी लालसाओं और भावनाओं में व्यतीत होती है।

0: इस नगर में लाला शंकर दास अच्छे प्रसिद्ध वैद्य थे। अपने प्राण संजीवन औषधालय में दवाओं के स्थान पर छापने का प्रेस रखे हुए थे। दवाइयां कम बनती थीं, इश्तहार अधिक प्रकाशित होते थे। वे कहा करते थे,
1: बीमारी केवल रईसों का ढकोसला है और पॉलिटिकल इकोनॉमी के यानी राजनीतिक अर्थशास्त्र के अनुसार इस विलास पदार्थ से जितना अधिक संभव हो टैक्स लेना चाहिए। यदि कोई निर्धन है तो हो, यदि कोई मरता है तो मरे, उसे क्या अधिकार है कि बीमार पड़े और मुफ्त में दवा कराए। हाँ,
0: देवदत्त महीने भर नित्य उनके निकट दवा लेने आता था, परंतु वैद्य जी

0: और वैद्य जी के मकान की ओर चले। वे जानते थे कि लाला जी बिना फीस लिए कदापि नहीं आएंगे, किंतु हताश होने पर भी आशा पीछा नहीं छोड़ती। देवदत्त कदम आगे बढ़ाते चले जाते थे। हकीम जी उस समय अपने रामबाण बिंदु का विज्ञापन लिखने में व्यस्त थे। उस विज्ञापन की भावप्रद भाषा तथा आकर्षण शक्ति देखकर कह नहीं सकते कि वैद्य शिरोमणि थे या सुलेखक विद्यावारिधि। आप उनके उर्दू विज्ञापन का साक्षात दर्शन कर लें।
1: नाजरीन, आप जानते हैं कि मैं कौन हूं। आपका जर्द चेहरा, आपका तनिलागीर, आपका जरासी मेहनत में बेदम हो जाना, आपका लज्जात दुनिया में महरूम रहना, आपका खाना तरीकी, ये सब इस सवाल का नफी में जवाब देते हैं। सुनिए, मैं कौन हूं। मैं वो शख्स हूं जिसने इमराज इंसानी को पर्दे दुनिया से गायब कर देने का बीड़ा उठाया है, जिसने इश्तिहारबाज जांफरोश गंदुम नुमा बने हुए हकीमों को बेखबर और बुन से खोद कर दुनिया को पाक कर देने का अज्म विल जज्म कर लिया है। मैं वो हैरत अंगेज इंसान ज़ईफ़ुल बयां हूं जो नाशाद को दिलशाद, नामुराद को बामुराद, भगोड़े को दिलेर, गीदड़ को शेर बनाता है। और ये किसी जादू से नहीं, मंत्र से नहीं, वो मेरी ईजाद करदा अमृत बिंदु के अदना करिश्मे हैं। अमृत बिंदु क्या है, इसे कुछ मैं ही जानता हूं। महर्षि अगस्त्य ने धन्वंतरी के कानों में इसका नुस्खा बतलाया था। जिस वक्त आप वीपी पार्सल खोलेंगे, आप पर उसकी हकीकत रोशन हो जाएगी। ये आबे हयात है, ये मर्दानगी का जौहर, फरजानगी का अक्सीर, अक्ल का मुरब्बा और जहन का सकील है। अगर वर्षों की मुशायरा बाजी ने भी आपको शायर नहीं बनाया, अगर शबी रोज के रटंत पर भी आप इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सके, अगर दलालों की खुशामद और मुवक्किलों की नाज बरदारी के बावजूद भी आप अहाते अदालत में भूखे कुत्ते की तरह चक्कर लगाते फिरते हैं, अगर आप गला फाड़ फाड़ चीखने, मेज पर हाथ पैर लटकने पर भी अपनी तकरीर से कोई असर पैदा नहीं कर सकते, तो आप अमृत बिंदु का इस्तेमाल कीजिए। इसका सबसे बड़ा फायदा जो पहले ही दिन मालूम हो जाएगा, यह है कि आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप फिर कभी इश्तिहारबाज हकीमों के दाम फरेब में न फंसेंगे।
0: वैद्य जी इस विज्ञापन को समाप्त कर उच्च स्वर से पढ़ रहे थे। उनके नेत्रों में उचित अभिमान और आशा झलक रही थी कि इतने में देवदत्त ने बाहर से आवाज दी। वैद्य जी बहुत खुश हुए। रात के समय उनकी फीस दुगनी थी। लालटेन लिए बाहर निकले तो देवदत्त रोता हुआ उनके पैरों से लिपट गया और बोला,
2: वैद्य जी, इस समय मुझ पर दया कीजिए। गिरिजा अब कोई सायद की पावने, अब उसे आप ही बचा सकते हैं। यूं तो मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा, किंतु इस समय तनिक चलकर आप देख लें तो मेरे दिल का दाह मिट जाएगा। मुझे धैर्य हो जाएगा कि उसके लिए मुझसे जो कुछ हो सकता था मैंने किया। परमात्मा जानता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपकी कुछ सेवा कर सकूं, किंतु जब तक जीऊंगा आपका यश गाऊंगा और आपके इशारों का गुलाम बना रहूंगा।
0: हकीम जी को पहले कुछ तरस आया, किंतु वो जुगनू की चमक थी जो शीघ्र स्वार्थ के विशाल अंधकार में विलीन हो गई।
3: अमावस की रात मुंशी प्रेमचंद की कहानी का पहला भाग आपने सुना। पात्र परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, गिरिजा राजुल अशोक, पंडित देवदत्त जी श्याम, वैद्य लाला शंकर दास जयंत पात्रिकर। प्रस्तुति अनुषी पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: अभी
1: अभी कहानियां सुनते सुनते ऐसा लगता है ना कि पूरी ही हो जाएगी बात।
0: बिल्कुल ऐसा मन तो यही करता है
1: जी।
0: लेकिन अगले सोमवार हम इसका अगला भाग सुनेंगे।
1: और अभी क्या सुनेंगे?
0: एक गीत सुनेंगे
1: जी।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: तो दीपा जी, जश्न का माहौल तो आ ही रहा है, निकट आ रहा है, क्योंकि विविध भारती में जश्न का माहौल होने वाला है 3 अक्टूबर को। और एक आवाज का जश्न भी आज हम मना रहे हैं।
4: बिल्कुल,
3: क्योंकि आज क्या है,
4: आज देखिए लता मंगेशकर की जन्म जयंती है। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा नेहा जिन्होंने कभी जिनके जीवन में कोई तो पल, कोई ऐसा वक्त आया होगा जहां पे उनके गीत ने उनको छेड़ा नहीं होगा या उसका बहुत गहरा असर नहीं हुआ होगा, है ना?
3: बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे गीत हैं, इतने सारे भाव हैं उसके अंदर कि ऐसा लगता ही नहीं कि, मतलब ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसने, कोई भी दिन ऐसा नहीं जा सकता जब हम लता मंगेशकर की आवाज नहीं

0: सुन पाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। और खास तौर से अगर हम विविध भारती सुनते हैं तो एक गाना नहीं, कई गाने हम सुनते हैं रोजाना,
1: रोजाना
0: उनकी आवाज
1: बिल्कुल,
0: में
1: बिल्कुल। और हिंदी संगीत और हिंदी सिनेमा से प्यार करने वाला शायद ही ऐसा कोई दिल भी होगा ना, जिन्होंने उनकी आवाज, उनकी आवाज ने कभी छुआ ना हो उन किसी एक व्यक्ति के दिल को। और उनकी आवाज में प्रेम की कोमलता भी थी, विरह की कसक भी थी, भक्ति की मिठास और देशभक्ति का जोश भी रहा।
0: हाँ, और कई बार वो बच्चों की लोरियों से शुरुआत होती, कहते हैं कि बचपन से शुरुआत हो गई उनकी आवाज के साथ और अंत तक हम उनकी आवाज के साथ जुड़ सकते हैं, मतलब उम्र के हर पड़ाव में। और उनके गीतों में रिश्तों की उलझन भी हमें सुनाई देती है, तो कभी प्यार की गहराई महसूस होती है, कभी पूरे देश की आंखें उन्होंने नम की, तो कभी मन में भक्ति और शांति का भाव भी लता जी की आवाज ने जगाया है।
1: बिल्कुल। और लता जी ने सिर्फ गीत नहीं गाए, उन्होंने भावनाओं को आवाज दी नेहा। उनकी आवाज कई पीढ़ियों की यादों में, प्रेम में, और हमारे जो पसंदीदा गानों की जो प्लेलिस्ट होती है ना, उसमें एक गाना तो जरूर लता जी का रहता होगा। आप भी श्रोताओं जरूर बताइएगा, क्या आपके प्लेलिस्ट में उनका गाना नहीं रहता?
0: अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पूछने की बात नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि हमारे भी जैसे इससे ठीक पहले जब हम एक कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें भी जब बातें आ रही थी तो ये हो रहा था कि ये गीत तो रह गया। तो फिर हमारी श्रोताओं ने भी एक कहा और हमने भी यही कहा कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक घंटे में पूरा करना तो वैसे ही मुश्किल है, एक दिन में पूरा करना भी मुश्किल है, क्योंकि हो ही नहीं सकता है।
1: बिल्कुल। और जब अपने ये कार्यक्रम सखी सहेली के लिए जब गानों के चुनाव हम लोग कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था इस गाने को ले या इस गाने को ले, क्योंकि इतनी लंबी जो फहरिस्त है उनके गानों की, तो बस कुछ ही गाने हम तो यहाँ ले पाए। लेकिन आज आप दिन भर उनके गानों का आनंद लेते रहिए।
0: हाँ, विविध भारती के अलग अलग कार्यक्रमों में आनंद आज तो लेंगे ही और बाकी दिनों भी लेते हैं। जैसे कि हमने कहा 365 दिन उनके गीतों का हम आनंद लेते हैं, इससे तो कोई अंतराल हमें मिलता नहीं, लेकिन कार्यक्रम में अंतराल का वक्त है।
1: बिल्कुल।

0: अंतराल के बाद हम आ चुके और कार्यक्रम चल रहा है
1: सखी सहेली।
0: और इतनी सारी बातें हो गई लता जी की और गीत नहीं सुना उनका,
1: तो सुनेंगे अभी,
0: चलो सुनते हैं।
1: हाँ।

0: दीपा जी, गाना तो अच्छा था लेकिन आपने मेरी पसंद का गाना क्यों नहीं बजाया?
1: अरे भाई देखो, इस गाने में तुम्हारा नाम था। हा? नहीं, वो वाला लाइन तुमने सुनी, इस गाने की पंक्ति, जब से सैया तो उसे नेहा लागे, पीछे पीछे मैं तू आगे आगे, तुम्हें ही तो आगे रखा है।
0: हाँ, इसी वजह से मैंने आगे आगे गाना सुन लिया वो पूरा, लेकिन और भी एक अच्छे अच्छे गाने हैं मेरी पसंद के।
1: भाई नेहा, तुम्हारे पसंद का गाना इस प्लेलिस्ट में है, कैसे भूल सकती हूँ?
0: भूल तो नहीं सकते हैं, लेकिन भूल ये भी नहीं सकते हैं कि आज बहुत सारे दिवस भी हैं और एक बहुत ही खास दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक सूचना पहुंच दिवस, जो 28 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है?
1: इस दिन को, इसका उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति को, मतलब सभी को, आवश्यक और विश्वसनीय जानकारी आसानी से उन तक पहुंच सके।
0: और इसकी शुरुआत हुई थी साल 2015 में, यूनेस्को द्वारा इसकी शुरुआत हुई 2019 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मान्यता दी। और अब जब हम डिजिटल युग में है और सूचना फटाफट हम तक पहुंचती है, पहले से आसानी से सूचनाएं हम तक पहुंचती है, लेकिन गलत सूचनाएं भी उतनी ही जल्दी हम तक पहुंच जाती है। तो ये बात बहुत बड़ी चुनौती है।
1: इसलिए ये दिवस हमें समझाता है कि सही सूचना व्यक्ति को जागरूक बनाती है और जागरूक नागरिक ही सशक्त समाज का निर्माण करते हैं। तो भाई, जब बात इतनी सूचनाओं की हो रही है, तो चलिए एक सूचना ये भी दे देते हैं अपने सभी श्रोताओं को।
2: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
3: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
2: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
2: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
1: नेहा, बात जब संदेशों की हो रही है और जानकारियों की हो रही है, तो हमें अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज विश्व रेबीज दिवस भी है।
0: बिल्कुल, और ये हर साल जैसे कि कह सकते हैं आज के दिन यानी 28 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि उद्देश्य ये है कि रेबीज जो है बीमारी, वो उसके प्रति जागरूकता फैले, इस जानलेवा बीमारी के बचाव के उपायों की जानकारी का भी प्रचार प्रसार होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: बहुत जरूरी है ये।
1: और महत्व ये है इस दिवस का कि सही समय पर उपचार और टीकाकरण से रेबीज से होने वाली मृत्यु को रोका जा सकता है, इसलिए सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, विश्व रेबीज दिवस की शुरुआत तो साल 2007 में हुई थी और ये दिन प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर की

0: पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, जिन्होंने रेबीज को रोकने के लिए पहला सफल टीका विकसित किया था।
1: और रेबीज जो खास तौर पर संक्रमित जानवरों के काटने से या उनकी लार के संपर्क से फैलता है और श्वान इसके संक्रमण का मुख्य स्रोत है।
0: तो यदि कोई जानवर अगर आपको काट देता है, आमतौर पर जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो तो घाव को तुरंत आप साबुन और बहते पानी से अच्छी तरह से धोइए और बिना देर किए डॉक्टरी सलाह लेना बहुत जरूरी है आपका।
1: बिल्कुल।
0: और इस दिन का संदेश है जागरूकता, समय पर उपचार और पशुओं का टीकाकरण ही रेबीज से बचाव की कुंजी है। तो अगर आप पालतू जानवर रखते हैं अपने आसपास तो ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनका भी समय समय पर टीकाकरण कराएं। उनका भी टीकाकरण होता है, उनकी भी देखभाल आपको उसी तरह से रखनी जरूरी है।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और भाई ये भी जरूरी है कि एक और गीत जो कि नेहा की प्लेलिस्ट में है और हमने वहां से चुरा कर यहाँ पे अपने श्रोताओं के लिए चुन लिया है।

0: दीपा जी देखिए, मेरी पसंद का गाना सुनना मेरा अधिकार होता है।
1: भाई नेहा छोटी है, हम बड़े हैं, तो हमारा भी तो ये कर्तव्य है कि जो नेहा की चाह हो और अगर हम उसे पूरा कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए, है ना सखी।
0: लेकिन अधिकार और कर्तव्य का संतुलन भी तो होना चाहिए ना दीपा जी।
1: ये बात तो सही है। अब अगली बार अगर मैंने कुछ मांगा तो दोगी?
0: हाँ, फिर सोचना पड़ेगा कि हमारा कर्तव्य बन रहा है या नहीं।
1: जी। लेकिन हाँ, हमेशा हम इस तरह से नहीं चल सकते कि अच्छा ये अधिकार है या कर्तव्य है, तो वो इक्वेशन हमेशा दिमाग में नहीं बना सकते, है ना।
0: हाँ, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अधिकार और कर्तव्य, और हमें अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, पर यह भी समझना चाहिए कि हर अधिकार के साथ कोई ना कोई जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है।
1: बिल्कुल। और अपने अधिकारों के लिए हम जितना जागरूक रहते हैं ना नेहा, दूसरों के अधिकारों का भी हमें सम्मान उतना करना चाहिए। हमें अपने बारे में तो बहुत ख्याल रहता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है। और जिस तरह हमें अपने सम्मान या स्वतंत्रता या समानता हमें चाहिए, उसी तरह से ये अधिकार दूसरों को भी मिलना चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और देखो हमने ध्यान रखा ना, तुम्हारी पसंद का गाना बजा दिया।
0: बिल्कुल। और असली शुरुआत तो परिवार से ही होती है ना, क्योंकि घर में हम अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन परिवार के दूसरे सदस्यों की भावनाओं और विचारों को सुनना भी तो हमारा कर्तव्य है। तो स्वतंत्रता अगर हमें मिली तो उसका अर्थ ये नहीं कि मनमानी हम करें। हमें अपनी पसंद से अपना निर्णय लेने की आजादी तो मिलती है, लेकिन इससे किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी या नुकसान नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
1: बिल्कुल। और सिर्फ परिवार में ही नहीं नेहा, ये हमारे आसपास हो या समाज हो या बड़े तौर पे बात करें तो देश, सब जगह ये बात लागू होती है, जिसे हर जगह हर स्थिति में हम इसे देख सकते हैं।
0: जैसे कि सड़क पर यातायात के नियमों का पालन करना, ये हमारा कर्तव्य है हर नागरिक का। हमें सुरक्षित चलने का अधिकार है, लेकिन दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। यानी हमने अगर मोटरसाइकिल पर चढ़ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फास्ट चलाएंगे, या हम पैदल चल रहे तो मतलब ये नहीं है कि किसी भी दिशा में कभी भी कहीं से भी चलने लगेंगे।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नियमों का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है।
1: और इसी तरह से बात आती है अगर वातावरण की, तो स्वच्छ वातावरण अगर हम चाहते हैं, हमारा अधिकार है, और हम इस बात के लिए कई बार ये बात उठाते भी हैं, तो स्वच्छता बनाए रखना हमारा कर्तव्य भी है। हम साफ सुथरी सड़कें रखें, जो पब्लिक प्लेसेस होती है वो चाहते हैं कि बिल्कुल साफ सुथरी हो, तो हमें ही ध्यान रखना होगा कि हम कूड़ा इधर उधर कहीं ना फेंकें, कचरा यहां वहां ना डालने, न तो खुद डालें न दूसरों को डालने दें। बिल्कुल।
0: और प्रकृति से जो संसाधन हमें मिलते हैं उस पर भी हमारा अधिकार है, लेकिन उनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि पानी, बिजली और पेड़ों का सोच समझ कर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए भी कुछ बचा कर रखें। ये तो खत्म होने वाले संसाधन है।
1: और जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है सोशल मीडिया, तो उस पर भी हम अधिकार और कर्तव्य का संतुलन हम रख सकते हैं। कैसे? कि अपनी बात कहने की स्वतंत्रता के साथ ये जिम्मेदारी भी हमारी होती है कि कोई झूठी बात है या कोई ऐसी किसी का अपमान ना हो जाए, या कोई ऐसे बोल ना हो, कड़े बोल इस तरह के ना हो कि किसी की प्राइवेसी या किसी की निजता पे नुकसान ना पहुंचे, ठेस ना पहुंचे, इसका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए।
0: भले ही वो आपकी अपनी वॉल है, आप कह सकते हैं हम तो कुछ भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना आपका कर्तव्य है
1: जी।
0: अब आप उसे पालन करें ना करें वो आपकी समझ पर निर्भर करता है। वैसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, तो पढ़ाई के प्रति ईमानदार होना उनका कर्तव्य है। माता पिता का भी कर्तव्य है कि बच्चों के अधिकारों के साथ साथ उनको जिम्मेदारियों का महत्व भी वो समझाते जाएं।
1: बिल्कुल। और अधिकार मांगते समय दूसरों की जो सीमाएं हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई हर जगह हमने उठा के कह दिया ये तो मेरा फर्ज है, अधिकार है, ये तो हमें मिलना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। परिवार हो या कोई कार्यस्थल हो या समाज हो, आपसी समझ और संवाद से ही संतुलन हम कायम रख सकते हैं, है ना।
0: हाँ, छोटी छोटी जिम्मेदारियां जब मिलती हैं तो बड़े बड़े बदलाव भी आते हैं। और हम अपनी, जैसे कि हम एक लाइन में खड़े होकर, कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करें, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, कोई जरूरतमंद दिखे तो उसकी मदद करें, छोटे छोटे काम जो है समाज में अनुशासन तो बढ़ाते हैं और साथ में हमारे अंदर संवेदनशीलता भी बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और अधिकार देखो हमें सशक्त तो बनाते ही हैं और कर्तव्य हमें जिम्मेदार बनाते हैं। और जब हम अपने अधिकारों के साथ अपने जो कर्तव्य हैं उनको समझते हैं, तभी परिवार हो या समाज हो, देश हो, तो हम सच्चा संतुलन और अपने लिए एक बेहतर जीवन तभी संभव कर सकते हैं।
0: और सच्चा संतुलन तो यही है कि जब हम बातें करते रहते हैं तो बीच बीच में गीत भी चलाते रहते हैं, है ना।
1: तुम्हारी

0: वही लिखा तो हमारे श्रोताओं ने भी बहुत से संदेश है। हमारे साथियों ने लिखा है कि अधिकार के लिए तो कुछ ज्यादा ही जागरूक हो गए हैं, लेकिन जहां कर्तव्य निभाने की बात आती है अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने लगते हैं।
1: और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये दोनों जो रूप है वो अविभाज्य है। अधिकारों के बिना कर्तव्य निरर्थक हो जाते हैं और कर्तव्यों के बिना अधिकार अराजकता को जन्म दे सकते हैं। इसलिए अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए नागरिकों को अपने कर्तव्यों का पालन करना बहुत जरूरी है।
0: और हमारे एक साथी ने अपने अधिकारों का किस तरह से पालन किया है बता रहे हैं कि राजमा चावल मुझे बहुत पसंद है, अपना घर तो अपना घर, पड़ोसियों के यहाँ भी बने तो मैं बिल्कुल मिस नहीं करता। हमारे पड़ोसी भी इतने अच्छे हैं कि पहले मुझे खिलाते हैं और बाद में वो सभी खाते हैं और मैं भी उनके बनाए राजमा चावल की तारीफ करने से नहीं थकता। वैसे पंजाबी परिवारों का व्यंजन माना जाता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, हम बड़े चाव से खाते हैं। वही एक साथी है वो कह रहे हैं कि कश्मीर के व्यंजन झारखंड में ना के बराबर बनते हैं। तो सखी सैली में व्यंजनों को सुन रही हूँ तो कश्मीर के व्यंजनों में रुचि पैदा हो गई है। खासकर पिछली बार पनीर की सब्जी सुनी थी बिना प्याज लहसुन और टमाटर वाली, उसके बाद से कश्मीरी व्यंजनों में बहुत रुचि पैदा हो रही है, तो इसका इंतजार रहेगा। तो उनका इंतजार खत्म करें।
1: चलिए तो पहले कौन से वाली रेसिपी बताएं, राजमा गोगची या
0: राजमा में तो टाइम लगता है बनने में, पुलाव बना लेते हैं पहले।
1: चलो तो ठीक है, पहले पुलाव बनाते हैं। इसके लिए हमें क्या लेना है, बासमती लेना है 1 कप, जो कि तिकल लगभग 30 मिनट पानी में भिगोया हुआ हो। देसी घी लेना है 2 बड़े चम्मच, चीनी या मिश्री 1/2 से 1 कप, जैसे आपके घर में मिठास पसंद हो वैसे, और केसर के कुछ आपको धागे लेने हैं 1 छोटा चम्मच के करीब, और बल्कि उससे थोड़ा कम ही लग जाएगा। और खड़े मसाले यानी कि 4 हरी खड़ी बड़ी वाली हरी इलायची लेनी है, बड़ी वाली भी लेनी है, 3-4 लौंग, 1-2 दालचीनी के टुकड़े और 1 तेज पत्ता, सूखे मेवे जो आपके घर में और जो आपके वहाँ पसंद हो वो ले लीजिए। अब बनाना कैसे है इसको, कि बासमती चावल को अच्छी तरह से आपने धो लिया, 30 से 45 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया, फिर इसको छान लीजिए बहुत अच्छे से। अब एक कढ़ाई या पैन में 1 बड़ा चम्मच घी गर्म करें, उसमें कटे हुए जो काट लीजिएगा सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसे काट लीजिएगा, उन सबको आप हल्के से सुनहरे होने तक भून लीजिए। हाँ, इन सब ड्राई फ्रूट्स में किशमिश को आप अलग रख दीजिएगा।
0: हाँ।
1: और बचे हुए घी में अब हरी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता डालें, इसके बाद 2 कप पानी डालें और वो जो केसर वाला जो आपने भिगा के रखे थे केसर के धागे दूध में वो भी डालना है। अब पानी में उबाल आने के बाद फिर धीमी आंच करके इसमें चीनी मिला लिए और घुलने दीजिए। इसके बाद भीगे हुए चावल और भुने हुए सूखे मेवे जो आपने लिए थे वो डालना है। पैन को ढक कर धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक चावल सारा पानी सोख न ले और अच्छी तरह इसको आपको पका लेना है। और फिर बाद में आप देखिए इसके ऊपर आप चाहें तो सजाना है तो केसर के पत्तियों के साथ और सूखे मेवे के साथ कर सकते हैं। ये जो केसर या भात जो कहते हैं घरों में बनता है ये उसी तरीके का ही है।
0: तो फिर राजमा गोगोची की रेसिपी भी बता दे जो इसके साथ खानी है। इसके लिए हमें राजमा चाहिए, सूखी गोगोची, गोगोची यानी गुच्छे वाले में जो मशरूम होते हैं उनको कहते हैं, और दही चाहिए आवश्यकता के अनुसार, और साथ में चाहिए सौंफ पाउडर, सूखी अदरक का पाउडर यानी सौंठ, जीरा, हींग, नमक, तेल या घी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले राजमा को भिगोकर अच्छी तरह से पकाया जाता है, फिर सूखी गोगोची को साफ करके पानी में भिगोया जाता है और इसके बाद मसालों का आप तड़का लगाइए। राजमा और गोगोची को धीमी आंच पर पकाइए धीरे धीरे, और धीमी आंच पर जब आप पकाते हैं तो मसालों की जो खुशबू है वो अच्छी तरह हमें भी मिलती है और साथ में इससे व्यंजन का स्वाद भी गहरा हो जाता है। और फिर इसके बाद आप

0: इसको खाइए चावल या कश्मीरी शैली के पुलाव के साथ, जो कि हमने बना ही लिया है, तो बस उसके साथ हम खा लेंगे मोदर पुलाव के साथ, है ना?
1: तो ये तो बिल्कुल कंप्लीट खाली हो गई ना, खुशबूदार हाँ। मतलब बना नहीं है लेकिन फिर भी
0: खुशबू आने लगी है। अब इतनी सारी बातें इलायची और सब चीजें की हो गई है, तो ऐसे खुशबू तो आएगी, केसर की भी आ रही है।
1: और देखते हैं इस अगले गीत की खुशबू कैसी है।
0: हाँ,

0: जी हाँ, लता जी की आवाज और उनके गाए गीतों से हमें भी उतना ही प्यार है ना।
1: और हमारे सभी साथियों ने भी यही लिखा है कि एक ही प्रोग्राम में सारे गाने आना भी मुश्किल है और हर गाना पसंदीदा है, लेकिन हम हमेशा हार जाते हैं समय से, क्योंकि समय बीत जाता है और हमें जाना पड़ता है न चाहते हुए भी। तो आज के इस कार्यक्रम से भी लेते हैं इजाजत। स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा
0: और दीपा महेश्वरी का
1: नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: श्रोताओं नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे PCOD और IVF। इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत, तो आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
1: सेहतनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, विविध भारती के स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं डॉक्टर ज्योति शाह, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम उनसे बातचीत करेंगे स्त्रियों से संबंधित बीमारियों को लेकर। तो डॉक्टर साहिबा, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंदाकिनी जी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू विविध भारती मुझे इनवाइट करने के लिए।
1: जी, तो आज डॉक्टर साहिबा, हम आपसे महिलाओं की रोजमर्रा की स्वास्थ्य समस्या, जैसे अगर हम बात करें PCOD है, PCOS है
2: जी,
1: पीरियड्स को लेकर, मेनोपॉज को लेकर जो बदलाव हो रहे हैं, हार्मोनल बदलाव जो हम महसूस करते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और एक और खास विषय है IVF
2: जी,
1: ये क्या है, इसको लेकर भी हम विस्तृत चर्चा आपसे करेंगे।
2: जरूर।
1: तो सबसे पहले महिलाओं के सामान्य स्वास्थ्य की हम बात करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिनका सामना महिलाएं अक्सर करती हैं, लेकिन उन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज भी कर देती हैं।
2: तो ये जो क्वेश्चन है मंदाकिनी जी, तो इसको हम डिवाइड करेंगे किशोर अवस्था से लेके रिप्रोडक्टिव एज से लेके मेनोपॉज तक, यानी पीरियड बंद हो जाना वो एज तक। तो जो एक यंग लड़की जो है, जिसको पीरियड स्टार्ट होता है, जिसको हम मेनार्की बोलते हैं, वो आज मैं देख रही हूँ, एक्चुअली मैं गए 28 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैंने जो चेंज देखा है लास्ट 10-15 साल में ये है कि जो पीरियड आना जो नॉर्मली 11 से 15 की एज में आता है, आजकल काफी यंग लड़कियों को, जैसे 7-8 साल की बच्चियों को भी पीरियड आने लगता है।
1: अच्छा।
2: यस, सो ये एक चेंज मैंने देखा है। दूसरा कि जब ये पीरियड आता है तो थोड़े से प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम करके एक एंटिटी है, कि पीरियड आने से पहले बहुत इरिटेबल होना, चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा बिहेवियरल डिफरेंस, ये सब हो सकता है, विच इज नॉर्मल। तो मदर्स को डरना नहीं है कि भाई ये क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ। दूसरा जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो बदलाव आ रहा है वो ये है कि गर्ल्स अभी शादी जो है वो या टाइम पे करती है लेकिन बच्चा लेट करती है, या लेट करती है और फिर नेचुरली बच्चा भी लेट होता है। तो अभी जो बदलाव मैं देखती हूँ जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, यानी जैसे 20 साल से लेके 30-35 साल की एज में, तो PCOD जो है या PCOS या अभी PMOS हम जो बोलते हैं, वो काफी बढ़ चुका है। जो हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो रहा है, ये एक काफी एक बर्निंग समस्या है, बहुत है। PCOD में ये है कि अंडे बहुत होते हैं, टू मेनी एग्स, पॉलीसिस्टिक बोलते हैं। तो एक साइड पे वो प्रॉब्लम है, दूसरी साइड पे जो मैं अभी देख रही हूँ ये भी गए 10 साल में ज्यादा, कि यंग लड़कियां, मतलब 25 साल 26 साल की लड़की है लेकिन उसके अंडे ही नहीं है या बहुत कम है।
1: अच्छा,
2: ये पहले नहीं था। हाँ। तो ये भी अभी मतलब जो
1: बहुत बड़ी
2: समस्या है। तो जो लड़कियां जो बच्चा प्लानिंग कर रही हैं, जो औरतें हैं, तो ये भी उनको ध्यान में रखना चाहिए कि शायद से अंडे कम हो या PCOD, तो अंडे तो बहुत ज्यादा है, तो ये प्रॉब्लम उनको अपने गायनेक को कंसल्ट करना चाहिए। और थर्ड स्टेज जो मैंने बोला मेनोपॉज में, तो मेनोपॉज में अगर जब पीरियड बंद होने लगता है या पीरियड बंद हो जाता है, तो वुमेन काफी हद तक बहुत सारे चेंजेस महसूस करती है, जैसे मूड स्विंग्स हैं, हॉट फ्लशेस हैं। तो ये मतलब अगर वो एक्सपीरियंस कर रही है और अगर वो बॉदर कर रहा है, तो शी शुड टेक हेल्प। एंड ऑल्सो जैसे मेनोपॉज के टाइम पे कैंसर्स की रिस्क भी बढ़ते हैं, तो जिसके बारे में शायद से हम बाद में बात करने वाले हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो अगर कुछ भी अलग अदर देन रूटीन ये फेज में भी अगर है, तो उनको कंसल्ट करना चाहिए।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। और हम ये जानना चाहते हैं कि अक्सर महिलाओं में थकान है, कमजोरी है, चक्कर आ रहे हैं, नींद की परेशानी है या चिड़चिड़ापन जैसा आपने कहा, तो क्या ये केवल जीवन शैली से जुड़ी बातें हैं, या कभी कभी इनके पीछे कोई स्त्री रोग या जो हार्मोनल कारण विशेष हो सकते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है और हम अपनी जिंदगी को यूं कहें कि घसीटते चले जाते हैं।
2: जी, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो हार्मोनल चेंजेस हर एक फेज में जो हो रहे हैं तो वो तो हार्मोन्स के कारण वो चेंजेस तो आते भी हैं काफी लेडीज में. और सेकेंडली जो थकावट है ये इसके कारण भी हो सकती है कि अगर जो औरत है अगर उसको बहुत ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स में, अगर उनको माहवारी बहुत ज्यादा हो रही है, क्लॉट्स आ रहे हैं, बहुत दिन तक ब्लीडिंग चालू है, तो उससे हीमोग्लोबिन कम हो सकता है उनका. अनीमिया एक इंडिया का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है ये. और इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयरन टैबलेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इस चीज के लिए. तो थकावट अनीमिया के कारण हो सकती है बिकॉज ऑफ द करंट जो हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ जो हम जी रहे हैं, हमारा खान पान, हमारा सोने का टाइम, उठने का टाइम, एक्सरसाइज नहीं, ये सब के कारण जो स्ट्रेस बढ़ता है उसके कारण भी हार्मोनल चेंजेस जैसे थायराइड हो जाना. तो थायराइड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कि काफी थकावट महसूस हो रही हो, मूड चेंजेस हो रहे हो, वजन बढ़ना, ये सब. तो थायराइड भी चेक करना चाहिए, हीमोग्लोबिन भी चेक करना चाहिए. और इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस भी एक बर्निंग इश्यू है. तो अगर वेट लॉस हो रहा है, उसके बाद थकन हो रही है, सांस फूल रही है, तो ट्यूबरक्लोसिस की भी जांच
3: संभावना हो सकती है. तो कहने का मतलब ये है डॉक्टर साहिबा कि अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हमें मिलते हैं या ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें डॉक्टर की परामर्श लेनी चाहिए.
2: जरूर
3: डॉक्टर की परामर्श से हमें अपना इलाज करवाना चाहिए.
2: डेफिनेटली
3: इसे केवल बुरा व्यवहार समझकर नहीं छोड़ देना
2: नहीं,
3: है
2: बिल्कुल नहीं छोड़ना है. इसको हमको एड्रेस करना है कि ये क्यों हो रहा है.
3: जी जी.
2: और अगर वो ट्रीटेबल है तो डेफिनेटली ट्रीट करना चाहिए.
3: बिल्कुल. और एनीमिया के बारे में आपने बताया, ये बहुत बड़ी समस्या है और लगभग हर स्त्री को इसका सामना करना पड़ता है. यूं कहें कि पढ़ी लिखी स्त्रियां भी कई बार इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देती हैं और इसी में अपना जीवन निकाल लेती हैं. जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके सामने और ज्यादा इस तरह की तकलीफें आती हैं. तो आपसे लंबी बातचीत हम करने वाले हैं, पहले आपकी पसंद का गीत सुन ले.
2: जी, तो कोई भी मोहम्मद रफी का गीत, आई एम ओके विद दैट.
3: अरे वाह, कौन सा सुनाई बताए.
2: तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है.
3: फिल्म चिराग का गीत हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में.

0: क्या है।
1: डॉक्टर साहिबा, हम जब बात कर रहे थे आपसे, आपने कहा कि पीसीओडी की समस्या भी आजकल बहुत सुनने में आती है
2: जी।
1: तो हमारी वो महिलाएं जो नहीं जानती हैं कि पीसीओडी क्या है और इसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं
2: जी,
1: उन्हें आप बताइए कि क्या है पीसीओडी।
2: ओके, तो पीसीओडी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी एक हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण एक प्रॉब्लम शुरू होती है और उसमें लक्षण ये होते हैं कि लेडीज जो औरतें हैं जिनकी महावारी रेगुलर होनी चाहिए 28 या 30 दिन में, उसके बदले में महावारी डीले हो जाना, जैसे 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन या उससे भी ज्यादा, यानी पीरियड्स लेट होना, या पीरियड जब आता है तो नॉर्मली जो 5 दिन 8 दिन रहता है उसके बदले में 15 दिन 20 दिन कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता है
1: जी।
2: तो ये भी एक उसका लक्षण है। अच्छा, पीसीओडी में एक्सेसिव वेट गेन भी हो सकता है, एक्ने यानी पिंपल्स, मुंह पे पिंपल्स आना, ये हो निकल, पिंपल्स निकलना, बाल झड़ना, अच्छा दाढ़ी आना। मेरे दो पेशेंट्स हैं जो इनको रोज शेविंग करनी पड़ती है।
1: अच्छा,
2: यस। तो सिवियर पीसीओ पेशेंट्स में सर के बाल निकल जाते हैं लेकिन दाढ़ी के बाल उगने लगते हैं, तो वो एक
1: लक्षण है
2: जी। तो अगर आपका वेट ज्यादा बढ़ रहा है या पीरियड्स इरेगुलर हैं तो मे भी आपको पीसीओ हो सकता है।
1: हो सकता है। तो इस पीसीओडी की समस्या को नियंत्रित कैसे रखा जाए?
2: तो उसके लिए एक्चुअली ये समझना जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है पीसीओडी। तो पीसीओडी जो है वो लास्ट 10-15 साल में एक एपिडेमिक जो हो चुका है कि ऑलमोस्ट एवरी अदर गर्ल उसको पीसीओ है। बहुत कॉमन है, अगर आप 10 लड़कियों को एक रूम में रखेंगे तो शायद से 5 लड़कियों या 6 लड़कियों को तो पीसीओ होगा, इतना अभी कॉमन हो गया है ये पीसीओ। तो ये द एग्जैक्ट कॉज वी कैन नॉट पिन पॉइंट, बट जेनेटिक एक कॉज हो सकता है कि अगर मदर को पीसीओ है तो डॉटर को हो सकता है। बट अभी की जो लाइफस्टाइल है जहाँ पे लैक ऑफ एक्सरसाइज है, अपना जो खान पान जो है, जो रेडी फूड, जो घर का खान

0: नहीं खाते हैं, और बाहर का पैकेट खोल के खाना, ये जो रिफाइंड ऑयल वगैरह ज्यादा उसका सेवन करना, होल ग्रेन्स नहीं खा के मैदा और ये सब ज्यादा खाना, ब्रेड है ये, और स्ट्रेस, अभी सब लड़कियां पढ़ रही हैं तो वो स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज
1: बिल्कुल
0: एंड सोशलाइजेशन बहुत कम हो गया है, तो आपका स्ट्रेस, आप मतलब आप किसी से बांट नहीं सकते हो, तो सोशल आइसोलेशन हो गया है थैंक्स टू द मोबाइल,
1: सही है.
0: तो ये सब के कारण से ये जो पीसीओ का प्रॉब्लम काफी
1: आ
0: बढ़ चुका
1: गया
0: है।
1: जी. तो इसके लिए जाहिर है कि हमें डॉक्टर के संपर्क में जाना चाहिए, उनसे
0: जी
1: बात करनी चाहिए और इस
0: जी
1: समस्या का निराकरण करना
0: डेफिनेटली
1: बहुत
0: डेफिनेटली
1: जरूरी है, क्योंकि इसके
0: डेफिनेटली
1: फिर साइड इफेक्ट्स हमारे सामने
0: जी।
1: आते
0: और ये भी
1: हैं.
0: मैं मेंशन करना चाहूंगी कि पीसीओ पेशेंट्स जो लड़कियां हैं, जरूरी नहीं कि उनका वजन ज्यादा हो, देयर इज
1: अच्छा
0: समथिंग कॉल्ड एज थिन लीन पीसीओ, यानी वो बहुत पतली हैं बट फिर भी वो पीसीओ है। तो पीसीओ का क्राइटेरिया, बेसिकली मेन क्राइटेरिया ये है कि एक तो पीरियड की इरेगुलरिटी होना, सेकेंड क्राइटेरिया है कि मेल हॉर्मोन्स जो ज्यादा होते हैं, तो जिसके कारण मैंने बताया कि बॉल्डिंग होना, दाढ़ी उगना, पिंपल आना ये, एंड थर्ड सोनोग्राफी पे ओवरीज में बहुत सारे अंडे दिखना, ये एक मतलब क्राइटेरिया है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि पीसीओ में जो हर महीने अंडा फूटना चाहिए वो उनका फूटता नहीं है, यानी अंडा बड़ा होता है फिर फूटता नहीं है, फिर थोड़ा टाइम के बाद दूसरा अंडा बड़ा होता है फिर फूटता नहीं है, फिर वैसे करके 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद जब फूटता है, एक कोई अंडा फूट गया तो फिर तभी पीरियड आता है, लेकिन वो पीरियड बहुत लंबे समय तक चालू रहता है, तो ब्लीडिंग ज्यादा होने के कारण पेशेंट अनिमिक भी हो जाती है, क्योंकि ये इंप्रेशन है लोगों को कि पीरियड में वो जो ब्लड है वो निकलना चाहिए, वो खराब ब्लड है, तो ये मैं एक्चुअली बताना चाहूंगी सबको कि ये वो खराब ब्लड नहीं है, वही ब्लड आपके हार्ट में, लंग्स में, किडनीज में है, तो जो नॉर्मल जाना चाहिए वो ठीक है, बट उससे ज्यादा अगर जा रहा है तो उसको ट्रीट करना बहुत ही
1: जरूरी
0: जरूरी
1: है. बिल्कुल एक आम धारणा है या ग्रामीण तबकों में तो खास तौर से कि
0: जी
1: गंदा
0: जी
1: खून है जो
0: जी
1: बाहर
0: जी
1: निकल
0: जी
1: रहा
0: जी
1: है.
0: जी
1: बहुत अच्छी जानकारी दी कि ये
0: जी
1: गंदा खून नहीं है,
0: जी
1: ये हमारे पूरे शरीर में है
0: यस
1: और एक उचित मात्रा में निकलना चाहिए
0: यस
1: महावारी के दौरान,
0: जी
1: लेकिन उससे ज्यादा निकलते ही दूसरी समस्याएं पैदा हो जाती
0: जी
1: हैं.
0: जी
1: डॉक्टर साहिब, आप पीसीओडी के साथ अक्सर हम पीसीओएस की भी चर्चा आजकल कर रहे
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: तो क्या पीसीओडी और पीसीओएस ये दोनों एक ही हैं या
0: जी
1: दोनों में कोई बेसिक अंतर है?
0: एक ही है एक्चुअली। अभी जो नया टर्मिनोलॉजी आया है, अभी पीसीओडी या पीसीओएस नहीं बोलते हैं, हम पीएमओएस बोलते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यानी ये जो लड़कियां जिनको पीरियड इरेगुलर आ रहे हैं, या बाल झड़ रहे हैं, या स्किन में पिंपल्स आ रहे हैं, या वजन बढ़ रहा है, या इनफर्टिलिटी है उसके कारण, या जो भी सिम्टम है पीसीओडी का, उसके साथ साथ उनको डायबिटीज के होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स यानी हार्ट अटैक्स होने के, ये उनका लिपिड प्रोफाइल जो है, जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ट्राइग्लिसराइड्स, वो चेंज होता है और कार्डियक रिस्क उनका बढ़ जाता है, तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और इसमें पीसीओडी में कैंसर्स के भी रिस्क बढ़ जाते हैं, तो ये सिर्फ पीरियड रिलेटेड या स्किन रिलेटेड नहीं है एक्चुअली,
1: बिल्कुल
0: इसके बहुत सारे और भी मल्टी डायमेंशंस हैं जो हमको देखने चाहिए और उनको पता होना चाहिए।

0: इसका अर्थ ये माने कि महिला माँ नहीं बन सकती,
1: नहीं
0: ऐसी कोई
1: बिल्कुल
0: धारणा?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. सो बेसिकली पीसीओ में जो मैंने जो बताया कि अंडे नहीं फूटते हैं रेगुलरली, जो 28 या 30 दिन में एक अंडा नॉर्मली फूटता है, जब वो नहीं फूटता है जिसको हम ओवुलेटरी डिसफंक्शन बोलते हैं, तो वो हम बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं मेडिसिन से. इनफैक्ट एक्चुअली इवन बिफोर मेडिसिन हम उनको बोलते हैं आप लाइफस्टाइल अपना चेंज करो, यानी आप अपना रेगुलर एक्सरसाइज करो, अपनी डाइट पे ध्यान रखो, योग करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, होल ग्रेन्स इंक्लूड करो, फ्रूट्स एंड नट्स इंक्लूड करो अपनी डाइट में. तो थोड़ा भी इवन 5% ऑफ वेट लॉस अगर होता है एक पीसीओ पेशेंट जो मतलब जिसका वेट ज्यादा है, तो वो जो अंडा जो रेगुलरली नहीं फूटता है वो फूटने लगता है. यानी सिंपल लाइफस्टाइल चेंज से भी काफी हद तक पीसीओडी या पीएमओएस के हम सिम्टम्स रिवर्स कर सकते हैं. ये परमानेंट नहीं है अगर हम अपनी लाइफस्टाइल और ये डाइट एक्सरसाइज को
0: बदलते हैं.
1: यस, तो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना. अभी आजकल जो मैं सुनती हूँ लड़कियां 1, 2, 3 बजे के पहले सोती नहीं है, 8, 9, 10 बजे के पहले उठती नहीं है. तो ये चेंज होना बहुत जरूरी है. बिकॉज मैं ये बताना चाहूंगी कि हम जब सोते हैं तो एक हार्मोन होता है जिसके कारण हम गहरी नींद सोते हैं, जो हार्मोन है मेलाटोनिन.
0: बिल्कुल.
1: और मेलाटोनिन ये हार्मोन का पीक राइज इज अराउंड 9, 9:30, 10.
0: अच्छा
1: जी,
0: उस वक्त तो हम लोग खाना खाना पसंद करते हैं या टीवी देखना पसंद करते हैं.
1: तो जब ये उसका पीक निकल जाता है
0: हाँ.
1: तो नींद आती है लेकिन इतनी गहरी या क्वालिटी स्लीप नहीं रहती
0: नहीं
1: है. और दूसरी बात ये है कि जब आप लेट सोते हो जैसे 12, 1, तो जब बॉडी जग रही है तो ब्रेन ये इंटरप्रेट कर रही है कि ये कुछ स्ट्रेस है. तो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, वो सिक्रेट होने लगता है जिसके कारण स्ट्रेस रिस्पॉन्स यानी वजन बढ़ना, नींद, क्वालिटी नींद नहीं आना, स्पेशली अराउंड द बेली कॉर्टिसोल के कारण वेट पुट ऑन होता है. तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है बॉडी का, इन्फ्लेमेशन. तो ये सब पीसीओ के सिम्टम्स और भी खराब कर देता है.
0: अच्छा.
1: इसीलिए टाइम पे सोना और टाइम पे उठना. उसके लिए टाइम पे डिनर लेना यानी अर्ली डिनर, जैसे 7, 7:30, 8 o'clock, यानी सोने से 2 घंटे पहले डिनर लेना बहुत जरूरी है. और अगर मैं बोलती हूँ कि आपको 10, 10:30 बजे तक सो जाना चाहिए बिकॉज मेलाटोनिन पीक तभी होता है और तभी आपको इतनी गहरी नींद आती है कि क्वालिटी स्लीप, कि जहाँ पे बॉडी प्रोसेसेस सब हीलिंग होने लगता है, बॉडी का प्रोसेसेस सब स्लो डाउन हो जाते हैं और टॉक्सिन्स निकलने लगते हैं. तो लेकिन जब आप वो टाइम पे नहीं सोते हैं तो फिर वो जो डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए प्रोसेस वो नहीं होता,
0: नहीं
1: है,
0: होता है,
1: इन्फ्लेमेशन बढ़ता है. तो ये चेंज भी लाना बहुत जरूरी है. और जल्दी उठते हैं जब आप नेचर के साथ रहते हैं, आप जल्दी उठते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने स्ट्रेस को भी प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हैं.
0: बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने डॉक्टर साहिबा, कि हम किस तरह से खुद को हमने बीमार कर रखा है, देर रात तक जगना, सुबह लेट तक उठना और कभी भी खाना खा लेना, जब भूख लगेगी खा लेंगे, इस तरह की अनियमित जो दिनचर्या हमारी है वही बहुत बड़ा कारण है इन बीमारियों का.
1: एब्सोल्युटली,
0: है ना. और अगर हम इनमें थोड़ा सा भी बदलाव ले आते हैं तो हम धीरे धीरे सुधार महसूस कर सकते हैं.
1: 100%.
0: डॉक्टर साहिबा, चलिए यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, ठीक है? सुनते हैं आपकी पसंद का एक गीत.
1: आज फिर जीने की तमन्ना.

0: डॉक्टर साहब, किस समय एक महिला को या किशोरी को सुबह का खाना, दोपहर का खाना और शाम का खाना, आपने कहा 7:30 to 8 o'clock तक खा लेना चाहिए, तो सुबह का और दिन का भी किस तरह का होना चाहिए टाइम, आप थोड़ा सा बताइए।
1: ऐसा है कि उठने के बाद, एक तो आई रेकमेंड कि आप वार्म वाटर लें उठने के बाद, उसमें आप लेमन डाल के, नींबू डाल के ले सकें तो एक बॉडी एनर्जाइज, मतलब उसको हाइड्रेशन चाहिए क्योंकि पूरी रात हाइड्रेशन नहीं मिला
0: नहीं है, yes, बिल्कुल।
1: तो बॉडी की जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाती है। मे बी थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट लेके या कोई नट्स लेके आप थोड़ा एक्सरसाइज करें, योग करें, मेडिटेशन करें, एम्प्टी स्टमक करें तो भी चले। और उसके बाद आप जो आपका ब्रेकफास्ट है वो होलसम ब्रेकफास्ट होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी और चावल, ये इसमें ज़्यादा कार्ब्स रहते हैं उस टाइप का, यानी हम जो पराठे खा लेते हैं वो कम खा के, जैसे प्रोटीन्स उसमें इंक्लूड करें। आप खा सकते हैं जो इंडियन ब्रेकफास्ट है उसमें पोहा है, उपमा है, पराठे हैं। तो अब हमको ये सोचना है मदर्स को या विमेन को कि मैं इसमें प्रोटीन की मात्रा कैसे बढ़ाऊं।
0: ठीक है।
1: तो जब आप प्रोटीन ज्यादा लेते हैं, कार्ब्स कम, तो फिर वो इंसुलिन स्पाइक जो होता है वो कम होता है। प्रोटीन्स प्रिवेंट इंसुलिन स्पाइक, जो मैंने बोला ना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और जब स्पाइक होता है उससे वेट गेन होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण या इंसुलिन स्पाइक के कारण वेट गेन होता है। तो जब हम प्योर ओनली कार्ब्स जब हम खाते हैं तो इंसुलिन स्पाइक ज्यादा होती है। तो हमको थोड़ा मिक्स एंड मैच करके प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा करनी चाहिए। जो हम पहले जो खाते थे, जो हमारे जो पूर्वज थे वो खेती बाड़ी करते थे, उनके फिजिकल लेबर कितना था, अभी हम वो तो करते नहीं है। वी कैन नॉट हैव दैट सेम फूड, उनकी जो क्वांटिटी है वो भी उतनी हम यूज नहीं कर पाएंगे, और जो कार्ब्स उनको एनर्जी के लिए चाहिए, वो फिजिकल वर्क के लिए, वो भी हम यूज नहीं करते। तो ये थोड़ा चेंज लाना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में भी कोई हाई प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट, जैसे आप पनीर ले लो या टोफू ले लो सोयाबीन्स का, बॉइल्ड एग या स्प्राउट्स, वैसे ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए। मिड मॉर्निंग कोई फ्रूट ले लिया अलोंग विद नट्स एंड सीड्स, वैसे कर सकते हैं। लंच में सैलड, यानी फाइबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइबर ऑल्सो प्रिवेंट्स इंसुलिन स्पाइक। तो प्रोटीन्स, फाइबर्स, ये आपके डाइट में, हर डाइट में होने चाहिए, ताकि जो इंसुलिन स्पाइक, जो मेन क्रिमिनल, मतलब जो प्रॉब्लम का कारण है, वो ना हो। तो उसके लिए लंच में आप सैलड के साथ प्रोटीन और जो कार्ब्स की मात्रा है वो कम करें। सिमिलरली मिड आफ्टरनून या मिड इवनिंग आप ग्रीन टी ले सकते हैं आपकी मेटाबॉलिज्म को हाई रखने के लिए, और इवनिंग में सूप जिसमें फाइबर मिले अलोंग विद सम प्रोटीन, जैसे मूंग दाल चीला ले लिया या उस टाइप का, मतलब प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए इंसुलिन स्पाइक को
0: नहीं
1: होने के लिए।
0: डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी कि किस तरह से एक स्त्री को, एक औरत को, महिला को अपना भोजन या अपनी दिनचर्या फिक्स करनी चाहिए। लेकिन हम उन औरतों को भी ध्यान में रखना चाहते हैं जो श्रमिक वर्ग की हैं, बहुत मेहनत करती हैं, खेती बाड़ी करती हैं, गांवों में रहती हैं, उन्हें नहीं पता होता किस तरह से ग्रीन टी पी जाए या किस तरह से प्रोटीन खाया जाए, उनके लिए आप किस तरह की डाइट का सुझाव देंगी?
1: जैसे इनफैक्ट अगर खेती बाड़ी कर रहे हैं तो इतनी फिजिकल एक्टिविटी कर रही हैं तो मुझे नहीं लगता है उनको पीसीओ होगा भी, बट अगर होता है तो फिर दालचीनी पानी, दालचीनी इज एन इंसुलिन सेंसिटाइजर है, मेथी इंसुलिन सेंसिटाइजर है, जीरा इंसुलिन सेंसिटाइजर है। तो मेथी, जीरा, दालचीनी पानी, ये सब इसका सेवन, ये दिन में एक बार दो बार ऐसे, और सोते समय भी दालचीनी का पानी लेके सोए तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया।
0: अच्छा, यानी दालचीनी को पानी में भिगो देना है,
1: यस,
0: और छान के
1: यस, बॉइल करके उसको छान के ले सकते हैं।
0: अच्छा,
1: तो ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है आपकी, कोई भी टाइम पे खा लेना। चलो, कभी कभी वो हम स्ट्रेस में खा लेते हैं, हमको भूख नहीं लगी होती है लेकिन हम खा लेते हैं, तो वो कम कर देता है। और प्रोटीन्स जो जब आप ज्यादा लेते हो, जैसे आपने खिचड़ी ले ली, खिचड़ी में आपने दाल की मात्रा ज्यादा ले ली, तो प्रोटीन्स आपको मिल जाते हैं। कोई भी प्रोटीन अगर आप ज्यादा लेते हो ना, तो आपका जो सटाइटी, यानी आपको लगता है कि नहीं अब पेट भर गया है, अब भूख नहीं है, तो वो भूख कम लगेगी, वो भी है। तो आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा जो खाना आप खाते हो, कैलोरीज लेते हो, वो कम हो जाए,
0: नहीं खाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि इस तरह से अगर हम अपना डाइट प्लान करते हैं तो बहुत हद तक बहुत सी समस्याओं से हम अपने आप को बचा सकते हैं।
1: डेफिनेटली, मतलब, और उसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि योग, मेडिटेशन, प्राणायाम और फिजिकल एक्टिविटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर चीज के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी। मतलब आज कल जो हम डिप्रेशन वगैरह इतना सब सुनते हैं, इतना स्ट्रेस के कारण, तो वो भी विद एक्सरसाइज काफी हद तक कम हो जाता है,
0: कम हो जाता है। और गीत संगीत सुनने से भी काफी हद तक हमें
1: 100%
0: तो एक गीत हो जाए आपकी पसंद का,
1: मैं सुनना चाहूंगी जूली फिल्म का माई हार्ट इज बीटिंग।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना है। प्रीति सागर की आवाज में हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: डॉक्टर साहब, हमारा सवाल यह है कि एक सामान्य जो मासिक चक्र है वो कैसा होता है या कैसा होना चाहिए?
1: तो जो पीरियड्स जो हैं वो नॉर्मली हर 28 से 30 दिन में पीरियड्स आते हैं, जिसको हम माहवारी बोलते हैं। तो ये एक अंदर जो हॉर्मोन्स के चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसके कारण नॉर्मली हर महीने एक अंडा बढ़ता है, जो पीरियड के सेकंड थर्ड डे से मतलब बढ़ने लगता है, और फिर वो लगभग पीरियड के मे बी 11वें 12वें 14वें दिन फूटता है अंडा, जिसको हम ओवुलेशन बोलते हैं।
0: ठीक है।
1: जब अंडा फूटने के बाद अगर वो वुमन प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो वो उनका जो यूट्रस का जो लाइनिंग है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो शेड ऑफ हो जाता है। वो लाइनिंग जो है वो तैयारी मतलब गादी होती है कि प्रेगनेंसी अगर रुकती है तो उसकी गादी मतलब वो तैयार होती है, और जब प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो वो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो शेड ऑफ होती है, तो जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। तो जब रेगुलर ओव्यूलेशन यानी हर महीने जब अंडा फूटता है और जब प्रेग्नेंट नहीं होते हैं और जो पीरियड आता है, दैट इज व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन।
0: यानी 28 से लेकर 30 दिन का ये चक्र होता है।
1: यस, कई गर्ल्स में 21 दिन में भी पीरियड आता है, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल, वो उनका साइकिल है। कई बार 35 डेज साइकिल हो सकता है,
0: अच्छा,
1: सो इट्स
0: अलग
1: नॉट
0: अलग शरीर
1: अलग,
0: में
1: बट
0: अलग
1: ऑन
0: अलग
1: एन एवरेज 28 to 30 डेज
0: 30
1: होता
0: होना
1: है।
0: चाहिए। अभी आप शुरू में बता रही थी कि इसका जो पहले रेशो था 12 से 15 वर्ष तक था कि वहां से पीरियड शुरू हो जाते थे, लेकिन अब आपने देखा है कि 7-8 साल की लड़कियों को भी पीरियड होने लगी है।
1: जी
0: क्या इसका कारण है? जल्दी उम्र में जब बच्चा समझ ही नहीं पाता कुछ भी।
1: जी तो ये एग्जैक्ट रीजन तो शायद डिफिकल्ट है बताना, बट सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अभी आजकल के बच्चों को जो सोशल मीडिया एक्सपोजर है तो उनका जो मेच्योरिटी है
0: तो जल्दी हो
1: जल्दी
0: गई।
1: होने लगता है, तो जो हॉर्मोन्स का जो नॉर्मल जो चेंजेस आने चाहिए जो टाइम पे, वो शायद अब जल्दी होने लगे हैं, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा है।
0: तो ऐसी खास बच्चियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? माता पिता को क्या ध्यान रखना चाहिए जिन बच्चियों की 7 या 8 साल की उम्र में माहवारी शुरू हो गई है तो?
1: तो बच्चियां बहुत छोटी हैं, सो इसलिए थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करना, कि वो तो डर जाती हैं कि ये क्या हो रहा है, तो एक तो कि ये नॉर्मल है, नथिंग टू वरी, एंड उनको अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी पैड यूज़ कर रहे हैं या जो भी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, वो एरिया को साफ रखना, या अगर कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो कपड़ा अच्छा साफ धुला हुआ होना चाहिए, सनलाइट में सुखाया हुआ होना चाहिए, वो सब बच्चियों को समझाना। एंड सेकेंडली कि लड़कियां इस चीज़ को लेके बहुत ही डरी हुई रहती हैं, मतलब कंप्लीटली वो उनको बोल देना कि ये

0: टोटली नॉर्मल है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको ये भी बताना, ऑफकोर्स दे आर वेरी स्मॉल बट आजकल की लड़कियां बहुत स्मार्ट भी हैं, कि प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं. जब पीरियड शुरू हो रहा है दैट मीन्स अभी अंडा फूटने लगा है, तो दैट मीन्स देर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ प्रेगनेंसी. तो ये भी मतलब सेक्सुअल एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, ये सोच के कि बच्ची है तो इसको क्या अभी बताएं. लेकिन अभी जो एनवायरमेंट है तो उनको गुड टच बैड टच ये तो हम बताते ही हैं, लेकिन अभी उसमें ये भी ऐड करें कि अब प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है.
1: मतलब एक इतनी छोटी बच्ची को ये एजुकेशन देनी बहुत जरूरी है माँ की तरफ से.
0: हाँ, और ये भी मैं बताना चाहूंगी कि जनरली फर्स्ट वन ईयर यस टू ईयर्स जब पीरियड स्टार्ट होता है तो उनका जो ओवुलेशन, जो मैंने बताया कि अंडा फूटना, कि वो प्रक्रिया जो रेगुलर नहीं होती है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां का पीरियड जैसे आया फिर मे बी 5-6 महीने नहीं आया, या 2-3 महीने कंटिन्यूअसली ब्लीड हो रही है. तो अगर ऐसा हो रहा है उनको डॉक्टर के पास जाना है, बिकॉज यू कैन नॉट अलाउ कि वो बच्ची 15-20-25 दिन बस उसका ब्लीडिंग चालू है, बिकॉज वो डेफिनेटली एनीमिक हो जाएगी. और अगर लेट आया है पीरियड तो नॉट टू वरी कि फर्स्ट 1-2 साल ऐसे इरेगुलर ओवुलेशन होता है.
1: तो ये भी चिंता का विषय हो जाता है.
0: काफी बार मदर्स आते हैं
1: कि क्या बात है अगले महीने इसको समय पर पीरियड्स नहीं आए.
0: जी जी जी,
1: ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि 1-2 साल तक ये समस्या आ सकती है कि पीरियड्स टाइम टू टाइम नहीं आएंगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो रही है महावारी तो उसके लिए पेरेंट्स को चिंता करनी.
0: यस, उनको डॉक्टर के पास डेफिनेटली लेके जाना है. और अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया है, एक मेरी पेशेंट आई थी जो बच्ची का हीमोग्लोबिन 7 ग्राम हो गया था, क्योंकि वो 20 दिन कंटिन्यूसली ब्लीडिंग विद क्लॉट्स था उसको. एंड उनको लगा कि ठीक है बंद हो जाएगा, लेकिन शी ऑलमोस्ट एक फेंट हो गई थी स्कूल में.
1: बच्चे के अंदर कितना डर बैठ जाता होगा छोटी बच्ची को कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और फिर उसको ता उम्र से फेस करना है, तो उसके लिए उसको मेंटली बहुत मैच्योर करना होगा एक माँ को. तो डॉक्टर साहिबा, जब आपने कहा कि पीरियड्स रेगुलर भी होते हैं इरेगुलर्स भी हो सकते हैं, इस दौरान आपने देखा है बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा ऐंठन आती है, बच्चे तो खैर लड़कियां तो रोने भी लग जाती है, महिलाएं भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग से परेशान हो जाती है, और कई कई महीनों तक पीरियड्स नहीं भी आता है, ऐसी समस्याओं से भी हम 2-4 होते हैं, तो इनमें से किन स्थितियों को हम बिल्कुल नजरअंदाज कर सकते हैं या हमें नहीं करना चाहिए, और कितना सावधान रहना चाहिए और इसको किस तरह से फेस करना चाहिए?
0: तो जो लड़की जिसका पीरियड रिसेंटली स्टार्ट होता है और एक्सपीरियंस करती है बहुत पेन, तो ये एक नॉर्मल सिम्टम है, तो इसके लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है. कई लड़कियों को बहुत ज्यादा पेन होता है, कई को बिल्कुल नहीं होता है, कईयों को थोड़ा मीडियम होता है. तो अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आप पेन किलर कोई भी पैरासिटामोल टाइप दे सकते हैं बच्चे को, ताकि वो कंफर्टेबल रहे. क्योंकि सबका पेन थ्रेशोल्ड जो है, यानी पेन सहन करने की शक्ति भी अलग
1: अलग अलग होती है,
0: तो उसके लिए हाँ बिल्कुल मेडिसिन ले सकती है बच्चे, बट ज्यादा पेन किलर्स नहीं खाने, ये मुझे स्ट्रेस करना है. क्योंकि ज्यादा लेने से, उनका सेवन करने से कई बार किडनी पे असर आ सकता है, स्पेशली ड्रग लाइक डाइक्लोफेनेक जो पेन किलर्स में काफी टाइम होता है. तो आपके डॉक्टर को मिलके ही पेन किलर लें, अगर पैरासिटामोल काफी सेफ है तो वो ले सकते हैं. जो 15-20 साल के बाद की एज के, जो पहले पेन नहीं था और अभी बहुत सिवियर होने लगा है, तो डेफिनेटली देखना चाहिए कि क्यों ये हो रहा है. तो फाइब्रॉइड्स एक रीजन हो सकता है, और दूसरा एक अभी जो एंडोमेट्रियोसिस एक एंटिटी है, एटलीस्ट हमारे सिटीज में तो काफी बढ़ गई है.
1: तो डॉक्टर साहिबा, इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले गीत सुन लें आपकी पसंद का.
0: जी
1: बताइए.
0: दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा.
1: आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत.

0: कई बार क्या होता है, लड़कियां या महिलाएं पीरियड्स के दर्द को वर्षों तक एक सामान्य मानकर सहती रहती हैं, जैसे आपने कहा पैरासिटामोल खाई या वर्किंग वीमेन्स या चले गई जॉब में, लेकिन कब ये दर्द किसी बीमारी की ओर बढ़ जाएगा? तो आजकल जो एंड्रोमेट्रियोसिस जिसका जिक्र आप कर रही हैं, ये भी इस तरह की बीमारी भी देखने में आ रही है।
1: जी जी,
0: तो इसके बारे में भी आप हमें बताइए।
1: तो एंड्रोमेट्रियोसिस बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक साइंस अच्छी तरह से पता नहीं कर पाया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो इसके कारण भी हमारे टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं, मतलब एक कोई एक रीजन नहीं बताया कि मे भी ये हो सकता है, मे भी ये हो सकता है वैसे। तो उसमें से एक कारण शायद सब लोग समझ पाए, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यूट्रस के साइड पे दो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, जो ओवरीज में से जो अंडा निकलता है वो फेलोपियन ट्यूब्स पिकअप कर लेती हैं। तो जब वो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो वजाइना से बाहर आता है, वैसे ही थोड़ा बहुत ब्लड थ्रू द ट्यूब्स एब्डोमेन में चला जाता है, यानी ओवरी पे एंडोमेट्रियल टिश्यू, जो एंडोमेट्रियम जो बोलते हैं वो एंडोमेट्रियल टिश्यू

0: अगर ओवरी में है या यूट्रस के सरफेस पे है, तो ये जब हर महीने वो एंडोमेट्रियल टिश्यू ड्यूरिंग पीरियड्स वो ब्लीड होता है, तो फिर वो गांठ हो सकती है ओवरीज पे, जिसको हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं, या यूट्रस के सरफेस पे वो गांठ हो सकती है, यानी पीरियड्स में वो ब्लड जमा होने लगता है, जिसके कारण वो सिवियर पेन हो सकता है पेशेंट को, और उसके कारण इनफर्टिलिटी भी हो सकती है. तो ये एंडोमेट्रियोसिस डेफिनेटली रूल आउट करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ अ सोनोग्राफी, समटाइम्स इवन अ MRI. मतलब बहुत अगर पेन है तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करके एंडोमेट्रियोसिस रूल आउट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट,
1: जरूरी है. yes. इसे केवल एक साधारण दर्द समझकर उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
0: बिल्कुल नहीं. yes.
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई. और इसके साथ ही डॉक्टर साहिबा, महिलाओं से जुड़ी एक और समस्या आती है, ल्यूकोमिया, जिसे हम सफेद पानी है ना सामान्य भाषा में कहते हैं, या खुजली है उस स्थान पर, जलन होना, या असामान्य स्राव, ज्यादा स्राव होता है. ऐसी समस्याओं को लेकर भी हमें डॉक्टर के पास जाकर बताने में बहुत झिझक महसूस होती है, और हम इसे दबाते चले जाते हैं या इसको झेलते चले जाते हैं, तो कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है?
0: तो इसके लिए पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो वाइट डिस्चार्ज जो लुकोरिया बोलते हैं, टू सम सर्टेन एक्सटेंट ये नॉर्मल है पीरियड के पहले.
1: अच्छा.
0: और ओवुलेशन के टाइम पे, जो मैंने बोला ना कि पीरियड के 14वें दिन या 15वें दिन जब अंडा फूटता है, उसके पहले थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज जाना, ये दोनों टाइम में नॉर्मल है. तो अगर वाइट डिस्चार्ज में अगर स्मेल नहीं है, इचिंग नहीं है, तो वो वरीसम नहीं है, स्पेशली अगर पीरियड के पहले या मिड पीरियड्स, मतलब मिड साइकिल में है. बट अगर बहुत बहुत बास आ रही है, या बहुत इची, यस बदबू आना, या बहुत इचिंग होना, यानी बहुत खुजली जैसा वहां पे आना, अगर ये हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए.
1: तो ये जो समस्या हम जिसका जिक्र अभी कर रहे हैं, किसी भी उम्र की महिला में हो सकती है?
0: जी, डेफिनेटली हो सकती है, कोई भी एज में, यंग एज से लेके मिडिल एज से लेके इवन पोस्ट मेनोपॉज हो सकती है.
1: बिल्कुल.
0: उसमें एक चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि ये एक कैंसर का भी लक्षण हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर.
1: अच्छा. जी. जो एक आम समस्या है.
0: यस. इंडिया में ऑलमोस्ट 200 वुमेन आर डाइंग ऑफ दिस कैंसर एवरी. मतलब ये सर्वाइकल कैंसर इतना कॉमन है, खास करके विलेजेस में.
1: बिल्कुल.
0: तो अगर एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज जा रहा है, स्पेशली मिक्स्ड विद ब्लड अगर.
1: अच्छा.
0: हाँ
1: जी.
0: तो इमिजिएटली आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, और वो कोई भी एज में, मतलब सेक्सुअल एक्सपोजर के बाद अगर ये समस्या आ रही है, तो ये 100% आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अगर ये मिक्स्ड विद ब्लड है.
1: किसी तरह की झिझक या समस्या को लेकर हम बैठ जाते हैं, ये हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होता.
0: जी, बिल्कुल.
1: एक गीत आपसे सुनेंगे, लेकिन चूंकि बात बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर चल रही है, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था फाइब्रॉइड का, कि महिलाओं के गर्भाशय में एक गांठ है जिसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं. ये भी एक आम समस्या की,
0: ये बहुत ही आम
1: समस्या है. तो ये एक सामान्य है, या हमें सचेत हो जाना चाहिए, या कई बार ऐसा मानते हैं कि पीरियड्स में जो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से ये फाइब्रॉइड की समस्या सामने आती है?
0: नहीं, फाइब्रॉइड बेसिकली जो यूट्रस का जो मसल है, इट्स अ फाइब्रोमस्कुलर ग्रोथ. ये एक नॉन कैंसरस, यानी ये कैंसर नहीं है, ये ग्रोथ है, एक गांठ है. लेकिन जो बहुत रेयर है कैंसर होना, यानी 1,00,000 फाइब्रॉइड में एक कैंसर मतलब हो सकता है, तो मतलब प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम उसको नॉन कैंसरस बोलते हैं, फाइब्रॉइड्स. तो जो मसल में जब ये जो गांठ बनने लगती है, तो डिपेंडिंग ऑन जो गांठ कहाँ पे है, अगर यूट्राइन कैविटी के अंदर है, यानी जहाँ एंडोमेट्रियम है, जिसको हम सबम्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं, मसल के अंदर है तो उसको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड बोलते हैं, यूट्रस के बाहर है तो सब सीरोसल फाइब्रॉइड बोलते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन द साइज, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, पेशेंट्स को सिम्टम्स होते हैं फाइब्रॉइड्स के. तो फाइब्रॉइड्स के कॉमन सिम्टम्स ये होते हैं कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, एक्सेसिव पेन होना, एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज और बैकएक. अगर ये सिम्टम्स हैं, तो फाइब्रॉइड हो सकता है पेशेंट को. तो डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड लोकेशन, कई बार बड़े फाइब्रॉइड्स यूट्रस के बाहर हैं तो इतना तकलीफ नहीं देते हैं.
1: अच्छा.
0: कई बार बहुत छोटे फाइब्रॉइड्स हैं लेकिन यूट्रस के अंदर के साइड पे हैं, बहुत छोटे, मे बी इवन 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, वो बहुत तकलीफ दे सकते हैं. तो ये जरूरी नहीं है कि फाइब्रॉइड्स हैं तो उसको निकालना ही चाहिए. ये भी मेरे पास काफी पेशेंट्स आते हैं कि फाइब्रॉइड है तो मुझे थैली निकालने को बोला है. नो, आपके सिम्टम्स लोकेशंस क्या है, आपकी साइज क्या है फाइब्रॉइड्स
1: की, कहाँ में है,
0: कहाँ पे लोकेशन कहाँ है, वो सब देख के फिर डिसीजन लिया जाता है कि गांठ निकालनी जरूरी है या यूट्रस निकालना जरूरी है।
1: तो कई बार ऐसा भी होता है डॉक्टर साहिबा कि ऐसी स्थिति में बच्चा पैदा नहीं हो सकता है या स्त्री जो है गर्भ धारण नहीं कर पाती है, ये समस्या भी आती है।
0: मैंने जो बोला यूट्रस की लाइनिंग के अंदर जब होता है तो इट कैन एक्ट एज अ फॉरन

0: बॉडी, जैसे हम
1: हाँ
0: कॉपर्टी, जब बच्चा नहीं चाहिए तो कॉपर्टी डालते हैं, कॉपर्टी एक्ट्स एज अ फॉरेन बॉडी और बच्चे को इम्प्लांट कर, मतलब एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने से प्रिवेंट करती है, यानी गर्भ निरोधक होता है.
1: बिल्कुल
0: वैसे ही अगर फाइब्रॉइड जो है, अगर यूट्रस के कैविटी के अंदर है, जिसको हम पॉलिप बोलते हैं या
1: हाँ
0: सबम्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं, तो उसके कारण बच्चा नहीं होने का कारण हो सकता है, या रिकरेंट अबॉर्शंस भी हो सकते हैं इसके कारण.
1: तो इसलिए सचेत हो जाना चाहिए, और
0: जी
1: जैसे ही हमें लक्षण मिलते
0: जी
1: हैं
0: जी
1: तो डॉक्टर के पास जाकर इसका
0: या
1: इलाज हमें
0: ये
1: करवाना
0: अबॉर्शन का
1: चाहिए।
0: भी कारण बन सकता है,
1: हाँ
0: यानी गर्भ नहीं रुकना, या घड़ी घड़ी डेढ़ महीना 2 महीने में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना, ये भी कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का,
1: जी, तो एक गंभीर समस्या बन
0: बन
1: सकती है।
0: सकती है. बट प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए कैंसर नहीं है,
1: नहीं
0: तो
1: है,
0: डरना नहीं है.
1: हाँ इलाज संभव है इसका।
0: यस, इलाज संभव है, और जरूरी नहीं है कि सब फाइब्रॉइड्स को हमको ट्रीट ही करना है, हम बस उन पर नजर रखें, ऐसा भी कर सकते हैं.
1: जी, तो चलिए गीत सुन लेते हैं।
0: जी,
1: बताइए,
0: आपकी नजरों ने समझा प्यार
1: प्यार
0: के
1: के काबिल
0: काबिल मुझे.
1: मुझे, बहुत सुंदर गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है अनपढ़।

सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पीसीओडी और आईवीएफ। इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की

बात चीत का पहला भाग, इस बात चीत का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला मनीषा सिंह का, तकनीकी सहयोग दिया अनुश्री गुप्ता ने, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा साया साथ होगा।
0: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

102.7 एफएम पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

स्वागत है आप सभी युवा दोस्तों का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। और आज का ये अंक प्रस्तुत कर रही है आपकी रेडियो वाली साथी प्रीति सिन्हा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने खान पान और अपने दिनचर्या में संतुलन बनाकर अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आइए अब बिना देर किए चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर और जानते हैं क्या है विशेष आज के दिन यानी 28 सितंबर को। दोस्तों, आज के दिन यानी 28 सितंबर को हम मना रहे हैं शहीद भगत सिंह की जयंती। तो आइए आपको बताते हैं इनके बारे में कुछ खास बातें। 28 सितंबर को भारत के महान क्रांतिकारी, देशभक्त और युवा प्रेरणा स्रोत शहीद ए आजम भगत सिंह की जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह ने बहुत कम उम्र में देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका साहस, देश प्रेम और बलिदान आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भगत सिंह का परिवार देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। उनके पिता और चाचा स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। बचपन से ही उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार देखे और देश को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया।

जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्हें क्रांति के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। दोस्तों, भगत सिंह का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की बात करें तो भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाई। उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं में लाला लाजपत राय की मृत्यु के विरोध में ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स की हत्या, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंककर अंग्रेजी शासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराना और अदालत में अपने विचारों से युवाओं को स्वतंत्रता और देशभक्ति का संदेश देना है। दोस्तों, उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि अंग्रेजी सरकार तक भारतीयों की आवाज पहुंचाना था। भगत सिंह केवल क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक विचारक और लेखक भी थे। उनका मानना था कि देश की आजादी के साथ समाज में समानता, शिक्षा और न्याय भी आवश्यक है। वे युवाओं से जागरूक, साहसी और जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान करते थे। उनका प्रसिद्ध नारा आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है, वो है इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह का जीवन हमें सिखाता है कि देश प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्म, ईमानदारी और जिम्मेदारी से प्रकट होता है। आज के युवा शिक्षा, मेहनत, अनुशासन और समाज सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। उस समय भगत सिंह की आयु केवल 23 वर्ष थी। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर हो गया। भगत सिंह केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक हैं। उनकी जयंती हमें देश के प्रति कर्तव्य, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी युवा दोस्तों का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में, जिसे आप सुनते हैं प्रतिदिन शाम 5 बजे आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से 102.7 FM पर। आइए दोस्तों, आइए अब चलते हैं अपनी अगली चर्चा की ओर, और आज की चर्चा का विषय है मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी। दोस्तों, आज का भारत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। स्मार्ट सिटी, डिजिटल सुविधाएं और आधुनिक बुनियादी ढांचा हमारे शहरों को उनकी पहचान दिला रहा है। लेकिन किसी भी शहर की असली सुंदरता केवल बड़ी इमारतें और चौड़ी चौड़ी सड़कें

0: नहीं बल्कि वहां रहने वाले नागरिकों की जिम्मेदारी और जागरूकता से बनती है। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी केवल एक नारा नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य और संकल्प है। जिस शहर में हम रहते हैं वही हमारी पहचान बनता है। उसकी स्वच्छता, हरियाली, यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक स्थानों की स्थिति हमारे व्यवहार को दर्शाती है। यदि हर नागरिक अपने शहर को अपना घर समझकर उसकी देखभाल करे तो शहर अपने आप सुंदर और विकसित बन जाएगा। तो दोस्तों, एक अच्छे नागरिक के रूप में हमारी कई सारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न फैलाएं, कूड़े को निर्धारित डस्टबिन में डालें और गीले सूखे कचरे को अलग करें, पानी और बिजली की बचत करें, यातायात नियमों का पालन करें और हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें, पेड़ लगाएं और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में योगदान दें, सार्वजनिक संपत्ति जैसे सड़क, बस स्टॉप और सरकारी भवनों की रक्षा करें। दोस्तों, स्वच्छ शहर में बीमारियां कम फैलती हैं और लोगों का जीवन बेहतर होता है। साफ सड़कें, स्वच्छ नालियां और हरियाली वाला वातावरण स्वास्थ्य और खुशहाली दोनों को बढ़ावा देता है। स्वच्छता केवल सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की भागीदारी से ही संभव है। ऐसे में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। युवा समाज में बदलाव लाने की सबसे बड़ी शक्ति हैं। वे स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, यातायात जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यक्रमों में भाग लेकर दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से सकारात्मक संदेश फैलाकर भी शहर को बेहतर बनाने में योगदान दिया जा सकता है।
1: सत्यनिष्ठा अपनाएं, भ्रष्टाचार मिटाएं, मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। सत्यनिष्ठा से समृद्ध NTPC रिहंद द्वारा आयोजित त्रैमासिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनहित में प्रसारित।
0: दोस्तों, आज 28 सितंबर को हम मना रहे हैं विश्व रेबीज दिवस, जिसके बारे में आप सभी को जागरूक होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, प्रतिवर्ष 28 सितंबर को पूरे विश्व में विश्व रेबीज दिवस यानी वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना, समय पर टीकाकरण का महत्व बताना और इस बीमारी से होने वाली मौतों को रोकना है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि थोड़ी सी सावधानी और समय पर उपचार से रेबीज से बचना संभव है। दोस्तों, रेबीज एक गंभीर वायरल बीमारी है जो संक्रमित जानवर के काटने, खरोचने या उसकी लार के संपर्क में आने से फैल सकती है। ये बीमारी मुख्य रूप से कुत्तों के काटने से फैलती है, लेकिन बिल्ली, बंदर, लोमड़ी और चमगादड़ जैसे संक्रमित जानवर भी इसका कारण बन सकते हैं। यदि समय पर उपचार न मिले तो ये बीमारी जानलेवा हो सकती है। आपको रेबीज के लक्षण जानना बेहद जरूरी है। रेबीज के लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते, कुछ दिनों बाद या सप्ताह बाद ये लक्षण उभर कर सामने आ सकते हैं, जैसे काटे गए स्थान पर दर्द या झुंझुनी, बुखार और सिरदर्द, बेचैनी और घबराहट, पानी पीने में कठिनाई यानी हाइड्रोफोबिया, निगलने में परेशानी और मांसपेशियों में ऐठन होना। दोस्तों, रेबीज से बचने के लिए क्या उपाय हैं ये भी आप जान लीजिए। पालतू कुत्तों और बिल्लियों का नियमित टीकाकरण कराएं। किसी भी आवारा या अज्ञात जानवर से दूरी बनाए रखें। जानवर के काटने या खरोचने पर घाव को 15 मिनट तक साबुन और बहते पानी से अच्छे से धोएं। घाव पर घरेलू नुस्खे या मिट्टी तेल या मिर्च जैसी चीजें न लगाएं। तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य

आइए अब आपको बताते हैं क्या खास है आज के दिन। दोस्तों आज है स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती, जो कि भारत की अमर आवाज हैं। आइए इनके बारे में बातें करते हैं कुछ खास। 28 सितंबर भारत की महान गायिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जन्मतिथि है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। अपनी मधुर सुरीली और भावपूर्ण आवाज से उन्होंने भारतीय संगीत को विश्व भर में नई पहचान दिलाई। दोस्तों लता जी केवल एक गायिका नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और संगीत जगत की अमूल्य धरोहर थी। लता मंगेशकर के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर प्रसिद्ध संगीतकार और रंगमंच कलाकार थे। बचपन से ही लता जी को संगीत का वातावरण मिला। बहुत कम उम्र में उन्होंने गायन की शुरुआत की और कठिन परिस्थितियों में अपने परिवार की जिम्मेदारी भी संभाली। उनकी मेहनत, लगन और प्रतिभा ने उन्हें संगीत की दुनिया की सबसे ऊंची पहचान दिलाई। लता मंगेशकर ने हिंदी के साथ साथ मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, भोजपुरी, पंजाबी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में हजारों गीत गाए। उनका गायन भक्ति, प्रेम, देशभक्ति और शास्त्रीय संगीत सभी विधाओं में समान रूप से लोकप्रिय रहा। दोस्तों उनके कुछ सदाबहार गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और साथ ही रेडियो की जान भी हैं। उनकी आवाज ने कई पीढ़ियों को संगीत से जोड़ा और भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी। लता मंगेशकर को संगीत जगत में उनके अद्वितीय योगदान के लिए अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार। इन सम्मानों ने उनके संगीत योगदान को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर मान्यता दी। दोस्तों लता जी अपने सादगी, अनुशासन और विनम्र स्वभाव के लिए आज भी जानी जाती थी। उन्होंने संगीत को पूजा माना और पूरी निष्ठा के साथ जीवन भर भारतीय संगीत की सेवा की। उनकी आवाज में भावनाओं की ऐसी मिठास थी जिसने करोड़ों लोगों को दिलों को छू लिया। दोस्तों लता मंगेशकर का जीवन हमें यही सिखाता है कि प्रतिभा के साथ साथ निरंतर अभ्यास, मेहनत और समर्पण सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। उन्होंने अपने जीवन से ये सिद्ध किया कि सच्ची लगन से हर सपना पूरा किया जा सकता है।

दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये आज का अंक अब यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी अगले अंक में और उम्मीद है आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। अब दीजिए अनुमति अपने रेडियो वाली साथी प्रीति सिन्हा को कार्यक्रम युववाणी समाप्त करने की। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी 102.7 FM पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

बहनों नमस्कार। फूलों की खुशबू और अपनों का प्यार लेकर आई हूँ मैं अर्चना, आप सबके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। बहनों स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। बहनों आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि शादी के बाद ही एक लड़की के नए जीवन की शुरुआत होती है और उसमें नए नए रिश्ते, नई उमंग, नए उल्लास के साथ जब एक लड़की नए घर में कदम रखती है तो एक ओर जहाँ परिवार वालों के लिए नई बहू के आने की खुशी होती है, वहीं लड़की भी एक नई उमंग के साथ नए घर में प्रवेश करती है। एक नए घर का सबसे खास रिश्ता जो कि घर की नींव होता है, वो पता है बहनों कौन सा होता है? बिल्कुल बहनों, सास और बहू का रिश्ता। कहते हैं ना कि इस रिश्ते की दौर यदि प्यार से बधी हो तो पूरा परिवार एक माला की तरह खिल उठता है। बहनों इस रिश्ते को मजबूत बनाने में और सास बहू और परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग अति आवश्यक है। और सासू माँ को चाहिए कि वो बहू को बेटी की तरह समझाए और बहू को भी चाहिए कि माँ को सासू माँ की तरह समझे, यानी उसकी हर बात को माने और अपनी जिम्मेदारियों को यदि दोनों ही समझने लगे तो रिश्ते देखिए बहुत हद तक खुशियों से भर जाते हैं। मैं मानती हूँ कि इस रिश्ते में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती है, पर बहनों इस छोटी मोटी नोकझोंक को हमें नज़रअंदाज करना चाहिए। यदि सासू माँ कुछ सही बात बोल रही हैं तो बहुओं को भी चाहिए कि उनकी बात को सुने, और बहू यदि कोई बात कह रही हैं और सासू माँ को नहीं समझ पा रही हैं तो जब वो गुस्से में ना हो, शांत स्वभाव में हो, तो वो अपनी बात को समझाने की कोशिश करें। आखिर वो भी आपकी माँ है, वो जरूर समझेंगी आपकी भावनाओं को और आपकी भावनाओं की कद्र भी करेंगी। और सबसे खास बात है बहनों कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने में ही असली खुशी है। बहू को चाहिए कि वो बच्चा बनकर सासू माँ के साथ रहे, और सासू माँ को भी नए बच्चे की तरह बहू को हर बात को समझाना चाहिए, उसे कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ख़ास तौर से उसके मायके वालों का तो बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। मनु पता है ये बातें होती तो बहुत छोटी छोटी हैं, पर यही छोटी छोटी बातें रिश्तों में कब दूरी बना देती है ना, पता ही नहीं चलता। इसलिए बहनों हमें बिल्कुल निश्चल स्वभाव से यदि हम हर रिश्ते को की डोर को निभाएंगे ना, तो जाहिर सी बात है कि हर रिश्ते में प्रेम होगा। और ऐसा थोड़ी है कि जब एक लड़की मायके में होती है तो किसी से वाद विवाद नहीं होता है, बिल्कुल होता है, जाहिर सी बात है। दो लोग जहाँ रहेंगे छोटी मोटी बातचीत होती है, लेकिन जहाँ भी अपनी गलती हो एक दूसरे को जरूर मान लेना चाहिए, चाहे वो सासू माँ हो, चाहे वो बहू हो, और घर के सभी सदस्यों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए ताकि रिश्तों की मर्यादा बनी रहे। और बहनों सबसे खास बात है कि रिश्ते की दौर को जो आहिस्ता आहिस्ता निभाते हैं ना, वो हर मुश्किल को बड़ी खुशी से हल कर लेते हैं। और बहनों इस रिश्तों को निभाने के लिए एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना अति आवश्यक है। बहनों ये दिलों के रिश्ते ना बहुत प्यारे होते हैं, और बहनों जीवन का बहुत खास पहलू होता है कभी खुशी कभी गम।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बनो, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम बातचीत कर रहे थे रिश्तों की डोर के बारे में। तो बहनों, ये रिश्तों की डोर ना तभी संभलती है जब हम दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं, उनकी तकलीफों को समझते हैं, उनके दर्द को समझते हैं। बहनों, ये दिल जो है ना वो बहुत नाजुक होता है, जो हमेशा अपने अपनों की धड़कन बनकर धड़कता है। अक्सर हम परिवार की सेवा में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद की सेहत को भूल ही जाते हैं। पर बहनों, पता है बहुत हद तक हृदय ये हमारा बहुत हद तक नाजुक होता है, और कब धीरे धीरे तनाव में आते आते ये दिल की बीमारी के करीब आ जाता है हमें पता ही नहीं चलता। कारण डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, अनियमित दिनचर्या हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन जाता है। बहनों, हमें किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहिए, बहुत संभाल कर रखना चाहिए। तो बहनों, हम अपने हृदय को कैसे संभालें, चलिए जानते हैं डॉक्टर AK यादव जी से, जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और हमें बता रहे हैं हृदय रोग कारण, लक्षण और बचाव के बारे में। और उनसे बातचीत कर रही हैं बबीता बत्रा जी।
4: हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है हृदय। अगर ये सही है तो आपके चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रहेगी। लेकिन आज दुनिया भर में हृदय रोग के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गलत खान पान, हर वक्त तनाव में रहना और समय पर एक्सरसाइज न करना, जिस वजह से बीमारी बढ़ रही है। दिल की बीमारी होने के कारण, लक्षण और बचाव क्या हैं, ये सब जानने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक यादव जी, जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार।
5: नमस्ते मैडम जी।
4: आज हम आपसे दिल की बीमारी से संबंधित ही बात करेंगे।
5: जी, आज जैसा कि जानते हैं आप लोग कि आज विश्व हृदय दिवस है।
4: जी,
5: इस विषय पे आज हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत यहाँ पे बात कर रहे हैं
4: जी,
5: कि कैसे दिल की बीमारियों से बचा जाए और किस तरह से खान पान रखा जाए, और दिल की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कैसे आती हैं और किस तरह से इनसे बचने के तरीके हम आपको यहाँ पे बताएंगे।
4: जी, लोगों को जागरूक करना है। तो सबसे पहला प्रश्न रहेगा डॉक्टर साहब मेरा ये कि ये बताइए कि दिल की बीमारी किन कारणों से होती है और किस उम्र में ज्यादा होती है।
5: जी, दिल की बीमारी के जो मुख्य कारण है, जैसे अनियमित आहार
4: जी,
5: और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, और जंक फूड लेना, बहुत अत्यधिक मसालेदार भोजन लेना, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, बीड़ी सिगरेट, टोबैको लेते हैं लोग
4: जी,
5: और हाई कोलेस्ट्रॉल हो, डायबिटीज हो, और कोई फैमिली हिस्ट्री भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है कि बहुत
4: अच्छा।
5: यदि माँ बाप को या पहले किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो उससे भी दिल की बीमारियां होती हैं आगे चल के।
4: अच्छा, किसी को पहले से है तो आगे भी जनरेशन में हो सकती है।
5: जी जी।
4: अच्छा, तो वैसे ये किस उम्र में ज्यादा होती है, ऐसा भी कुछ है?
5: हाँ, इनमें वैसे तो जनरली जो है 45 साल की उम्र जब हो जाती है मेल में, और फीमेल में 55 साल के बाद
4: जी,
5: इसमें ज्यादा बीमारियां होती हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, ये सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब कम उम्र में भी दिल की बीमारियां लोगों को होने लगी हैं, और इधर अपने एशियन जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पे तो कम उम्र में ज्यादा 35, 40, 45, कभी कभी तो 20 और 25 साल पे भी ये बीमारियां आजकल देखी जा रही हैं।
4: हाँ, इतना टेंशन है, खान पान ठीक है नहीं
5: जी,
4: उन सब वजह से, मतलब युवा अवस्था में भी ये होने की संभावना है। तो मेरा दूसरा सवाल है कि हार्ट अटैक जब आ जाता है तो घर में रहकर कैसे पता चलेगा कि ये अटैक है? समझ ही नहीं आता है, थोड़ा पसीना आया कुछ हुआ, उस समय तक तो समझ ही नहीं आता है कि ये अटैक है, तो क्या किया जाए उस समय?
5: जी, जब हार्ट अटैक आता है तो पहला सिम्टम, तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है, वो सीने में दर्द होता है, जो रिक्टो स्टर्नल चेस्ट के बीचों बीच दर्द होता है, और ये स्क्वीजिंग टाइप का होता है, जैसे कि एकदम मरोड़ के साथ, और एक प्रेशर टाइप का होता है दर्द, और सीने का दर्द बांह में फैलने लगता है, जनरली बाएं बांह में जाता है, कभी कभी दाहिने में भी हो सकता है।
4: अच्छा।
5: और ये दर्द जबड़ों में चला जाता है, ऊपर तक आपके जाता है, और पीठ में भी ये दर्द होता है, और पेट के ऊपरी भाग जैसे अम्बिलिकस जो है नाभि के ऊपर, ये दर्द भी हो सकता है, साथ में दर्द, घबराहट होती है, पसीना होता है, कमजोरी होने लगती है, अचानक सांस फूलने लगती है। इस स्थिति में हमें बिल्कुल शांत रहना है और धीमी और गहरी सांस लेना है और बिल्कुल बेड रेस्ट हो जाना चाहिए और तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं। और शुरू के जो एक घंटे होते हैं इसको गोल्डन आवर कहा जाता है। यदि शुरू के एक घंटे में डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में पेशेंट पहुंच जाए तो उसकी जो है कि जान बचने में बहुत ही आसानी हो जाती है और उसके कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ही मिनिमल होते हैं।
4: मतलब जल्दी से जल्दी हमें डॉक्टर के पास पहुंचना है,
5: के पास जाना होगा,
4: और उस समय कुछ नहीं समझ में आए तो बिल्कुल सीधे लेट जाना चाहिए।
5: सीधे लेट जाना चाहिए, बिल्कुल चलना फिरना बिल्कुल मना है, क्योंकि जितनी चलेंगे फिरेंगे उतनी ऑक्सीजन डिमांड हार्ट की जो है बढ़ जाएगी और उसमें इस्चिमिया और ज्यादा होगा।
4: अच्छा, वही समझ नहीं आता है उस समय कि ये अटैक है, कई बार लगता है कि गैस हो रही है। तो ये अटैक आने के बाद जब मरीज ठीक हो जाए तो उसके बाद क्या सावधानियां रखनी चाहिए? कि एक बार हो गया कि एक अटैक आया था ऐसे सुनने में आता है, तो उसके बाद सावधानियां क्या रखी जाए?
5: जी, यदि एक अटैक आ गया तो ये आपको मालूम हो गया तो डॉक्टर दवाएं जो देते हैं वो नियमित दवाइयां लेना चाहिए। इस दवा में कोई गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो खून पतला करने वाली दवाइयां जो डॉक्टर देते हैं या लिपिड कोलेस्ट्रॉल जो है, तो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना है, शुगर को नियंत्रित करना है, धूम्रपान बिल्कुल बंद कर देना है, आपको शराब का सेवन नहीं करना है, और लगभग 3 हफ्ते तक तो बिल्कुल कोई फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज नहीं करना है, शुगर, साल्ट, फैट ये सब कम लेना है।
4: अच्छा, ये सब सावधानियां हमें मतलब रखनी है।
5: जी,
4: और ये जो अचानक से सोते सोते हार्ट फेल हो जाता है कि अच्छा खासा इंसान सोया, रात में खाना खा के पता चला सुबह नहीं है, ऐसे सुनने में आता है कि भाई हार्ट फेल हो गया, ऐसा क्यों होता है और फिर कैसे बचा जाए?
5: सोते सोते जो हार्ट अटैक होता है वैसे तो ये बहुत ही रेयर होता है, सिम्टम के साथ ही जनरली आता है, या कोई पेशेंट या कोई व्यक्ति अलग कमरे में सोया हुआ है और रात में हार्ट अटैक आया और इतना पेन हुआ कि अगल बगल जो है वो थोड़ा बहुत चिल्लाया, नहीं भी चिल्लाया, पसीना आया, घबराहट हुई, जितने सिम्टम हमने ऊपर बताए वो सब सिम्टम तो आते ही आते हैं।
4: जी जी,
5: उसके बाद ही जो है कि पेशेंट का जो है कि सडन कार्डियक डेथ होती है। लेकिन कुछ ऐसे जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं, जैसे ESCN5 से जीन होता है, यदि ये जेनेटिकली नहीं होता है तो शुरुआत से तो ऐसे पेशेंट में जो है स्लीप के दौरान ही पेशेंट एक्सपायर कर जाता है और पता भी नहीं चलता कि हार्ट अटैक कब आया। ये एक प्रकार का ब्रुगाडा सिंड्रोम होता है।
4: अच्छा।
5: इसमें ये कंडीशन होती है, लेकिन बहुत ही रेयर कंडीशन है।
4: जी, तो एक सेहतमंद दिल के लिए जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, आप बताइए?
5: ऐसे दिल की बीमारियों से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि को नियमित भोजन लेना है, पौष्टिक आहार जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा लेने हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करना है कम से कम 30 मिनट, साल्ट कम लेना है, फैट कम लेना है, शुगर कम लेना है, स्ट्रेस से बचना है, स्मोकिंग नहीं करनी है। तो इस तरह से एक स्वस्थ जीवन शैली अपना करके हार्ट की बीमारियों से बचा जा सकता है। हार्ट क्या, लगभग सभी बीमारियों का यही एक मूल मंत्र है।
4: जी,
5: इस तरह के भोजन,
4: नमक कम, चीनी कम, एक्सरसाइज डेली करते रहें,
5: शरीर का वजन बिल्कुल नहीं बढ़ने देना है, बीमारी बिल्कुल कंट्रोल में रखनी है।
4: बिल्कुल। और ये ओपन हार्ट सर्जरी, जिसके नाम से ही एक डर लग जाता है सुन के, ये कब कराने की जरूरत पड़ जाती है?
5: ठीक है, ऐसा है, ओपन हार्ट सर्जरी जितना सुनने में अटपटा है और उतना ही ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ही है।
4: जी,
5: बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसको एक कार्डियोथोरेसिक सर्जन अंजाम देते हैं। जब आपके जैसे हार्ट में 3 तरह की मेन आर्टरी होती है, जैसे लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी, ये 3 आर्टरी होती हैं जो हार्ट को ही मेनली सप्लाई करती हैं। यदि इनमें 2 या 3 ब्लॉकेज हो जाए तो उस कंडीशन में फिर हमारे पास दवाएं और स्टेंट की उतनी वैल्यू नहीं रह जाती है।
6: अच्छा।
5: तो इसमें ओपन
6: जी
5: इसमें क्या करते हैं कि जो आर्टरी ब्लॉक रहती है वहाँ पे किसी दूसरी जगह से आर्टरी या वेन लेके, जैसे कि आपके पैर में, हाथ में या पेट से जो आर्टरी वेन निकालते हैं
6: जी।
5: और कोरोनरी आर्टरी में उसको लगाते हैं
6: जी।
5: ये कहने में तो बहुत इजी है
6: हाँ।
5: लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है।
6: बिल्कुल।
5: इसमें क्या होता है, जैसे जनरल सर्जन होता है पेट को चीर करके अपना जो पेट की एक्टिविटी सर्जरी करता है, इसमें क्या है सीने के बीचों बीच एक आरी, इलेक्ट्रिक आरी होती है, उसके बीच में चीरा लगा करके वो बिल्कुल हार्ट को ओपन करते हैं और लंग्स को और हार्ट के लिए एक लंग हार्ट मशीन होती है
6: अच्छा
5: उस पे रखते हैं और हार्ट को बिल्कुल शांत करके मशीन से ब्लड सप्लाई चलती रहती है
6: जी।
5: और इसमें जनरल एनेस्थीसिया वेंटिलेटर की जरूरत होती है और 3-4 यूनिट ब्लड की व्यवस्था की जाती है
6: अच्छा।
5: और काफी महंगा और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक सर्जरी होती है जिससे जीवन रक्षक सर्जरी होती है
6: जी। आप बता ही रहे हैं तभी घबराहट इतनी हो रही है जो कराता होगा सच में वाकई ये बहुत ही मुश्किल है। ये सब सर्जरी की नौबत ही ना आए डॉक्टर साहब तो हार्ट सही काम करता रहे, इससे बचने की क्या उपाय हैं?
5: बस जैसे कि हम लोग आपस में बात कर ही रहे हैं कि जितनी हेल्दी लाइफ स्टाइल आप जियोगे, पौष्टिक आहार, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एक्सरसाइज, स्टॉप स्मोकिंग, स्ट्रेस को घटाना है, साल्ट, फैट, शुगर ये सब कम करके और एक अच्छी जीवन शैली व्यतीत करके हम हार्ट की सर्जरी या हार्ट की दवाओं से बच सकते हैं और इसमें जीवन व्यतीत कर सकते हैं।
6: डॉक्टर अशोक यादव जी, आज समय निकालकर आपने हृदय रोग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: धन्यवाद।
3: बहनों अभी हम लोगों ने भेंट वार्ता सुनी हृदय रोग कारण, लक्षण और बचाव, और भेंट वार्ताकार थी जो कि हृदय रोग विशेष

विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एके यादव जी और उनसे बातचीत कर रही थी बबीता बत्रा जी। तो बहनों, हम सभी को अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए और उसका का किस तरह से हम रख सकते हैं इसके बारे में तो डॉक्टर साहब ने हमें बताया ही, तो इनके लिए इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहनों, एक बार हम फिर से चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं इस गीत को।

बहनो, रिश्तों में प्रेम हो, सही खान पान हो और तो जीवन की आधी समस्याएं तो यूं ही समाप्त हो जाती हैं। बहनो, आपके रिश्तों की ये महक सदा यूं ही बनी रहे, अपनों के प्यार की छांव हरदम बनी रहे आप पर, मुस्कुराहटें आपके चेहरे से कभी न जाएं, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ मैं आपकी रेडियो सखी अर्चना। नमस्कार।

अभी बहने सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओपरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से चयनित 1375 ग्राम पंचायत अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल भेने। यह मौका पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री कहने कि विकसित भारत का सपना तब्बे साकार हुई जब उत्तर प्रदेश विकसित हुई।
2: और उत्तर प्रदेश विकसित तब होगा जब ग्राम पंचायत की इकाई आत्मनिर्भर और विकसित होगी। उस विकसित परिकल्पना को, आत्मनिर्भर और विकसित होने की परिकल्पना को साकार करने के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं, सबसे महत्वपूर्ण सारथी बनने जा रहे हैं और इसलिए 1375 विकसित भारत के सारथी के रूप में आपकी इस भूमिका के लिए, यूपी गवर्नमेंट का हिस्सा बनने के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपके अभिभावकों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
1: सर्वोच्च न्यायालय 2000 रुपया से बेसी के यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू कैले के केंद्र सरकार के फैसला पर रोक लगौले से मिनहा कह दिले हो। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होके के बाद यह मामला में न्यायालय केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक का और प्रतिवादियों से जवाब मंगले हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 बरिस पूरा कर रहा हमें। उनकर जतरा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प आ लगतारे जनसेवा के भावना से प्रेरित रहल हो। यही सेवा और सुशासन के सोच के साथ सरकार बरिस 2047 ले विकसित भारत के लक्ष्य के दिशा में कार्य कर रहा हो। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जिंदगी में बदलाव ले आइले के कोशिश कैल जा रहा बा। एक खास श्रृंखला में आज हमने के बात करब कि तीन तलाक कानून कैसे मुस्लिम महिला लोगों के जिंदगी में बदलाव ले आइले में मदद कर रहा हो।
3: तीन तलाक की प्रथा से प्रभावित मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया। इस कानून के तहत तत्काल तीन तलाक को गैर कानूनी और दंडनीय बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये कानून संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
4: भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब अम्बेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया।
3: मुस्लिम मामलों के विशेषज्ञ रजा रिजवी का कहना है कि तीन तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
5: ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है बल्कि महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा।
3: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम ने उन महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा का प्रावधान किया है जो तीन तलाक की स्थिति में सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण अपनी बात सामने नहीं रख पाती थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस घोषणा कैले हो कि आज से शुरू होखे वाला 3 दिन का राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल रोक दिहल गइल बा। ये निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथे भयल समझौता के बाद लिहल गइल। एगो सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन कहलस कि निर्णय बीतल रात भारतीय बैंक संघ आ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से जुड़ल मुद्दन पर भयल बैठकी के बाद लिहल गइल। मौसम विभाग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिहने ले, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में 30 सितंबर ले कहीं कहीं बरखा चाहे गरज चमक के साथ बौछार पड़ले का ढेर संभावना जतौले हो। यह बीचे पछिला दिनन में भइल बरखा से प्रदेश के कई जिलन में बाढ़ जैसन हालत बने लागल बा।
3: घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। चित्रकूट जिले में मंदाकिनी नदी और कुशीनगर में गंडक नदी भी तबाही मचा रही है। तीन दिनों की भीषण बारिश के बाद 8 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: हमारे कुशीनगर प्रतिनिधि बताने कि नेपाल के पहाड़ियन में हो रहा बरखा वाल्मीकि नगर बैराज से लगता रहे पानी छोड़ेले के नाते ओजा के खड्डा इलाका के कई गांवन में बाढ़ का हालत पैदा हो गई बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।

102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हो रहे हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। उससे पहले खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुज पुत्र गोरालाल निवासी ग्राम खिरीहटा थाना घोरावल जनपद सोनभद्र जो दिनांक 25 अगस्त 2015 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है, उम्र 22 वर्ष, लंबाई 162.5 सेंटीमीटर, सांवला रंग, लंबा चेहरा, इकहरा बदन तथा मंद बुद्धि, पहनावा जीन्स पैंट चेकदार शर्ट तथा पैर में जूता। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई।

आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर में यानी शाम 6:10 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। शाम 6:50 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और शाम 7:05 पर लोकगीत का कार्यक्रम। और आज के कलाकार हैं परशुराम और इनके साथी। शाम 7:31 पर कार्यक्रम होगा सबरस का और रात्रि 8:00 और 8:30 पर गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम होगा पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कवि गोष्ठी। इसमें प्रतिभागी कवि होंगे रचना तिवारी, अब्दुल हई और ईश्वर विरागी। संचालन होगा सुनील कुमार तिवारी का।

तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। शाम के 6:10 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब
1: सब
0: पंचन
1: पंचन
0: के
1: के राम
0: राम राम।
1: राम। चलो भैया आपो के राम
0: जलेबी
1: राम।
0: हो जी, आपको के राम राम। और देखो हमारे का पंचायती एकदम समय से जुड़ गई बा, और पंचायती में ही चर्चा जरूरी बा कि अपने दैनिक कार्य और व्यवहार खातिर जन बा जागरूकता कितना जरूरी होला। और
1: बिल्कुल
0: हाल में देखा जौन तेज बरखा उस गांव शहर में आम जनजीवन उसे काफी अस्त व्यस्त हो गए रहे। जगह जगह पे पानी भरला से लोगन के आवे जाए में और बहुत परेशानी होत रहा। ये बरखा के असर खाली इंसान पे नहीं बल्कि पशु पक्षी सब पर पड़ रहा है।
1: ओ देखा एकदम सही कहला। चलो भैया और खास करके ना जवन सड़की पर मवेशी ऐसे ही छुटल हमान जैसे कुकुरा मान ला, तो कुकुरन के सामने भी अपन खाना पीना नहीं मिलत बा, सुरक्षित जो ठिकाना रहल
0: कोई समस्या बढ़
1: बैठे के
0: गया
1: ओकर समस्या बढ़ गई। अब
0: बिल्कुल।
1: देखा भीजल सड़क कीचड़ और लगातार बरखा से ई बेजुबान जीव बहुत कष्ट झेलत बाड़न ना।
0: सही कहते हैं
1: कई कभी कभी तो देखा इन लोगन के खाए के नहीं मिलत बा और
0: बिल्कुल।
1: भूख के कारण आप जनबे करेला कि हमहन के मन चिड़चिड़ा जाला, तो एन तो समझा कुकुर कुकुराए होलन। और ऐसने स्थिति में हम सबके सावधानी बरते के जरूरी बा कि
0: बिल्कुल,
1: ऐसन कोनो भूख से आक्रामक मतलब कि
0: जौन भी
1: गुस्सैल
0: पशु रहे उनसे बच के
1: हाँ
0: रहे थोड़ा।
1: कैसे दूरी बना के रहल जाए।
0: बिल्कुल, घायल और बीमार कुकुर या कोई भी जानवर अगर दिखाई दे तो ओकरा पे पत्थर मारल से या परेशान करे के बजाय जनबा स्थानीय पशु सेवा संस्थान से संपर्क करके उनके वहां तक पहुंचावे के व्यवस्था भी करे के चाहिए। और बरखा के एक कठिन समय में इंसान और बेजुमान दोनों के प्रति जनबा संवेदना और जिम्मेदारी दिखावे के जरूरत बा हमन के। और देखा
1: बिल्कुल
0: जलेबी बाबूजी, हमन आखिर सुरक्षित समाज वह होला जहाँ इंसान के साथे साथे बेजुबान जीव जंतु के भी जीवन के सम्मान मिलेला।
1: देखा चाहे जानवर होए चाहे इंसान होए सबसे पहले हम लोगन में एक मानवता रहे के चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और देखा मानवता की अगर बात हम लोगन करी तो हम लोगन के जागरूकता बढ़ावे खातिर साल में कोनो न कोनो दिन कोनो विशेष दिवस के रूप में मनावल
0: मनावल जाला
1: जाला।
0: बिल्कुल सही
1: अब
0: कहे।
1: देखा आज हो विश्व रेबीज दिवस है ना, एकर भी उद्देश्य यह होला कि लोगन के अंदर रेबीज के प्रति जागरूकता बढ़े। रेबीज देखा एक ऐसा बीमारी है, गंभीर बीमारी है जे संक्रमित जानवर के काटे या लार के संपर्क से इंसान तक पहुंचेला।
0: बिल्कुल
1: कुकुर के काटला के मामला में लापरवाही कइल समझा जान
0: जानलेवा
1: बपन
0: साबित हो
1: जाला।
0: सकेला। बिल्कुल सही
1: बिल्कुल
0: कहते हैं।
1: ऐसा कुकुर या कोनो संदिग्ध जानवर काटला पर घाव के तुरंत साबुन से साफ करके अच्छी तरह धोवल जरूरी बा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। ओकरे बाद बिना देरी कइले जनबा स्वास्थ्य केंद्र पे पहुंच के चिकित्सीय सलाह लेवे के चाही। और रेबीज से बचाव खातिर पालतू कुकुरन के समय समय पर टीका भी लगावल बहुत जरूरी बा। आवारा कुकुरन के या टीकाकरण के या नक्शबंदी के माध्यम से भी रेबीज पे नियंत्रण में मदद मिल सकेला। और जानवरन के मारल या भगावल समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो, सही जानकारी टीकाकरण और जिम्मेदार व्यवहार जनबा उसे जनबा रेबीज के खतरा कम कैल जा सकेला।
1: बिल्कुल सही कहला। और देखा आज विश्व रेबीज दिवस पर यह संदेश बा कि जानकारी अपनाई सावधानी बरती और रेबीज के बचाव के प्रति जागरूक
0: जागरूक
1: रही।
0: रहे बिल्कुल सही।
1: बरखा के मौसम में सड़क पर रहे वाला कुकुर आ दूसरा पशु पक्षियों से परेशानी और बढ़ जाला। भूख डर और असुरक्षा के कारण कोनो जानवर असामान्य व्यवहार कर
0: कर
1: सकेला,
0: सकेला।
1: आक्रामक हो सकेला, तो ऐसा स्थिति में अनजान या संदिग्ध कुकुर से दूरी बनवल रखे के जरूरी बा।
0: बिल्कुल। और खासकर बच्चों के अकेले जनबा इसने जानवरन के नजदीक जाए से रोके के चाही। और अगर कोई जानवर अगर काट ले उसके काटे के घटना हो तो उसके छोट बात न समझिए, नजरअंदाज न करें बल्कि समय पर जनबा इलाज करा करके चिकित्सीय सलाह लेकर के रेबीज के बचाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभावे के चाहिए। साथे
1: बिल्कुल
0: साथ जन पालतू पशु हुन उनके नियमित टीकाकरण करावल और पशुपालक के जिम्मेदारी समझे के चाहिए उनके।
1: बिल्कुल देखा समाज में पशु प्रेम के साथे पशु सुरक्षा और जन सुरक्षा के संतुलन बनावल बहुत जरूरी बा।
0: बिल्कुल
1: प्रशासन पशु चिकित्सा विभाग और आम जनता मिलके जागरूकता बढ़ाई तो रेबीज पर नियंत्रण जरूर पायल जा सकेला।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हमहन के विश्व रेबीज दिवस पर ई संकल्प लेवे के चाहिए कि न डर फैलाई न लापरवाही करी बल्कि जागरूकता और जिम्मेदारी से इंसान और बेजुबान दोनों के सुरक्षित रखल जाए।
0: बिल्कुल देखा हमन का बात बत कही तो होत रही जलेबी भौजी, लेकिन आज के अपने पंचायती में सोनभद्र के जिला चिकित्सालय का चिकित्सा अधिकारी महोदय डॉक्टर राजेश कुमार सिंह भैया जुटल बड़न, और रेबीज रोग से बचाव हेतु जागरूकता काहे बदे जरूरी बा ए विषय पर आप ही से बात बत कही हो रहल बा, तो हम तो कहते कि पंच भैया भी देखा एकदम सुने बदे तैयार हुए,
1: तो फिर कौन बात के देरी बात,
0: तो
1: चला
0: बिल्कुल
1: सुनल
0: आपको
1: जाए।
0: शुरू हो जाए बिल्कुल।
2: साथियों, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की प्रथम इकाई हमारा परिवार है। परिवार में तमाम ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ हर उम्र के लोग रहते हैं, और इसी परिवार में हमारे कुछ ऐसे भी सगे होते हैं जो कहने को तो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, फिर भी वो दिल के बहुत अजीज होते हैं। आज के दौर में घर में अपना एक पालतू जानवर रखने का प्रचलन जिस तरह से बढ़ रहा है, उसी तरह से तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए हमें सचेत होना जरूरी है। अगर हम बात करें अपने घरेलू जानवरों की, वह चाहे बिल्ली हो या कुत्ता, वह कितना भी हमसे प्रेम करे, हम उसे स्नेह दें, फिर भी इत्तफाकन अगर वो किसी तरह हमें काट लेते हैं तो स्थिति बहुत खराब हो जाती है। कभी कभी तो गंभीरता इतनी बढ़ जाती है कि वह जानलेवा भी साबित होती है। हमारी बात रेबीज की बीमारी के लिए है। रेबीज एक वायरस है जो कुत्तों के काटने से होता है, जिसका उपचार अगर सही वक्त पर ना हो तो फिर हमें तमाम ऐसे समस्याओं से जूझना पड़ता है। आइए जानते हैं रेबीज नाम की बीमारी क्या है, कैसे इससे बचा जाए। रेबीज ग्रसित व्यक्ति की पहचान, मतलब इसके लक्षण क्या होते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जिला संयुक्त चिकित्सालय लोढ़ी से डॉक्टर राजेश कुमार सिंह MBBS MD परामर्शदाता हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले नमस्कार
3: नमस्कार
2: जी,
3: जी।
2: आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि ये रेबीज है क्या?
3: जी रेबीज एक बीमारी होता है जो पशुओं से इंसान को फैलता है। रेबीज एक तरह का वायरस होता है जो अगर उसको थोड़ा सा साइंटिफिक क्या नाम दिया जाए तो लीसा वायरस टाइप 1 होता है, जो रेप्टोवायरिडी फैमिली का होता है। इसकी सबसे विशेषता ये होता है कि ये एक RNA टाइप का वायरस होता है जो हमारे पशुओं से इंसान को फैलता है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये सीधे जो हमारे मस्तिष्क या ब्रेन पे सीधे इसका जो है आक्रमण होता है, और ये हमारे शरीर में ये न्यूरॉन्स होते हैं जो उसके द्वारा ये पहुंच करके उस पर अटैक करता है। सबसे खास बात ये है कि ये एक बार बीमारी होने के बाद इसका इलाज नहीं होता, इसलिए इसका रोकथाम और बचाव ही मुख्य उपाय।
2: जी, किसी भी प्रतिकूल अवस्था में
3: जी।
2: अपने परिवार के लोगों को या किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे घर का कुत्ता हो या कोई भी कुत्ता, अगर काट लिया
3: जी।

0: जो होता है बिल्लियों से होता है। बाकी अन्य में जैसे हमारे जो जंगली जानवर हो जाते हैं, लोमड़ी हो गया, सियार हो गया, भेड़िया हो गया, और कुछ कुछ जो जंगली बंदर के भी मामले देखे गए हैं, तो
1: जी
0: सबसे
1: जी
0: पहले ये का देखना चाहिए।
1: जी
0: रबीज का महत्व इसलिए मैं पहले भी बताया कि ये एक प्रकार से लीथल डिजीज है। मतलब एक बार अगर बीमारी या वायरस हमारे शरीर में फैल जा रहा है तो फिर हमारे पास कोई ऐसा इलाज नहीं रह पाता है। उसमें मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर लगभग 100% है। तो
1: जी
0: इसलिए इसका बहुत ज्यादा मतलब महत्व है, क्योंकि उससे पहले हम ये भी बात कर ले कि अगर रेबीज, इसीलिए इसकी महत्व को देखते हुए और इससे होने वाले लाखों की संख्या में पीड़ित होने की वजह से हम इसको रेबीज डे के भी में आप भी परिचित होंगी कि हम
1: जी
0: 28 सितंबर को पूरी दुनिया जो है वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में मनाती है। तो जैसे आपने ये पहला क्वेश्चन ये पूछा कि कोई काटने के बाद अगर कोई कुत्ता या बिल्ली जो भी अगर कुत्ते ने आपका काटा है तो एकदम घबराना नहीं चाहिए। तुरंत जो है उसको तुरंत कोई भी खुले हुए नल जो है, टैप वाटर जिसे कहते हैं,
1: जी
0: रनिंग
1: जी
0: वाटर कहते हैं, सीधे कम से कम 10 से 15 मीटर रनिंग वाटर के सामने उसको पूरी तरह वॉश करना चाहिए। उसके
1: जी
0: अलावा अगर आपके पास कम से कम, लोग जनरली बताया जाता है लेकिन जनरली लोग 2 मिनट 3 मिनट वॉश करके छोड़ देते हैं, ये एकदम WHO का गाइडलाइन है कि आप 10 से 15 मिनट तक लगातार रनिंग वाटर के सामने आपका पूरी तरह से उसको वॉश करें। तो घाव वाला उससे क्या होता है कि 80 to 90 वायरस प्लस हो जाते हैं, निकलने की पूरी संभावना हो जाती है, आपके बॉडी में वायरस के एंट्री होने की संभावना या संक्रमण की संभावना कम हो जाती है।
1: जी
0: पूरी तरह खत्म तो नहीं होता लेकिन कम हो जाता है।
1: जी
0: दूसरा दूसरा ये होता है कि हम उसके बाद अगर हमारे पास डिटॉल है, सेवलान है, टिंकर आयोडीन है, इस तरह का कोई केमिकल है तो उससे भी वॉश किया जा सकता है। तीसरी चीज एक और भी होता है कि वॉश सोप है, जो भी सोप आपके पास साबुन है उससे भी आप घाव को जो है वॉश किया जा सकता है।
1: धुले
0: तो ये दो तीन जो घरेलू मतलब हमारे पास तुरंत उपलब्ध है वो चीज करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अब क्या होता है कि वैक्सीनेशन होता है। उसके बाद हमें बिना समय गंवाए जो है वैक्सीनेशन सेंटर पे जाना चाहिए, जो कि सरकार द्वारा हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, जिला अस्पताल, हर जगह जो है एंटी रेबीज वैक्सीन अवेलेबल रहता है, हर जगह हमारे यहाँ है। तो वहां पे जा करके हमें इमिडिएट वैक्सीनेशन कराना चाहिए। अब उसी में हम थोड़ा सा क्लासिफाई कर लेते हैं
1: जी
0: कि
1: बताएं
0: जैसे आप घरेलू जो आपने बात किया है कि जैसे घरेलू आपका मान लीजिए कुत्ते की बात कर रहे हैं, तो उसमें दो तरह होता है कि एक तो हमारा कुत्ता जो है वैक्सीनेटेड है कि नहीं एंटी रेबीज का, दूसरी
1: जी
0: चीज यह है कि अगर मतलब वैक्सीनेटेड है और उसके बाद आप कई बार लोगों के दिमाग में होता है या कई बार हमारे पास मरीज आते हैं कि अरे डॉक्टर ने वो उसने जो है हमारी स्किन को चाट लिया है, या क्या कोई पूछता है कि क्या उसको खाने खिलाने क्या हमें रेबीज तो नहीं हो जाएगा,
1: जी
0: ये भी क्वेश्चन आता है, या पता चला हमारे स्किन के ऊपर या हमारे मतलब चेहरे पे हमें उसने चाट लिया। तो ये एकदम स्पष्ट बताना चाहूंगा कि अगर आपका जो है अगर इस तरह की बातें हैं तो उसमें कोई कहीं खतरे वाली बात नहीं आती है। अगर हाँ, अगर खतरे की बात तब आ जाती है कि अगर आपका स्किन खुला हुआ है, पुंडित है, या आपके माउथ के अंदर उसका अगर जीभ चला जाता है या नाक के अंदर चला जाता है, तब जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं उसके कांटेक्ट में आ जाए, या ओपन वुंड हो तो उसके कांटेक्ट में आ जाए, तब उसमें इन्फेक्शन होने की संभावना बन जाती है। अदरवाइज ऐसी इस कंडीशन में इस जो कैटेगरी 1 होता है उसमें कोई संभावना नहीं रहता। हाँ, लेकिन अगर दूसरा जो हम कैटेगरी करते हैं जिसमें अगर कोई कहता है कि बच्चा ब्लड तो नहीं, स्क्रैच लग गया है, खरोच लग गया है, या फिर लग गया है कि खरोच लग गया या हल्का सा कट मतलब उसने दांत लगा दिया लेकिन ब्लड नहीं निकला, लेकिन हम इन सभी मतलब हम इनको खतरे मानते हुए हम इसमें वैक्सीनेशन का सलाह देते हैं।
1: जी, हाँ प्रायः ऐसा होता है कि खेल खेल में जानवर जैसे वो रीझा हुआ है और थोड़ा सा हाथ कस के पकड़ लिया, नाखून लगा लिया, दांत लगा लिया, तो स्थितियां कभी ऐसी होती हैं कि वो खून दिखता है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि उसने नाखून से थोड़ी सी वो मारी है, जो दिखता तो नहीं है पर जलन की अनुभूति होती है।
0: जी, तो उन सभी कंडीशन में हम उसको खतरे को मानते हुए उसमें वैक्सीनेशन हमें कराना चाहिए, मतलब जो सरकार द्वारा मतलब एक योजना

0: हैं, जैसे कि ERC एंटी रेबीज क्लिनिक के रूप में, मतलब हम कहते हैं कि हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल में एक हम एक अलग से वहाँ पे हम एक डेस्क बनाए रहते हैं, जहाँ पे अगर कोई इस तरह का कुत्ता बिल्ली का काटने का आता है और वो इस तरह का बताता है रिस्क, तो हम तुरंत जो है उसको इमीडिएट जो है वैक्सीनेशन शुरू कर देते हैं।
1: जी, यह तो बड़ी
0: जी
1: अच्छी बात है। यह तो बात हुई जिसको काटता है, किंतु
0: जी जी
1: काटने पर स्थिति खराब हो, इससे
0: जी जी जी
1: पहले जो हम जानवर
0: जी
1: अपने पास रख रहे हैं
0: जी जी जी जी
1: उसको भी, जैसा आपने वैक्सीनेशन के बाद कहा, सुई लगवाने की बात कही, उसकी भी
0: जी
1: कुछ
0: जी
1: प्रक्रियाएं हैं।
0: जी जी जी जी जी हाँ, हम ये भी प्रक्रिया है कि जो हम अपने डोमेस्टिक डॉग्स होते हैं, जो घरेलू हम अपने जो भी कैट्स हो या मतलब बिल्ली या कुत्ते हैं, तो उसको भी हम वैक्सीनेशन कराते हैं। और दूसरा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो स्ट्रीट डॉग्स या वाइल्ड एनिमल्स के कांटेक्ट में नहीं होता है, क्योंकि जनरली जो हमारे डोमेस्टिक डॉग्स होते हैं उसको रेबीज वो कैरी नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो किसी के कांटेक्ट में आ गए, वाइल्ड डॉग के कांटेक्ट में आ गया या वाइल्ड एनिमल्स के कांटेक्ट में आ गया, या ऐसा डॉग स्ट्रीट डॉग से जो कि रेबीज कैरी कर रहा है उसके कांटेक्ट में आ जाए, तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है। तो इस
1: जी
0: वजह से हम जो है अपने डॉग्स को, यानी जो अपने घरेलू कुत्ते हैं उनको भी वैक्सीनेशन कराते, प्लस जो भी घर के रहने वाले सदस्य हैं जो उनके के साथ घुल मिल के रहते हैं उनका भी वैक्सीनेशन करते हैं, जिसको हम कई बार कहते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, मतलब कि किसी चीज को होने के पहले ही हम वैक्सीनेटेड वैक्सीनेशन करा लें।
1: जी बिल्कुल। तो आपकी बातें हमारे श्रोताओं के लिए रेबीज की रोकथाम के प्रति निश्चित रूप से जागरूकता में को बढ़ाने वाली है और इस भयावह बीमारी को हराने में बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। इस अच्छी जागरूकता भरी बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: जलेबी जी, देखा अभी हमन रेबीज रोग से बचाव और जागरूकता के बारे में जनबा जिला चिकित्सालय के जन चिकित्सा अधिकारी हुआ डॉक्टर साहब, उनसे आपका बात बती हमन सुनल गई और इतना अच्छा जानकारी आप बतिया पूरा तरीके से आप पूछ लें, बड़ा अच्छा अनुभव मिलल हुई आपके।
2: देखा हम तो गई रही दूसरे काम से, मगर वहाँ देख ली की पशु भी के संबंधित बात हमन हमन का डॉक्टर वो जानवर का डॉक्टर ना हमन, मगर जानवर के कटले से समस्या लेके लोग गए ललन। तो हम कहली कि जब पहुंचल ही मौके से तो यही बात बतिया लिया जाए और यही तरह से सब लोग जान ले, तो डॉक्टर साहब के धन्यवाद तो देहल जाए।
1: बिल्कुल,
2: ये सब बात बत कही तब भइल,
1: लेकिन
2: मगर देखा अच्छा भैया देखा हम लोगन है जा गाय का खेती किसानी वाला।
1: तो बिल्कुल अपने एक जन खेती किसानी का जन बात कहली तो किसान लोग भी देखा जुटल हुआ और खेती पर देखा कहल जा रहा है ना कि खाली पूरे तरीके से खेती पे न जुट करके जन बा कुछ आय परक जन होए कि मतलब कैसे आय अपन बढ़े उससे संबंधित भी बातचीत हम के करे के चाहिए ताकि किसान भैया के भी उके समझ में आवे के चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, अब देखा कितना जगह तब मशरूम का खेती शुरू हो गई बा जौन से बढ़िया आमदनी होत बा, यही तरह से फल सब्जी फूल के नर्सरी तैयार कैलो किसानन खातिर के रोजगार का अच्छा विकल्प बा।
1: बिल्कुल, और देखा मछली पालन, देखा बरसात के समय रहल तो मछली पालन और तालाब आधारित गतिविधि भी जन बा अपने गाँव में आमदनी बढ़ावे में सहयोग कर सकेला। कृषि उपज के प्रसंस्करण पैकिंग और स्थानीय बाजार में बिक्री से भी अपन किसान भी जनबा कमाई बढ़ा सकतन और देखा सरकारी योजना के तहत भी जनबा कई तरीके की योजना निकलत हैं तो प्रशिक्षण और बैंक से मिले वाला ऋण के जानकारी लेके अपने रुचि के काम जनबा वो शुरुआत करे के चाहिए। खेती के साथ अलग अलग रोजगार अपनाई तो किसान परिवार के आमदनी बढ़ी और आर्थिक मजबूती भी आई।
2: एकदम सही कहला है, गांव के किसान भाई लोग खातिर पौध नर्सरी लगावल रोजगार का एक बढ़िया अवसर बन सकेला। नर्सरी में फलदार फूलदार सब्जी और छायादार पौधा के तैयार कइल जा सकेला। आम अमरूद नींबू पपीता जैसन फलदार पौध के मांग कई जगह लगातार

0: बनल रहे ला। और किसान मौसम के हिसाब से सब्जी के स्वस्थ पौधे तैयार करके आसपास के किसान के
1: बेच
0: बेच
1: सकल रहे,
0: सकेलन।
1: बिल्कुल
0: और
1: सही कहा
0: चलो
1: तुम।
0: भैया देखो, आजकल तो कुछो कार्यक्रम होत बा, केहू के जन्मदिन हो, शादी के, कोनो भी अच्छा अवसर होत बा, तो वहां देखो पौधा भेंट करे का एक कितना सुंदर परंपरा
1: प्रचलन चल गई बा,
0: चलल बा।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: इस में भी हम लोगन के पौधा निकल सकेला, तो
1: सही बात
0: आमदनी
1: है,
0: ना हुई।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा फूलदार पौधा या सजावटी पौधा के बिक्री से भी अतिरिक्त आमदनी हासिल करल जा सकेला। और नर्सरी शुरू करे खातिर पौध तैयार करें और बीज चुने और सिंचाई का सही तरीका की जानकारी भी जरूरी बा। पौध के गुणवत्ता बढ़िया रखल जाए तो ग्राहक दोबारा भी नर्सरी पर आवे का संभावना बढ़ी। तो नर्सरी कम करे के नर्सरी के काम काम में परिवार के सदस्य भी मिलजुल के सहयोग कर सकत बाड़े।
0: और एकरे खातिर देखा, जौन हमार चिंता के बात नहीं बा एमे कि हम करब तो कैसे बिया निकली।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: स्थानीय बाजार, किसान मेला और आसपास के गांव में पौध बेच के बाजार तैयार कर जा सकेला। सही प्रशिक्षण, मेहनत और बाजार के मांग के समझ के नर्सरी खेती के साथे एगो टिकाऊ रोजगार बन सकेला।
1: बिल्कुल सही कहा
0: नर्सरी
1: तुम।
0: के काम खाली पौध बेचला तक सीमित नहीं के, एहमें कई तरह के रोजगार के अवसर जुड़ल बा। बीज से पौध तैयार करल, कलम लगावल, ग्राफ्टिंग और पौध के देखभाल जैसन काम में कुशल लोग के लोन के जरूरत पड़ेला, तो
1: बिल्कुल
0: वहां भी हमके अवसर मिली
1: बिल्कुल
0: काम करे
1: बिल्कुल
0: के।
1: बिल्कुल। और किसान लोग भी देखा स्थानीय मौसम और मिट्टी के अनुसार उपयुक्त पौधा तैयार करके अच्छा बाजार बना सकेलन। और पौध के गमला, पॉली बैग या उचित पैकिंग में तैयार करके दूर के ग्राहकन तक भी पहुंचावल जा सकेला। ऑनलाइन माध्यम और सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा नर्सरी के पौध के प्रचार प्रसार कइल जा सकेला। शादी ब्याह में भी, स्कूल में, कार्यालय या सार्वजनिक स्थल पे भी जनबा उनके सजावटी पौध उपलब्ध करावल आमदनी का एगो साधन बन सकेला।
0: एकदम नर्सरी के साथे जैविक खाद, बर्मी कंपोस्ट और पौध संरक्षण सामग्री के बिक्री भी जोड़ल जा सकेला।
1: सही कहते हैं,
0: कृषि विभाग और संबंधित संस्थान से प्रशिक्षण और उपलब्ध योजनन के जानकारी लेवल से शुरुआत से मदद मिल सकेला। छोट स्तर से शुरुआत करके मांग बढ़ले पर नर्सरी के विस्तार कइल जा सकेला। इस तरह नर्सरी किसान भाई लोगन खातिर रोजगार, आत्मनिर्भरता और अतिरिक्त आमदनी के एक बहुत ही ठोस माध्यम बन सकेला।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही देखा हमारे के पंचायती में भी देखा आज बहुत अच्छी जरूरी जानकारी बा कि सही तकनीक प्रशिक्षण और बाजार से जुड़ाव के साथ कृषि सहयोगी गतिविधियन के माध्यम से किसान अपने खेती के आमदनी वाला व्यवसाय में बदल
0: ता
1: सकेला।
0: देखा भैया, ई बात बत कही तो आप करत हवन, मगर आप अपने तक रखियन तो आपे हम लाभ उठाए, काहे ना हम लोगन के सब लोगन के सुनावल जाए।
1: तो का हा विषय का बा।
0: विषय देखा, गाजर का व्यावसायिक खेती पर बातचीत होत रहल बा और ई प्रगतिशील कृषक आपके भेटाल हवन, का ना हुआ इनकर विजय
1: विजय
0: सिंह।
1: सिंह भैया।
0: अच्छा अच्छा अच्छा विजय सिंह से बात बत कही होत बा, तो हम तो कहा सुनल जाए।
1: किसान भाई देखा हमन खेती किसानी से जुड़ल है जा और कई बार ये देखल जाला कि रासायनिक खाद के प्रयोग से जन बा माटी के सेहत, फसल के गुणवत्ता और आदमी के पोषण पे बहुत बुरा असर पड़ेला। ऐसे देखा किसान भाई लोग भी खाद और कीटनाशक का संतुलित इस्तेमाल की जिम्मेदारी हमें एक रेख खातिर आगे आवे वाले समय में अगेती के तौर पे गाजर का फसल कितना उपयोगी बा, किसान भैया लोग एके काहे अपनावे, यही सब विषय पर चर्चा करे खातिर आज हमान के बीच में प्रगतिशील किसान विजय सिंह भैया जो उनकी रजखड़ गांव दुधी ब्लॉक से हुए आज आकाशवाणी स्टूडियो में पधरले हुए। तो विजय भैया आपके आकाशवाणी स्टूडियो में हार्दिक स्वागत बा।
2: नमस्ते सर।
1: विजय भैया सबसे पहले तो ये बतावे कि इसमें अपने खेत में का करत हूँ पहले।
2: देखिए, गाजर की खेती करने का अपना तैयारी है और इस गाजर की खेती के लिए हम लोग आज, अगर हमको पहले से ही टारगेट होता है कि अगर हमें गाजर की खेती करनी है तो हम इस बात का ध्यान गर्मी से ही दिमाग में रख के चलते हैं
1: कि ये हमको करना है।
2: जी जी, अगर जब हमको जिस खेत में हमें गाजर की खेती करनी है तो उसको हम प्लाऊ से पहले गर्मी में ही एक बार उसको दो बार जोतवाई करा लेते हैं और करने के बाद में खेत खुद अपने आप बोलता है कि अब हम भुरभुरा हो गए, अब हम मुलायम हो गए, सख्त नहीं है। और उसमें अच्छा सा जब पूरे बरसात का पानी जाएगा, उसमें सड़ता है और तमाम तरह के जो भी है, कोई भी छोटा मोटा हल्के कोई फसल हम डालते हैं, फसल भी अच्छा आता है। और जब बरसात खत्म होने के बाद में एक फसल तो अभी गाजर का पहले लोग बो चुके हैं।

0: लेकिन इसके अभी मध्य समय है और ये समय बड़ी कीमती होता है सर। अब इसमें क्या है कि जो किसान अगर समय से अगर ढंग से अगर आप उपज ले आते हैं तो उसकी अच्छी लाभ उस किसान को मिलता है। अब फसल लगाने से पहले खेत की विधिवत तैयारी किया जाना बहुत जरूरी होता है।
1: तो इसके लिए क्या क्या तैयारी करते हैं खेत की तैयारी के लिए? जैसे कई और फसलों में ये होता है कि देखा जाता है कि भाई हमारा माटी शोधन होना चाहिए, बीज शोधन होना चाहिए, तो और भी कुछ तैयारी करते हैं तो उसके बारे में बताइए।
0: मिट्टी शोधन भी होता है और बीज शोधन भी जरूरी है। और ये बीज शोधन और मिट्टी शोधन अगर दोनों और साथ साथ कंप्लीट कर देते हैं तो फसल की गुणवत्ता में सीधे सीधे बढ़ोतरी हो जाती है। सबसे बड़ी बात कि समय का ख्याल है, जब मौसम अनुकूल हो तभी हम इसकी जोताई कराएं और तभी वो भुरभुरा बन पाता है। जितना भुरभुरा अगर हम जमीन को बना पाएंगे उतनी अच्छी हमारे पौधों की बढ़वार होती है,
1: खासतौर से गाजर का जो
0: खास तौर से
1: लंबा और अंदर तक जा सकता
0: जी जी जी, ये बहुत जरूरी चीज है। जितनी गहराई तक वो जो अगर वो मुलायम मिट्टी रहेगा उतना लंबा गाजर हमें मिलेगा और उतनी ही बढ़िया क्वालिटी मिलेगी।
1: अच्छी क्वालिटी रहेगी तो बाजार में अच्छा मांग भी रहेगा। क्या इसमें गोबर की खाद वगैरह या कंपोस्ट खाद वगैरह की भी जरूरत पड़ती है खेत की तैयारी में?
0: जी,
1: कैसे करते हैं उसको?
0: हम पहले जो हमारे पास जो उपलब्ध जो अभी खाद अगर अपने पास है तो पहले हम उसमें डालते हैं और डालने के बाद उसको जुताई करवाते हैं। जैसे एक तो वो बड़े वाले हल से जोतेंगे, वो चीरा हो जाए ताकि बढ़िया सा खुला लग जाए, हवा लग जाए। फिर इसके बाद उसमें रोटावेटर का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी होता है। रोटावेटर से कणकण जो है एकदम पूरा मिट्टी मुलायम हो जाता है, पैर धसने लगता है, समझ में आया कि ये गाजर के लायक अब जमीन हमारा तैयार हो गया।
1: तो ये तो रही कि खेत की तैयारी कैसे करें।
0: जी जी,
1: अब आते हैं बीज के चुनाव की बात। तो इसमें किसी किस्म का या किसी अलग प्रजाति का अपने क्षेत्र में करते हैं जिसका बढ़वार और पैदावार अच्छा हो?
0: जी, हम लोग जब बीज का जब चयन की बात है, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का चीज है। बीज का चयन करके हमें बीज पहले से लाके रख लेना चाहिए, तब खेत तैयार करें।
1: जी,
0: अगर मौसम अगर न रखे और खेत तैयार कर दे किसान, ऐसे समय में होता क्या है कि अगर कहीं बारिश आ गया या और कोई कमी आ गई तो फिर से वो मिट्टी भुरभुरा बनाना बड़ा कठिन है, उस पर खर्चा गिरता है। ये ऐसी नौबत ना आवे, इसलिए हम किसानों को हम जो पहले इस पर तंदेही इस बात पर करते हैं, पूरी निगरानी रखते हैं कि बीज खाद जो भी हमें डालना है एक साथ हम उसको मिक्स करते हुए जो जो हम गोबर की खाद है, डीएपी है और पोटास है, जिंक है, जो भी हम मात्रा मिलाते हैं उसको एक बार ही दे करके खेत तैयार कर देते हैं। बीज जो है हमारे यहाँ खास तौर से जो हम जहाँ भी राजकीय जो हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से भी हम लोग ले लेते हैं, या फिर जो हाइब्रिड की जो अच्छी नस्लें जो अभी आई हैं जो उसमें एशियन देसी है उसको हम लोग ज्यादा पसंद करते हैं, जो लंबा हो पैदावार होता है, उसका क्वालिटी भी अच्छा होता है, रंग भी होता है लंबाई, और उसमें कम से कम रोग लगता है। हम लोगों ने इस तरह का प्रयोग किया है।
1: जी, तो बुआई करते समय गहराई का भी ध्यान रखते हैं कि कितने गहरा तक हम उसको बीज को बोएं?
0: जी, वो बहुत ज्यादा गहरे होने की जरूरत नहीं है। अब जब हम डालते हैं तो ये मेढ़ कूड़ और मेढ़ का हम लोग ख्याल करते हैं। कूड़ और मेढ़ जब विधि का हम जब इस्तेमाल करते हैं तो जो मेढ़ में जो दाने पड़ेंगे वो सीधे उससे कई गुना जो अपेक्षाकृत जो सामान्य है उससे वो डेढ़ गुना तक उसकी लंबाई बढ़ जाती है फसल
1: जी,
0: की
1: जी, जी।
0: तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा कूड़ और मेढ़ का प्रयोग करते हैं।
1: तो मेढ़ जैसे जब बनाते हैं तो मेढ़ की दूरी का ध्यान रखते होंगे, तो वो लगभग कितना दूर रखते हैं?
0: लगभग समझिए कि एक मेढ़ से दूसरे मेढ़ की दूरी लगभग एक फीट से कम होता है दूसरे मेढ़ में, और हम चाहते हैं कि मोटा जितना मेढ़ होगा उतना ही अच्छा उसमें से फसल हमें मिलता है।
1: जी जी,
0: इसका
1: जी,
0: ध्यान रखते हैं।
1: जी, तो सिंचाई जैसे भी ये तो हो गई, बुआई की बात आ गई, तो इसमें सिंचाई कब करना चाहिए, शुरुआत कब करना चाहिए, बीज में कब देना चाहिए और कितनी सिंचाई करनी चाहिए?
0: सिंचाई बड़ी सावधानी से इसका किया जाना चाहिए
1: जी,
0: और अगर बारिश भी हुई अगर बुआई के बाद में अगर बारिश होती है तो भी इसका बहुत कम नुकसान होता है, इसलिए कि हम मेढ़ में इसको मेढ़ में जब हम बुआई करते हैं तो उसमें पानी लगने का चांस कम है। पानी बड़ी सावधानी से देना चाहिए और जब हम पानी देते हैं तो उसकी जो लेबलिंग पर विशेष ध्यान देना है ताकि कहीं जल जमाव ना हो और कहीं बाकी ना रहे
1: जी।
0: ये अपने नमी ऊपर चढ़ जाए ऐसा हमें उतनी वो मेढ़ देने की जरूरत है।
1: मान लो खेत सिंचाई हो गया तो सिंचाई के बाद जो आपके खर पतवार की बात आवेले कि खर पतवार निकल आवेले तो उससे कैसे ऊपर कैसे नियंत्रण पावेले फिर
0: खर पतवार? देखिये इसमें खासतौर से उस तरह का होता नहीं है, जब पौधे निकल जाते हैं तो छोटे पौधे उसमें घास कम उगते हैं, अगर उगे भी तो हम लोग निराई कर लेते हैं, देख करके जहां जहां से आया चुन निराई कर देंगे, वो निकल जाते हैं घास।
1: बाजार के दृष्टि से अगर देखल जाए तो एक फायदा कैसे उठावल जा सकेला?
0: बाजार और स्वास्थ्य दोनों दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण फसल है
1: जी।
0: बाजार में आम तौर पर के ये जो है इस गाजर का 30 से 40, 50, 60 तक हमारे यहाँ बिकता है समयानुसार किलो, लेकिन हम उस समय पर फसल उगा नहीं पाते हैं। अगर जब विशेष जब सामान्य समय हो जाता है चारों तरफ से उपज आता है तब भी ये 30 से नीचे 25 से नीचे नहीं जाती है।
1: लागत कितना लगे?
0: लागत इस पर बहुत और फसल की अपेक्षा में सबसे मेरे को ये गाजर का फसल लगता है।
1: जैसे अगर एक बीघा की बात करल जाए
0: जी,
1: एक बीघा में अगर फसल लगावल गई तो इमें लागत कितना लगी और उत्पादन आवे के बाद फिर ऐसे कितना फायदा मिली?
0: सभी लागत जुताई से लेकर के बीज से लेकर के ये लगभग 4 से 5 हजार रुपया एक बीघे पर पड़ता है मोटा मोटी। लेकिन अगर उपज अच्छा आया बाजार भाव हो गया तो आप उससे अगर मिट्टी में अगर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आया बाजार भी टिक गया तो औसत 10 से 15 हजार रुपया किसी भी दशा में सारे खर्चे काट के किसान बचाता है
1: जी।
0: हम लोग बचाते हैं
1: जी।
0: लेकिन ये कब संभव है? जब अगर मार्केट अच्छा रहा तो किसान को मिलना है और स्वास्थ्य के दृष्टि से बहुत काम का चीज है।
1: ऐसे में देखिए आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी बताई विजय भैया, लेकिन अब हम ये अपने जो अपने जनपद के किसान आप लोग को काफी अच्छे से ध्यान से सुनते हैं, जितने भी विशेषज्ञ भैया लोग आते हैं, तो उनके लिए कुछ खास संदेश अगर देना चाहें तो क्या देंगे?
0: हम अपने किसान भाइयों से यह कहना चाहेंगे स्वास्थ्य और आय दोनों का संवर्धन करने वाला, साथ देने वाला, बढ़ावा देने वाला बहुत अच्छा और उपयोगी फसल है हमारा गाजर का खेती।
1: जी जी, तो देखिए विजय भाई आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सहज तरीके से आपने बताया कि गाजर की खेती क्यों जरूरी है, चाहे वो पौष्टिक दृष्टि से हो, चाहे पोषण की दृष्टि से हो, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो और बाजार में उसकी मांग की दृष्टि से हो। तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, आकाशवाणी स्टूडियो में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अच्छा भैया, बड़ा बढ़िया जानकारी सुनौलन आप।
1: गाजर का व्यावसायिक खेती विजय सिंह भैया रहे प्रगतिशील किसान। और देखा भौजी, कुल बात का निचोड़ यह रहला कि किसान भाई लोग कैसे अपने खेती के जौन बार लागत बहुत कम करें और
2: पैदावार
1: अच्छा ज्यादा हो, गुणवत्ता युक्त हो, इतना गुणवत्ता युक्त हो कि उकर बाजार भाव अच्छा मिले।
2: अब देखा बाजार भाव कहला तो हमारे पास एक ठे बार रापड़गंज मंडी के बाजार भाव
1: तो परंपरागत तरीके से बाबूलाल भैया भेजले हुई है।
2: हाँ हाँ हाँ, और इहो आप तब जाने लन कि वहाँ का बाजार जन होला कुंतल में होला,
1: तो बिना देखे
2: मगर संजोग से बात बा कि गाजर के हम लोगन चर्चा करत रही जा, तब गाजर के नर्सरी और खेती पे हम लोगन के लगे की जरूरत बा, अभी बाजार में गाजर न हो।
1: बिल्कुल
2: ठीक है। तो देखा हम लोगन आलू से शुरुआत करत है, लाल वाला आलू 1100 से 1200, सफेद आलू 900 से 1000, प्याज बा 4000 से 4200, टमाटर 2500 से 2800, बोड़ा 2500 से 3000, कोहणा बा 1200 से 1500, अरवी बा 2200 से 2500, बंडा भी देखो 2200 से 2500 ही बा। बैंगन जो लंबा वाला बा 2000 से 2200, गोल बैंगन के देखो भाव टाइट बा 3500 से 4000, परवल बा 7000 से 8000, लौकी बा 2000 से 2200, करेला बा 1800 से 2000, भिंडी बा 2000 से 2200, नेनुआ बा 1800 से 2000, और देखा कुनरू बा 2000 से 2200। अब देखा मुरई भी है समय टाइट बा, जौन किसान भैया लोग के पास मुरई बा उनकर बढ़िया बा, इस समय खलिता गरम बा, मुरई के भाव बा 4,000 से 4,500, हरियर मरचाई 4,500 से 5,000,

0: हजार, लहसुन 10,000 से 12,000, धनिया 8,000 से 10,000, पालक ब 4,000 से 5,000, अदरक ब 6,000 से 7,000, सूरन ब देखा 4,000 से 4,200। अब खीरा देखा बा बाजार में, खीरा बा 2,500 से 3,000, मकई ये समय बड़ा सोन सोन दिखात बा, मकई बा 1,500 से 1,800, और आजकल देखा सब्जी में अपन कच्चा केला भी उपलब्ध बा 1,800 से 2,000 के भाव से, और अब देखा सैकड़ा के भाव से फूल गोभी बा 2,500 से 3,000, पत्ता गोभी बा 2,200 से 2,500, और नेबुआ महा टाइट बा, बड़ी आमदनी बा एमें, नेबू बा 500 से 600 रुपया प्रति
1: प्रति
0: सैकड़ा।
1: सैकड़ा पीत रहल रावण में मंडी के बाजार भाव बाबूलाल मोर भैया के, विजय सिंह भैया के और डॉक्टर राजेश कुमार सिंह भैया के, सबके जनवा एक साथ ही मनफेर के माध्यम से धन्यवाद
0: धन्यवाद
1: भी
0: हो
1: दिया जाए।
0: जाए।
1: तो आज
0: बस
1: मनफेर के कराओ थे आज
0: मन फेर में, अरे भाई आप कैसे बात बतिया थे, मन
1: स्वच्छता का समय चलत बा।
0: तो स्वच्छता के समय चलत बा, और अपन डॉक्टर मन्नू यादव संग हाथी लोगन के संगे एक स्वच्छता गीत खेमटा के साथ मौजूद हवन
1: तो तनिको ना हो देर हो जाएगो मन
0: मन फेर।
1: फेर।

0: अच्छा
1: हाँ भैया
0: इतना अच्छा मन फिर चलत बा। डॉक्टर मन्नू यादव संघाती लोगन का खेमटा बा, स्वच्छता गीत बा। और स्वच्छता के बाद जहाँ होला भी भोजी वहाँ देखा बीमारी दूर दूर रहेला।
1: एक ठे कहावत सुन ले हवा
0: का
1: कि स्वच्छ स्वच्छ घर जगर पहचान होला ना, बीमारी वहाँ से गुमनाम होला।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहली और सही बात बा। और सही देखा विषय से बीमारी से संबंधित काल का अपन पंचायती में एगो चर्चा भी सुनल जाए कि हृदय रोग से बचाव हेतु चिकित्सीय सलाह। ये पर डॉक्टर संजय कुमार सिंह जो उनके होम्योपैथ चिकित्सक हों उनसे अपन मुन्ना भैया का बात करके सुनल जाए। और यह एगो मनसा बा कि सब लोग अपने आस पास का जो मतलब अपने घरे का कूड़ा जिन बगल के घरे के पास न फेंक दें, ओके सही कूड़ेदान का प्रयोग करके ओकर उपचार मतलब कहीं निदान करें
1: निदान करें। देखा स्वच्छ वातावरण में वरण रही ना तो स्वस्थ बनल रही।
0: बिल्कुल बिल्कुल और स्वच्छता का ध्यान रखिए तब स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहिए तो फिर जाहिर बात है बीमारी से दूर रहिए। तो यह मनसा के साथ आज हम यहाँ चल जाए।
1: बिल्कुल
0: तो सब पंचन के
1: राम राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत 102.7 एफएम पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:50 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को अब लीजिए सुनिए, शान के और वसुंधरा दास की आवाज में। संगीत शंकर एहसान लॉय का है और फिल्म का नाम है कल हो ना हो।

शंकर महादेवन शान और केके की आवाज में एक बार फिर से लीजिए सुनिए जावेद अख्तर के इस गीत को, संगीत शंकर एहसान लॉय का, फिल्म का नाम दिल चाहता है। आकाशवाणी उमरा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। शाम के 7:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम और आज के कलाकार हैं परशुराम और इनके साथी। तो लीजिए सबसे पहले सुनिए इनके स्वर में देवी गीत।

आकाशवाणी ओबरा से समय आज सुन रहे हैं लोकगीत का कार्यक्रम और आज के कलाकार हैं परशुराम और इनके साथी। अभी आप सुन रहे थे इनके स्वर में देशभक्ति गीत और अब लीजिए सुनिए इनके स्वर में दहेज गीत।

अभी आप सुन रहे थे परशुराम और इनके साथी के स्वर में दहेज गीत। इसी के साथ लोकगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। अब से कुछ देर में यानी शाम 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये
1: मेरी बड़ी आपके नाम।
2: पर दादी आपके नाम?
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
1: क्या
3: आरबीआई कहता है।
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: पर रोक लगाने से किया इनकार। केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक और खंड शिक्षक के निर्वाचन के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। 23 अक्टूबर को होगा मतदान। और भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने से राज्य की कई नदियां उफान पर। मौसम विभाग ने कई जनपदों में कल हल्की बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में 1375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है और अगले 6 महीने में 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना तब साकार होगा जब प्रदेश विकसित होगा।
1: नियत सरकार की साफ होनी चाहिए, परिणाम आएंगे और उस परिणाम को लाने के लिए आपको अपने ग्राम पंचायतों में काम करना, वहां पर महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर के कार्य करना है, बेहतर समन्वय के साथ कार्य करना है, नई चीजें लानी है, मॉडल ग्राम पंचायत, स्मार्ट ग्राम पंचायत के कॉन्सेप्ट को पूरा करना है। विकसित भारत का सपना तब साकार होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश हो, और उत्तर प्रदेश विकसित तब होगा जब ग्राम पंचायत की इकाई आत्मनिर्भर और विकसित हो।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रूपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि ये मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल एन वेंकट रामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक के 5 और खंड शिक्षक के 6 निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 6 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा ने बताया कि इन रिक्तियों को भरने के लिए 23 अक्टूबर 2026 को मतदान होगा। इसको लेकर कल अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 7 अक्टूबर को होगी जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। मतों की गणना 27 अक्टूबर 2026 को की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में चल रहे उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में 4 दिनों में 5500 करोड़ रुपए के 3765 व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। वहीं देश विदेश के खरीदारों की ओर से 12500 करोड़ रुपए की कारोबारी पूछताछ दर्ज की गई है। इसी क्रम में आज उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्रेड शो में आयोजित खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 पर कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आयात को कम करना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे जल जीवन मिशन ने ग्रामीण घरों में शुद्ध जल पहुंचाकर जीवन को सुगम बना दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक सुरक्षित नल का जल पहुंचाने के उद्देश्य से 2019 में शुरू की गई जल जीवन मिशन योजना ने व्यापक अंतर ला दिया है। जहां योजना के शुरुआत में केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन थे, वो जून 2026 तक बढ़कर करीब 16 करोड़ से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को ग्रामीण सशक्तिकरण का बड़ा अभियान बताया है।
3: साथियों, जल जीवन मिशन गांव और गरीब के घर तक पानी पहुंचाने का तो अभियान है ही। ये एक प्रकार से ग्राम स्वराज को, गांव के सशक्तिकरण को, उसके लिए भी एक नई ऊर्जा, नई ताकत, नई बुलंदी देने वाला अभियान।
2: बांदा के रहने वाले धीरेन्द्र सिंह ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि अब हर वक्त पानी आने से जीवन बहुत आसान हुआ है।
4: इससे पहले जब ये जल जीवन मिशन के नल नहीं थे हमारे गांव में, तब हमको पानी के लिए बहुत दिक्कत होती थी। हम कुआं तालाबों से पानी लेकर आते थे, जिससे काफी

0: कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था हम लोगों को। जब से हर घर नल लग गया है तो इससे हम लोगों को बहुत सुविधा हो गई है।
1: योजना के तहत 7 वर्षों में 12 करोड़ 60 लाख से अधिक घर जोड़े गए हैं। अभय निगम, आकाशवाणी समाचार, बांदा।
2: आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। यह फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज कोलकाता में इंडिया एनर्जी वीक 2027 के कर्टन रेजर कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें लखनऊ से इंडियन ऑयल के निदेशक वित्त अनुज जैन और डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। श्री जैन ने बताया कि उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों के सुझाव लेकर इस क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के लिए नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा।
3: हम ये चाहते हैं कि हम दुनिया को दिखाएं कैसे इंडिया अपने एनर्जी नीड्स को मीट कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है, और उसके लिए हम चाहते हैं कि जो हमारे यंग बच्चे हैं, यंग माइंड्स हैं, वो भी चीज को समझें, क्योंकि हमारी कंपनी का और हमारी मिनिस्ट्री का ये बहुत बड़ा एक थॉट प्रोसेस है कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही इंडिया अपनी नई एनर्जी नीड्स को मीट कर सकता है, और उसके हमें नए यंग बच्चों का सहयोग चाहिए।
2: गोरखपुर में आज प्रधान नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय लखनऊ की ओर से दूरसंचार पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। इसमें गोरखपुर समेत आसपास के 20 से अधिक जिलों से बड़ी संख्या में पेंशनर अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। लखनऊ के प्रधान नियंत्रक संचार लेखा अजय कुमार ने बताया कि सभी पेंशनरों की समस्याओं का समाधान कराना विभाग की जिम्मेदारी है, ताकि उन्हें पेंशन से संबंधित किसी तरह की परेशानी न हो।
4: यहाँ पर पेंशनर्स की कोई भी परेशानियाँ हो, उसको उनके डिस्ट्रिक्ट में, उनके प्रांत में जाके सुनना और उनको सरलता के साथ सॉल्यूशन निकालना, ये हमारा दायित्व है। हमारे अधिकारी जो हैं लखनऊ और वाराणसी में तो तैनात हैं ही, गोरखपुर एक बहुत बड़ा प्रांत है जहाँ पर लगभग 20 के करीब डिस्ट्रिक्ट हैं। पेंशनर्स के लिए सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त कर सके, उसके लिए हम लोग कार्यरत हैं।
2: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में आयोजित हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह को आयकर विभाग की अपर महानिदेशक ऋचा रस्तोगी ने बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारे संस्कारों, परंपराओं और जनमन को एक सूत्र में पिरोने वाली राष्ट्र की आत्मा है। मुख्य अतिथि ने पखवाड़े भर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। समारोह में आकाशवाणी लखनऊ के केंद्र प्रमुख आरबी सिंह, कार्यक्रम प्रमुख सुमोना पांडे समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। वहीं कई दिनों तक हुई भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण शाहजहांपुर में रामगंगा, लखनऊ में सई, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा, गोंडा में क्वानो और कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने कल राज्य के कुछ जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 1375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतें बनाएंगी विकसित उत्तर प्रदेश। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से 4 हफ्तों में मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक और खंड शिक्षक के निर्वाचन के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। 23 अक्टूबर को होगा मतदान। और भारी बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने से राज्य की कई नदियां उफान पर। मौसम विभाग ने कई जनपदों में कल हल्की बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8

बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। मीडिया वेव 401.4।

102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। शाम के 7:31 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस, और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनाएंगे लता मंगेशकर के फिल्मों के बेहतरीन गाने।

मैं तुलसी तेरे आंगन के इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत को। आकाशवाणी उबरस इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म गीतों का कार्यक्रम सबरस, और आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में बेहतरीन गाने।

0: सत्यनिष्ठा अपनाए, भ्रष्टाचार मिटाए, मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाए। सत्यनिष्ठा से समृद्धि NTPC रिहंद द्वारा आयोजित त्रैमासिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनहित में प्रसारित।
1: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बहारों के सपने का ये गीत। अब लीजिए सुनिए गुलजार के लिखे इस गीत को लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है घर।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे गुलजार के लिखे इस गीत को। संगीत आरडी बर्मन का था और फिल्म का नाम था घर। आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस, और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाना है लता मंगेशकर के गाए कुछ बेहतरीन गाने। सुनते रहिए आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।

0: एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे फिल्म गाइड के इस गीत को लता मंगेशकर की आवाज में।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
5: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
6: हेलो,
4: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
5: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
4: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
5: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
4: ओनली ऑन AIR ओबरा।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे गुलजार के लिखे इस गीत को आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम था गोलमाल। इसी गीत के साथ कार्यक्रम सबरस अब समाप्त होता है।

102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। रात्रि के 8 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत को।

चंदन दास के गाय सी गजल के साथ गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 एफएम पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में उनके गाए बेहतरीन गाने।

गुलजार के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत आर डी बर्मन का था और फिल्म का नाम था मासूम।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म रजनीगंधा के इस गीत को। आकाशवाणी ओबरा से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, सुनते रहिए आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।

फिल्म ममता में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को। संगीत रोशन का था और इसी के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए सोनू निगम की आवाज में इस गीत को।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में इस गीत को। आकाशवाणी उबरा से समय आप सुन रहे हैं गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत। अब लीजिए सुनिए पपॉन की आवाज में कार्यक्रम का अगला गाना।

अभी आप सुन रहे थे पपॉन की आवाज में इस गीत को। आकाशवाणी प्लस इस समय आप सुन रहे हैं गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत। अब लीजिए सुनिए भूपेंद्र सिंह की आवाज में कार्यक्रम का अगला गाना।

0: भूपेंद्र सिंह के गाए से गीत के साथ गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार और रात्रि 9:00 अंग्रेजी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। दोनों देशों का 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब करने का लक्ष्य। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, 72,772 पर बंद। एशियाई खेलों में भारत ने 8 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर ने रजत और श्रीशंकर मुरली ने लंबी कूद, गुलबीर सिंह ने 1500 मीटर दौड़ तथा ईशा सिंह ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
3: Annually, we have been meeting regularly.
4: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
3: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में $101.25 अरब तक पहुंच गया, जबकि गैर तेल व्यापार 2025 में $76.20 अरब रहा। दोनों पक्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार में $200 अरब के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुस जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित किया है।
5: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहां की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। एक रिपोर्ट।
7: पशुधन बीमा पोर्टल से देश में पशुधन बीमा कार्यक्रमों के बेहतर तालमेल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा आधारित प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे पूरे देश में पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराए जा सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि ये पोर्टल किसानों की आजीविका की सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है।
8: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
7: ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश की माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे।
9: So if you want to make more export,
10: अगर हमें निर्यात को बढ़ाना है तो हमें लॉजिस्टिक लागत को कम करना होगा। आर्थिक संस्थानों द्वारा किए गए विशेष शोध और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर तथा IIT मद्रास की एक रिपोर्ट से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत में 6% की कमी आई है। पहले ये लगभग 16% थी और एक वर्ष पहले मिली रिपोर्ट के अनुसार सड़कों के बेहतर निर्माण के कारण इसमें 10% की कमी आई है।
9: 6% so it comes to 10%.
1: सर्वोच्च न्यायालय ने ₹2,000 से अधिक के UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
11: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
12: भारत के सहकारी क्षेत्र में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां शामिल हैं, जिनसे 32 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह क्षेत्र खेती के ऋण, डेयरी, चीनी, मत्स्य पालन, आवास और विपणन जैसे क्षेत्रों में फैला है और ग्रामीण भारत के लगभग 98% हिस्से को कवर करता है। साल 2021 तक इसके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं था। इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के पास थी, जो अलग अलग विभागों और राज्यों में बटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2021 में भारत में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस तैयार किया ताकि जानकारी प्राप्त की जा सके कि जमीनी स्तर पर वास्तव में कितनी समितियां काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नए नियम बनाए गए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण किया गया। साथ ही सहकारी बैंकों को सीधे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले पैसों से भी जोड़ दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और कहा कि यह लाखों गांवों, महिलाओं और किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
13: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं। यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
12: भारत टैक्सी भी सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये सहकारी मॉडल पर आधारित एक चालक केंद्रित गतिशीलता मंच है। इसका उद्देश्य जनता को सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। भारत टैक्सी में शामिल होने के बाद अपने सकारात्मक अनुभवों को साझा करते हुए राजीव कुमार नाम के एक चालक ने सभी साथी चालकों से भारत टैक्सी को अपनाने और सहयोग के माध्यम से समृद्धि के इस मिशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
14: मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा ड्राइवर भाई, सारथी भाइयों से कि सभी सहकार भारत टैक्सी से जुड़े और इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करें। सहकारिता का यह है सहकार से समृद्धि की ओर, तो इसको भी समझने की जरूरत है। जो रीजन है कि लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहकारिता में अपनी भागीदारी निभाई है।
12: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को समावेशी विकास के इंजन के रूप में बदल दिया है। जैसे जैसे भारत समावेशी और सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सहकारी समितियां समान विकास और मजबूती को बढ़ावा देना जारी रखेंगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। इससे पहले यात्रियों को पेचिंग या इंचियोन जैसे स्थानों पर विमान बदलना पड़ता था और यात्रा में लगभग 13 से 18 घंटे लगते थे। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरिल सुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबद्ध संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3:36.72 के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। भालाफेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.14 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक देश के नाम किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। 1124 अंक घटकर 72772 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22780 दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
15: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah calls for stronger mechanism to combat terrorism, launches new extradition portal. India and UAE agree to implement initiatives for trade in local currency, aim to boost bilateral trade to $200 billion by 2032. Central teams to visit Karnataka and Maharashtra to assess drought situation. Government launches Pashudhan Bima portal to streamline livestock insurance claims and monitoring. Non-stop flight between India and Mongolia takes off. Sensex hits a six-month low to close at 72,772. And at Asian Games 2026, India add 8 more medals. In men's javelin throw, Yashveer Singh takes silver. Sri Shankar Murali in long jump, Gulveer Singh in 1500 meter race and Isha Singh in shooting also strike silver. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the conference on Prahar, National CT Policy and Strategy.

102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में उनके फिल्मों के बेहतरीन गाने।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे इस गीत को। फिल्म का नाम था वो कौन थी। इसी गीत के साथ पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।

0: 102.7 एफएम पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं रचना तिवारी, अब्दुल हई और ईश्वर विरागे। संचालन सुनील कुमार तिवारी का।
1: श्रोताओं नमस्कार। निज भाषा बोला हूँ, लिखा हूँ, पढ़ा हूँ, गुना हूँ सब लोग, करा हूँ सकल विषयन विषय, निज भाषा उपजोग। श्रोताओं, ए श्रीधर पाठक की पंक्तियां थी। आकाशवाणी की स्टूडियो से प्रसारित इस विशेष साहित्यिक वेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों देश भर में हिंदी पखवाड़ा उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी राष्ट्रभाषा के संवर्धन और उत्सव को समर्पित आज के इस विशेष कार्यक्रम में आकाशवाणी की स्टूडियो में हमारे साथ देश के 3 बेहद प्रतिष्ठित चर्चित हस्ताक्षर उपस्थित हैं। इनमें प्रसिद्ध गीतकार ईश्वर विरागी जी, प्रसिद्ध शायर अब्दुल हई साहब और सुप्रसिद्ध गीतकार डॉक्टर रचना तिवारी। शब्दों के इस आकाश में आइए आज भावनाओं और विचारों के दीप जलाएं। बिना किसी विलंब के हम आज इस कवि गोष्ठी का आगाज करते हैं। श्रोताओं, सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ईश्वर विरागी को इन पंक्तियों के साथ कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किसिम किसिम के गीत बेचता हूँ जी। माल देखिए, दाम बताऊँगा, बेकाम नहीं है, काम बताऊँगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। आइए ईश्वर विरागी जी।
2: हिंदी के संदर्भ में चंद छंद प्रस्तुत हैं। कोमल कांत कलेवर धारी, सुधारी को आखर छंद लसी है। विविधा में विधा, वसुधा में सुधा, हिय जीति लई न तुरंच खसी है। भाषा विभा

0: सिवा सर हिंदी सबै उर माही बसी है।
1: क्या बात
0: और
1: है,
0: दूसरा छंद है,
1: स्वागत।
0: डिंगल मैं कर थामी कटार, जुझार बनी रख बेरन पानी, अनीति कौरीति दुरावे बरे, सुभई पच मेर कबीर को बानी,
1: वाह
0: ब्रज में बनी ता बनी रास रचे, अवधि में भई सुसिया गुण खानी, बिलसय हुलसय जनु भानु प्रभा,
1: वाह
0: यही हिंदी है सब भाषण रानी।
2: क्या बात है।
0: और अंतिम छंद है हिंदी से ही संबंधित, आदि समय निकसी मुख चंद ते, आखर हुए तरवारी को पानी, अगुनी सगुनी पर ब्रह्म बखानी, कै भक्ति पयो धिया कंठ समानी, रीति में भूषणी अंग निशानी, औ भेद तिया करी भई रस खानी, देश विदेशनी भाषा पचाई के, हिंदी भई जो प्रयाग को पानी,
1: वाह
0: देश विदेश नि भाषा
1: क्या
0: पचाई को, हिंदी भई जो प्रयाग को पानी।
1: बात।
0: और इसी संदर्भ में एक गीत रचना है, पानी बरसा अभी अभी बरसा जाने वाली भी है, तो वर्षा से संबंधित एक छोटी सी रचना प्रस्तुत है।
1: स्वागत।
0: हो तन मन बांध लिया धरती ने,

सूरज हुआ चांदनी तमसे लाज छिपाए, देहरी लांघ चली नदियां तट मौन खड़े बहराए, घाटी झरनों की

0: का किसक अहर्निश जागे, झर झर बूंद झकोरे चलते, झर झर बूंद झकोरे चलते, तीर धसे जो गात में, वीर बहुटी मांग सजाए बादल संग बरसात में, वीर बहुटी मांग सजाए बादल संग बरसात।
1: वाह,
2: अभी आप सुन रहे थे ईश्वर विरागी को। मुझे वसीर वद्र की ये पंक्तियां याद आ रही हैं कि अजीब शख्स है, नाराज होके हंसता है, मैं चाहता हूं खफा हो तो वो खफा ही लगे। अब मैं कुमार विश्वास की इन पंक्तियों के साथ शायर जनाब अब्दुल हई को आमंत्रित करता हूं। मैं उसका हूं, वो इस एहसास से इनकार करता है, भरी महफिल में भी और रुसवा मुझे हर बार करता है, यकी है सारी दुनिया को खफा है मुझसे वो, लेकिन मुझे मालूम है फिर भी मुझी से प्यार करता है, फिर भी मुझी से प्यार करता है। अब मैं एक ऐसे रचनाकार को आमंत्रित कर रहा हूँ जो अपने गजल और कलाम से गंगा जमुनी तहजीब की खुशबू बिखेरते हैं। तो आइए अब हम सुनते हैं जनाब अब्दुल हई को।
1: एक गीत भू

जान गया बंद के वर्तमान सच के माथे पर दाग लगाता फिरता है। सच और झूठ का निर्णय हर दम अगला पल ही करता है। वर्त

0: क्या बात है।
1: कौन मरा कौन अमर हुआ मैं जान गया। अंतिम बार
0: स्वागत।
1: मैं क्या जानू कल क्या होगा, समय बड़ा बलवान है। और जिसने दृढ़ संकल्प उठाया उसका वक्त गुलाम है। मैं क्या जानू कल क्या होगा, समय बड़ा बलवान है। जिस

0: पढ़े। और गजल से पहले दो कथा।
1: स्वागत।
0: या रब मुझे हयात बड़ी मुख्तसर सी दे, या रब मुझे हयात बड़ी मुख्तसर सी दे, चेहरे से दिल दिखाई दे ऐसी नजर भी दे, चेहरे से दिल दिखाई दे ऐसी नजर भी दे, वो इल्म दे जो मुझको किताबों में ना मिला।
1: क्या बात है।
0: वो इल्म दे जो मुझको किताबों में ना मिला, पल भर में चंद सदियों का लंबा सफर भी दे, पल भर में चंद सदियों का लंबा सफर भी दे। और एक कथा और देखें। फिर वही मंजर दिखाए जा रहे हैं, फिर वही मंजर दिखाए जा रहे हैं, मुफलिसों के घर जलाए जा रहे हैं।
1: क्या बात।
0: फिर वही मंजर दिखाए जा रहे हैं, मुफलिसों के घर जलाए जा रहे हैं, और अपनी ऐबों को छुपाने के लिए अपनी ऐबों को छुपाने के लिए झूठ के चादर ओढ़ाए जा रहे हैं।
1: क्या बात है।
0: झूठ के चादर ओढ़ाए जा रहे हैं। गजल का मतलब।
2: गमों के बोझ से शायद वो

जिससे शायद वो डर गया लोगों गमों के बोझ से, शायद वो डर गया लोगों, वो एक शख्स जो तूफान से मर गया लोगों, वो एक शख्स जो से देखें खुशी के बदले में कम दे गया जो दामन में, खुशी के बदले में कम दे

दिए जले रहे दहलीज पर उम्मीदों के, मैं देखता ही रहा।

0: हे रुका पानी उतर गया लोगों, वो एक शख्स जो तूफान से मर गया लोगों। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे जनाब अब्दुल हई को, मत खोलो राज मेरा तुम पढ़ नहीं पाओगे, मत देखो जख्म मेरा तुम भर नहीं पाओगे, हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता, तुम इस चेहरे को समझ नहीं पाओगे, दर्द छुपाने की आदत है पुरानी हमारी, दर्द छुपाने की आदत है पुरानी हमारी, तुम चाह कर भी हमें रुला नहीं पाओगे, तुम चाह कर भी हमें रुला नहीं पाओगे। हम सुन रहे थे जनाब अब्दुल हई साहब को, जॉन एलिया की इन पंक्तियों के साथ कि क्या बात है बड़े चुपचाप बैठे हो, कोई बात दिल पर लगी है या दिल लगा बैठे हो। अब मैं आमंत्रित करता हूँ एक प्रतिष्ठित हस्ताक्षर, क्योंकि स्त्री दृष्टि से जब सृजन होता है तो उसमें ममता और कोमलता के साथ साथ एक अनूठा विद्रोही स्वर भी शामिल होता है जो युगों की रूढ़ियों को चुनौती देता है। इसी कड़ी में मैं अपनी कविताओं के साथ समा बांधने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ एक प्रतिष्ठित विदुषी कवित्री डॉक्टर रचना तिवारी को, वे आएं और अपना कविता पाठ करें। डॉक्टर रचना तिवारी।
2: हिंदी की बात और हिंदी के साथ सुनिएगा कुछ पंक्तियाँ हिंदी के लिए। हिंदी है अस्तित्व हमारा, हम हैं हिंदी भाषी और

0: बढ़िया।
1: दासी। और अब इसी क्रम में एक गीत देखिएगा प्रेम का। तुम जो आए सारे मौसम,

श्रोताओं, अभी आप डॉक्टर रचना तिवारी को सुन रहे थे और आपने एक हिंदी और एक प्रेम की कविता सुनाकर हमारे श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मिर्जा गालिब ने कहा कि फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार उजड़ जाए, कितनी भी हो सजावटे, कोई जिंदा नहीं होता, कोई जिंदा नहीं होता।

0: बनी रहे हिंदी किसान, बढ़े देश का हर अभिमान। तो श्रोताओं, ये थे हमारे आज के तीन बेहद खास रचनाकार, ईश्वर विरागी जी, अब्दुल हई और डॉक्टर रचना तिवारी, जिन्होंने आकाशवाणी के इस स्टूडियो से अपनी कविताओं के माध्यम से हिंदी पखवाड़े की गरिमा को चार चांद लगाए। समय यहां हमें अनुमति नहीं दे रहा है, इस कवि गोष्ठी को अब हम यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे। आज जो रचनाकार हमारे साथ थे, ईश्वर विरागी, अब्दुल हई और डॉक्टर रचना तिवारी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे ये कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि थे रचना तिवारी, अब्दुल हई और ईश्वर विरागी। संचालन सुनील कुमार तिवारी का था। ...102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।

अब से बस कुछ ही दिन में यानी रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी। सुनते रहिए आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।

102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज रहे हैं और अब प्रस्तुत है ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी, और आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही है प्रीति सिन्हा। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के इस म्यूजिक गैलरी कार्यक्रम में, जो है ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में जो सबसे पहले मेल हमने शामिल किया है, वो भेजा है सुदर्शन शाह पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, और इनके साथ श्रोताओं के नाम हैं पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशाल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने। इनकी फरमाइश है फिल्म CID के इस गीत के लिए बूझ मेरा क्या नाम रे। तो श्रोताओं लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश पर फिल्म CID के इस गीत को।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सीआईडी के इस गीत को शमशाद बेगम की आवाज में। आकाशवाणी उपरा से समय आप सुन रहे हैं ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी। और इस कार्यक्रम में जो अगला मेल हमने शामिल किया है वो भेजा है अमन शकील जी ने, और इन्होंने लिखा है, डियर टीम, होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, आई वुड लाइक टू डेडिकेट अ सॉन्ग टू माय फियांसे। अच्छा, और इनकी फरमाइश है फिल्म आराधना के इस गीत के लिए, कोरा कागज था ये मन मेरा, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। और इन्होंने अपनी होने वाली हमनवा को ये गाना डेडिकेट किया है और लिखा है कि एक कोरा पन्ना थी मेरी जिंदगी तुम्हारे आने से पहले, तुमने अपनी मोहब्बत की स्याही से इसे गजल बना दिया। बहुत अच्छा लिखा है आपने, और लीजिए सुनिए आपकी फियांसी को डेडिकेटेड ये सॉन्ग आपके लिए।

आकाशवाणी उबरा से समय आप सुन रहे हैं ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी। इस कार्यक्रम में जो अगला मेल हमने शामिल किया है वो भेजा है अजीत कसाना जी ने, साथ में माया देवी, ऋतिक, आदित्य और इनके साथी। इन्होंने हमें मेल भेजा है लदावली जिला मुरादाबाद से। इनकी फरमाइश है फिल्म एक बार फिर और गीत है ये पौधे ये पत्ते। अनुराधा पौडवाल और भूपेंद्र सिंह की आवाज में इस गीत की फरमाइश अब लीजिए सुनिए आपके रेडियो सेट पर।

श्रोताओं अपने विचार हमसे साझा करने के लिए और अपने पसंद के गाने सुनने के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है akashvaniubhra@gmail.com यानी akashvaniubhra@gmail.com। फरमाइशी गीतों के लिए ईमेल में अपना नाम और पता अवश्य साझा करें। म्यूजिक गैलरी आप सुनते हैं प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को रात्रि 10 बजे। और कार्यक्रम में जो अगला मेल हमने शामिल किया है वो भेजा है योगीराज मस्के जी ने। इनके साथ भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं श्रीहरि मस्के, इंदुमती मल्हार, कविता मोहन, विशाल, कुशल, गोपाल, श्याम, गोविंद और मस्के और इनके और ढेर सारे साथी। इनकी फरमाइश है फिल्म उत्सव के इस गीत के लिए और इन्होंने हमें मेल भेजा है गांव बिटोडा, भोयर तहसील, जिला वाशिम, पश्चिमी विदर्भ से। तो योगीराज मस्के जी, लीजिए सुनिए अपनी फरमाइश पर फिल्म उत्सव के इस गीत को।

आकाशवाणी ओबरा से इस समय आप सुन रहे हैं ईमेल आधारित फरमाइश गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी। और इस कार्यक्रम में जो अगला मेल हमने शामिल किया है वो भेजा है आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार। इन्होंने हमें मेल भेजा है मुजफ्फरपुर बिहार से। इनकी फरमाइश है फिल्म देवता के इस गीत के लिए गुलमोहर अगर तुम्हारा नाम होता किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। तो लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश पर ये गीत।

एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी में। और इस कार्यक्रम में जो मेल हमने शामिल किया है वो भेजा है सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श चंसौलिया, सार्थक चंसौलिया और अलौकिक चंसौलिया ने। इन्होंने हमें मेल भेजा है ग्राम पजौनिया, जिला जालौन से। और इन्होंने अपने मेल में लिखा है कि किसी भी गीत में शामिल करने की कृपा करें। और साथ ही जो अगला मेल हमने शामिल किया है वो भेजा है हरिंदर सिंह, गांव कुलारा, नाभा, पंजाब से। इनके मेल में भी है कि इन्हें किसी भी गीत में शामिल किया जाए। और अगला मेल जो हमने शामिल किया है वो भेजा है आर कुमार जी ने, और इन्होंने अपने मेल में लिखा है नमस्कार। नमस्कार आर कुमार जी। और इन्होंने हमें मेल भेजा है वडिंग खेड़ा, पंजाब से। साथ में इनके मेल भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती। और इन्होंने अपने मेल में लिखा है कि किसी भी गीत के लिए फरमाइशी कार्यक्रम में इनका नाम शामिल किया जाए। तो श्रोताओं लीजिए सुनिए, आप सभी के लिए हमारी तरफ से फिल्म कभी कभी के इस गीत को लता मंगेशकर की आवाज़ में।

कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी में जो अगला मेल हमने शामिल किया है वो भेजा है अनिल बी घोटके जी ने। इनके साथ मेल भेजने वाले श्रोताओं के नाम है वैशाली, अनिल, प्राजक्ता, वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोटके। इन्होंने हमें मेल भेजा है एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ, अम्बही, तहसील सिल्लोड, जिला छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। और इनकी फरमाइश है फिल्म कच्चे धागे के इस गीत के लिए कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाज में। तो लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये गीत।

कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी में जो अगला मेल हमें आया है वो भेजा है आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद अंसारी, अनवर अंसारी, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, और इन्होंने मेल भेजा है शेरवानी स्कूल गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से, और इनकी फरमाइश है फिल्म पराया धन के इस गीत के लिए किशोर कुमार की आवाज़ में। तो श्रोताओं लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश पर फिल्म पराया धन का यह गीत।

कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी में जो अगला मेल हमने शामिल किया है वो भेजा है राजपाल शर्मा जी ने, और अपने मेल में लिखा है नमस्ते जी, और इन्होंने भी मेल भेजा है पंजाब से। साथ में हैं इनके राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। इन्होंने अपने मेल में लिखा है कि इसे किसी भी गीत में इनका नाम शामिल किया जाए, और साथ ही संतोष खडसे और विनोद खडसे जी ने यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से हमें मेल भेजा है। इन्होंने लिखा है कोई भी रोमांटिक गीत सुनवाइए जी, और साथ में हरजिंदर शिंदा जी ने लिखा है गांव नथाना पंजाब से, इनकी फरमाइश है किसी भी गीत में इनका नाम शामिल किया जाए। और साथ में हमें मेल भेजा है वीरेंद्र भ्यान जी ने जेवरा हिसार से, साथ में इनके हैं सुरेंद्र भ्यान, शमशेर भ्यान और मनोज। तो आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए इस गीत को।

कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी में जो अगला मेल हमने शामिल किया है वो भेजा है संतोष नामदेव जी ने। इनकी फरमाइश है फिल्म रजिया सुल्तान के इस गीत के लिए लता मंगेशकर की आवाज में, और इन्होंने हमें मेल भेजा है बघेरा दुर्ग से। इनके साथ हैं सार्थक, समर्थ, शौर्य और नामदेव।

0: कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी में जो अगला मेल हमने शामिल किया है वो दिग्दर्शन गौड़ जी का है मेरठ कैंट से। इनकी फरमाइश है फिल्म आन मिलो सजना के इस गीत के लिए। साथ ही हमें मेल भेजा है हितेंद्र दास जी ने असम से। तो श्रोताओं लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश पर ये गीत।
1: अच्छा तो हम चलते हैं।

0: नर्सों नहीं, नर्सों।
1: कहाँ?
2: श्रोताओं, ढेर सारे ईमेल भेजने और लगातार हमारा कार्यक्रम सुनने, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। श्रोताओं, अपने विचार हमसे साझा करने के लिए और अपने पसंद के गीत सुनने के लिए हमें ईमेल करें akashvaniobra@gmail.com। और इसी के साथ हमारा ये आज का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी यहीं समाप्त होता है। अब दीजिए अनुमति प्रीति सिन्हा को कार्यक्रम समाप्त करने की। नमस्कार।
3: अभी आप दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, रात्रि के 11 बजने को है। लीजिए अब सुनिए समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
5: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वेलिंग आयोग की 70वीं बैठक में वेल और अन्य समुद्री स्तनधारी जीवों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर

0: दिया है। ऑस्ट्रेलिया के हुवाट में आज से शुरू हुई 5 दिवसीय बैठक में भारत ने कहा कि समुद्री स्तनधारी जीवों के प्रभावी संरक्षण के लिए संबंधित देशों, वैज्ञानिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच लगातार सहयोग जरूरी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलानबटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है। इनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर यशवीर सिंह और कांस्य पदक जीतने वाले रोहित यादव को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर पारुल चौधरी को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सभी एथलीटों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर यशवीर सिंह और कांस्य पदक हासिल करने पर रोहित यादव को बधाई दी। राष्ट्रपति ने सभी खिलाड़ियों को भविष्य में और अधिक सफलताओं के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 11:05 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

रात्रि के 11:05 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।